नमस्कार। FM में 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। आज शनिवार है, सक संवत 1948 के श्रावण मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 अगस्त सन 2026। श्रोताओं, इस समय सुबह के 6:55 होने को है। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। सभी श्रोताओं को आकाशवाणी परिवार की तरफ से स्वाधीनता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं।

ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM एंड 103.7 MHz पर। श्रोताओं, सुबह के 6:57 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे आज के शेष और विशेष कार्यक्रमों का विवरण और उसका प्रसारण समय।

0: साथियों, आपसे कुछ ही देर बाद यानी कि 7 बजे आप सुनेंगे दिल्ली के अंदर से स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजारोहण का राष्ट्र के नाम संबोधन का सजीव प्रसारण। सुबह 9 बजे आप सुनेंगे जयपुर के अंदर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, दोपहर 1 बजे और शाम 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद 6:30 पर आप सुनेंगे जयपुर के अंदर से राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान, भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना का समय रहेगा सुबह 9:20 पर। 9:40 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम साजों का धुन। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने पुराने जमाने के और 10:30 पर आप सुनेंगे गाने नए तराने नए। शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी, 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पाणियारी जिसमें आप सुनेंगे वार्ता आज़ादी की लड़ाई में ग्रामीण महिलाओं का योगदान। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे हिंदी माफ कीजिए फिल्म संगीत और 6:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम माटी का स्वर। शाम 7 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम किसान वाणी का, 7:30 पर आप सुनेंगे जिला स्टेडियम नागौर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह रेडियो रिपोर्ट प्रस्तुतकर्ता संजय दत्त। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे इस सप्ताह संसद में, 8:15 आप सुनेंगे स्वाधीनता दिवस पर समाचार सेवा एकांश जयपुर द्वारा प्रस्तुत विशेष समाचार तरंग। रात्रि 8:45 आप सुनेंगे दिल्ली के अंदर से समाचार संध्या और 9 बजे आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का फरमाइश सिम्फोनिक गार्डन है वो फरमाइश। तो साथियों, ये थे हमारे आज के विशेष कार्यक्रम का विवरण और उसका प्रसारण समय। FM बैंड 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरवी चैनल है। सुबह के साल
1: ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
2: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
5: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
6: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
5: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी। देश

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाए, न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाए। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: आइए

0: लाल किला चले।
1: वंदे मातरम। स्वतंत्र भारत देश के 79 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले भारत भूमि के वीरों और वीरांगनाओं द्वारा किए गए बलिदान का स्मरणोत्सव। श्रोताओं, ये स्वतंत्रता दिवस समारोह जिनके अद्वितीय बलिदान का प्रतिफल है ये दिवस, नमन ऐसे लाखों नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सका है और पूरे विश्व में भारत की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ी है। ऐसे राष्ट्र नायकों को भी नमन है आज के इस अवसर पर। गौरव के इन पलों में श्रोताओं, आप सभी को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल्ली स्थित लाल किले के प्राचीर से मैं जैनेन्द्र अपने साथी कमेंटेटर्स नीलम मलकानिया, देवेंद्र त्रिपाठी और आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ आप सभी का इस विशेष प्रसारण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ।
2: वंदे मातरम। लाल किले की इस ऐतिहासिक प्राचीर से आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2026 की ये सुनहरी सुबह भारत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रही है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि आज पूरे गर्व और उल्लास के साथ अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रही है। कोटि कोटि कंठ आज वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय का उद्गार कर रहे हैं। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और उत्साह के रंग में रंगे हुए भारतीय और भारतवंशी देश विदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। साथियों, आप जानते ही हैं कि मुख्य आयोजन यहां लाल किले पर हो रहा है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए प्राचीर पर बने ध्वज स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। आकाशवाणी की तकनीकी और कार्यक्रम टीम यहां से आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने के लिए तैयार है। आज तो किले की छटा ही निराली है, जैसे ये स्वयं पर इठलाता हो कि यहीं से हर वर्ष हमारे इस राष्ट्रीय पर्व ने देश दुनिया को एक नई राह दिखलाई है। चहुं ओर भक्ति भाव और उत्साह का भाव परिलक्षित हो रहा है। किले की विशाल और शक्तिशाली दीवारें रंग बिरंगे पुष्पों और पताकाओं से सजाई गई हैं। स्वतंत्रता दिवस की बधाई वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर हैं, पोस्टर्स लगे हैं तो सुरुचिपूर्ण पुष्प सज्जा भी की गई है। इस बार के आयोजन की थीम है वंदे मातरम। हमारे इस राष्ट्रीय गीत के 150 गौरवशाली वर्षों को याद करते हुए आज वंदे मातरम की गूंज यहां बार बार सुनाई दे रही है। ज्ञान पथ के सामने किले की विशाल दीवार पर ताजे पुष्पों से वंदे मातरम लिखा गया है। प्रेरणादायी संवर्धन ये है कि पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गूंजेगा। किले की बाहरी दीवार पर लगे कटआउट्स परमाणु और अंतरिक्ष तकनीक में भारत की प्रगति को दर्शा रहे हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मातृभूमि का वंदन करते हुए, नमन करते हुए, मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर अनेक प्रतीक चिन्ह हैं। हम आपको बताएं कि लाल किले की भव्य प्राचीर पर दोनों ओर दो बड़े बुर्ज हैं, इन्हीं से सटा हुआ हमारा कमेंट्री बूथ है। प्राचीर के ठीक बीच में कुछ ऊंचाई पर ध्वज स्थल है जो हमारे दाहिनी ओर है और इस समय ताजे फूलों से सजा हुआ है। ध्वज दंड को भी फूलों की लड़ियों से सजाया गया है। खुशनुमा मौसम में सुबह की मध्यम बहती मंद बयार के साथ ताजे फूलों की गंध हमारी उत्सव धर्मिता में शामिल हो रही है। आज वैसे भी तीज है, आप सभी को तीज पर्व की भी शुभकामनाएं। और तीज को माना जाता है बहुत ही शुभ अवसर, क्योंकि त्योहारों की शुरुआत इससे होती है। ऐसे में तीज के अवसर पर जब हमारा राष्ट्रीय पर्व है तो हमारे राष्ट्रीय पर्व ने अनेक पर्वों की गरिमा साथ ही बढ़ा दी है। ध्वज स्थल के दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। लाल रंग की कुर्सियां करीने से सजी हुई हैं और उन पर आमंत्रित अतिथि गणों के नाम भी लिखे हैं। दाहिनी ओर की दर्शक दीर्घा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं तथा पद्म पुरस्कार विजेता अन्य अतिथि हैं। और बाईं ओर की जो दर्शक दीर्घा है उसमें केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति है। हम आपको बताएं कि यहां से हम देख सकते हैं उपस्थिति है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की, श्री पीयूष गोयल हैं, श्री नितिन नवीन यहाँ से हम देख सकते हैं, श्री हरदीप सिंह जी की उपस्थिति है, श्री मनसुख मांडविया जी हैं, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, डॉक्टर जयशंकर उपस्थित हैं, श्री गिरिराज सिंह जी हैं, श्री नितिन गडकरी जी हैं, श्री अश्वनवी वैष्णव जी हैं, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू जी की भी गरिमा में उपस्थिति यहाँ पर है। वर्दी पहने सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति है तो आकर्षक परिधानों में उल्लासित बच्चे भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ से।
1: माननीय प्रधानमंत्री महोदय कुछ ही देर में यहाँ लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और

0: जब वे प्राचीर के ऊपर बने ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रगीत, पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब स्वतंत्रता दिवस के समारोह में राष्ट्रीय गीत की धुन और स्वर यहां पर गूंजेगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। यहां आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय राजघाट पहुंचकर वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद यहाँ के लिए वो प्रस्थान करेंगे। लाल किले के ये प्राचीर और ये पूरा परिदृश्य अद्भुत है। इस समय ईश्वर की कृपा भी है क्योंकि मौसम बहुत खुशनुमा है, आसमान घने बादलों से ढका हुआ है, इसलिए धूप की रश्मियां जो है वो धरती तक नहीं पहुंच पा रही है और लोग बहुत ही सुखद वातावरण में यहाँ बैठे हुए हैं। लगभग 27 डिग्री का यहाँ तापमान हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लगभग इतना ही यहाँ पर तापमान है। और पक्षियों के कलरों के साथ हल्की हल्की बयार के साथ जो पताकाएं लगी हैं वो लहरा रही हैं हवा के साथ, हमारे राष्ट्रीय ध्वज जहां जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां तक लगे हुए हैं, वो भी लहराते हुए एक नई ऊर्जा का संचार हम सबके भीतर कर रहे हैं। वैसे भोर तो हर सुबह हर रोज होती है लेकिन आज की भोर सामान्य दिनों से बिल्कुल हटकर है क्योंकि भारतवासियों के लिए बहुत विशेष है। हो भी क्यों ना, आज ही के दिन तो 15 अगस्त को सन 1947 में दुनिया के मानचित्र पर स्वतंत्र देश के रूप में भारत का उदय हुआ था, वही भारत जिसके बारे में विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत समुदस्य हिमाद्रे शैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसे भारत कहते हैं और हम स्वयं को भारतीय कहते हैं। मंच की सज्जा को आपने जाना, अनुभव किया होगा, अपने अपने कल्पना में उसे सजीव भी किया होगा आपने। मंच के ठीक सामने जो ज्ञानपथ का क्षेत्र है वहां सबसे पहले हमारी दृष्टि जहां जाती है वो है राष्ट्रीय सलामी गारद जो वहां पर उपस्थित है ठीक सामने। इसमें सेना के तीनों अंगों और दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां शामिल हैं, प्रत्येक टुकड़ी में 32 सैनिक हैं और एक अधिकारी उसमें शामिल है। राष्ट्रीय सलामी गारद का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर लोकेंद्र सिंह, सेना की अपनी यूनिफॉर्म में वर्दी में सजे धजे गर्व से सीना तरा हुआ। सेना की टुकड़ी की कमान मेजर विकास यादव के हाथों में है जबकि लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं अपने सफेद यूनिफॉर्म में और पीकैप के साथ। वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर उमेश जी और एडिशनल DCP विकास मीणा दिल्ली की टुकड़ी दिल्ली पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारे ठीक सामने उस राष्ट्रीय सलामी गारद के दाहिनी हिस्से में वहां पर बैंड दल उपस्थित है जो राष्ट्रीय सलामी के समय राष्ट्रीय धुन बजाएगा और उसके पहले राष्ट्रगीत यहां पर बजाएगा। लेकिन उनके पीछे भी एक ऊर्जा का अनुभव, अद्भुत दृश्य हम देख पा रहे हैं श्रोताओं, क्योंकि ये इस बार का आयोजन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर रहा है जिसको हम यहाँ के कणकण में, यहाँ के पूरे वायुमंडल में हम उसको महसूस कर सकते हैं, यहाँ के वातावरण में महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ वंदे मातरम की गूंज यहाँ पर हम सबको उत्कंठा से प्रतीक्षा है, उस क्षण की जब पहली बार यहाँ से उसे बजाया जाएगा और गाया जाएगा, उसके साथ साथ बड़ी संख्या में युवा शक्ति यहाँ पर एक नई ऊर्जा का प्रतिबिंब लेकर उपस्थित है। और इसमें सामने जो दृश्य हम देख पा रहे हैं ज्ञानपथ पर, वहां लगभग 2500 की संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है जो NCC से संबंधित रखते हैं, NCC के तीनों विंग से संबंधित रखते हैं, और उसके साथ साथ हमारे माय भारत वॉलंटियर स्वयंसेवक भी इसमें शामिल हैं। और इन्होंने जो अधिसंख्या हैं, बहुसंख्यक हैं, उसमें उन्होंने सफेद रंग की वेशभूषा पहन रखी है ज्यादातर जिनकी संख्या है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा रंग है जो हमारे केसरिया रंग यानी हमारे बलिदान का भी प्रतीक है और उसी रंग के साथ, केसरिया रंगों की वेशभूषा के साथ उन्होंने यहाँ रचा है वंदे मातरम। क्योंकि वंदे मातरम इस बार, इस पहली बार इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में गूंजेगा
1: जी। उत्तर से लेके दक्षिणी लकीर तक, पूर्वा से लेके पश्चिमी समीर तक, सागरों से लेके नदियों के तीर तक, पर्वतों से लेके घाटियों के तीर तक, आत्मा से लेके नश्वर शरीर तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं, हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। देश की संचयी शक्ति जो देश का इतिहास अपने आप में समेटे है, एक अभिवादन भी है, सम्मान भी है, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पहचान भी है। ये दो शब्द जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में देशवासियों को एकजुट किया और आज़ाद भारत को भी सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हम आपको बताएं साथियों, वंदे मातरम जो यहाँ से हम देख रहे हैं, NCC कैडेट्स ने जो मानव संरचना में लिखा है, बेहद प्रेरक, बेहद खूबसूरत यहाँ से जान पड़ रहा रहा है, और साथ ही जो अन्य यहाँ पर बच्चे हैं वो उत्सुकता से एकटक इन बच्चों को निहार रहे हैं। आज के आयोजन के लिए राजधानी में परिवहन व्यवस्था में बड़े

0: बदलाव किए गए हैं। वैकल्पिक मार्गों के बारे में काफी पहले से ही जानकारी साझा की गई है। कई दिन पहले से ही सभी प्रमुख चौक चौराहों पर, महत्वपूर्ण भवनों पर रंग बिरंगी प्रकाश सज्जा की गई है। साथ ही जन समुदाय की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। राजधानी को गति देने वाली मेट्रो भी हमारे इस राष्ट्रीय पर्व का आज हिस्सा है। अपनी सेवा देते हुए आज सुबह 4 बजे से सरपट दौड़ रही है। यहाँ आयोजन स्थल के आसपास क्लॉक रूम, व्हील चेयर और पेयजल की व्यवस्था की गई है। लगभग 23,000 आगंतुकों को इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। अपनी सजीली सैन्य वर्दी पहने अधिकारी हैं, आकर्षक परिधानों में यहाँ पर सामान्य जन हैं। एनसीसी कैडेट्स हैं, माई भारत स्वयं सेवकों ने जो संरचना बनाई है हमने आपको बताया कि बेहद यहाँ पर बनाई है हमने आपको बताया कि बेहद यहाँ पर आकर्षक है। सीढ़ीदार व्यवस्था में इनके दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। एक ओर विद्यालय के छात्र छात्राएं अपने शिक्षकों के साथ बैठे हैं, अन्य आगंतुक हैं, तो दूसरी ओर भी सीढ़ीदार व्यवस्था में कुर्सियां करीने से लगाई गई हैं। हल्के जामुनी रंग की दरी पर, हरे रंग की कुर्सियों पर आगंतुक आज के अवसर के लिए विशेष तौर से हमारे तिरंगे के जो 3 प्रधान रंग है उनके परिधान पहने हुए हैं। आज का ये आयोजन अलग अलग क्षेत्रों में हमारे युवाओं की उपलब्धियों को भी उजागर कर रहा है। इंटरनेशनल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में मेडल विजेता युवाओं को भी आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। नेशनल इनोवेशन कार्यक्रम से जुड़े युवा हैं, पीएम इंटर्नशिप योजना के छात्र हैं। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित बेहतरीन स्टार्टअप के तहत चुने गए श्रेष्ठ प्रतिभागी हैं, माई भारत के स्वयंसेवक हैं। दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों में हुई परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थी भी इस समय यहाँ बैठे हैं। इस अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली में रहने वाले 1500 से ज्यादा ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जो इस समय अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बैठे हैं और लघु भारत का दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक खास बात ये है कि हमारी जल शक्ति का सम्मान रखते हुए इस बार जो प्रांगण घेरे हैं, एनक्लोजर्स हैं, इनके नाम प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं। भीमताल, चंद्रताल, दूध सागर, रोबिंद्र सरोवर, रुद्र सागर, चिलिका, हाफलोंग नाम रखे गए हैं। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो भारत जो समृद्ध है, जो संपन्न है, साथ ही जो संकल्पित है आगे बढ़ने के लिए और साथ ही विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लिए, जिसमें हर उम्र का देशवासी अपनी ओर से योगदान करने के लिए तैयार है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये स्वतंत्रता जिसने पराधीन भारत में जब देशवासियों को पुकारा तो अपनी जान की परवाह न करते हुए देशवासी जुट गए कि भारत माँ को हमें परतंत्रता की बेड़ियों से आज़ाद करवाना है। और अब यही स्वतंत्रता हमें ये प्रेरणा देती है कि लगातार आगे बढ़ते हुए हम जहाँ हैं, जो कर सकते हैं, देश प्रेम मन में रखे हुए, संजोए हुए, देश को विकसित करने की ओर लगातार बढ़े, अपना योगदान करें।
1: निश्चित रूप से, और इसीलिए भारत के भविष्य को लेकर जो संकल्पना है, विजन है, विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस गति से आगे बढ़ते हुए वर्ष 2047 तक यानी 100 वर्षों के स्वतंत्र भारत की यात्रा को पूरा करते हुए एक विकसित भारत के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, उसका भी यहाँ दृश्य हमें साफ नजर आता है। यहाँ लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री महोदय का आगमन कुछ ही पलों में होने जा रहा है। वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और साथ ही रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह वहां पर उपस्थित हैं। साथ ही दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी वहां पर उपस्थित हैं, जो वहां प्रधानमंत्री महोदय की अगवानी करेंगे और वहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी दी जाएगी। और उसके बाद सलामी गारद का वो निरीक्षण करने के बाद लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और आगे का जो कार्यक्रम है वो यहां आरंभ होगा। इस रूप में बिगुल वादन के साथ इस बात का संकेत मिल चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के वाहनों का काफिला यहां प्रवेश कर रहा है। आइए आपको आगे के विवरण के लिए सीधे लिए चलते हैं देवेंद्र के पास, जो लाहौरी गेट पर उपस्थित हैं।
2: धन्यवाद जैनेन्द्र। मैं देवेंद्र त्रिपाठी आप सभी श्रोताओं का लाल किले के ऐतिहासिक प्रांगण में लाहौरी गेट से स्वागत करता हूं। इस द्वार के समक्ष होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी आपसे साझा करूंगा, जहां माननीय प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस की संयुक्त सलामी दी जाएगी। प्रधानमंत्री सम्मान कारक का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक 13वीं बार ध्वज फहराएंगे और देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। आजादी का ये दिन 15 अगस्त भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित, ना जाने कितने रक्तों से रंजित। ये स्वाधीनता का ही उत्सव नहीं, ये अवसर है माँ भारती के वीर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी, उन्हें ये विश्वास दिलाने का कि आपके बलिदानों का ऋण हम माँ भारती की सेवा करके चुकाएंगे। ये वीर

शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है, जिनके त्याग और बलिदान से ये प्रतिफल आज हमें मिला। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला प्रांगण में प्रवेश कर रहा है और यहाँ का पूरा परिदृश्य नई ऊर्जा से ओतप्रोत। माँ भारती का वंदन और वीर बलिदानियों का अभिनंदन करने के इस पावन आयोजन में उत्साह, उल्लास और श्रद्धा का भाव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन लाहौरी गेट के समक्ष सलामी मंच पर हो रहा है, जहां उनकी अगवानी के लिए उपस्थित हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। श्रोताओं, सलामी मंच के सामने तीनों सेनाएं और दिल्ली पुलिस तथा नौसेना बैंड वादकों का दस्ता, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सलामी देने के लिए सभी मुस्तैद। दस्तों के पृष्ठभाग में लगा है तीन रंगों में बैनर, जिस पर झलक है विकसित भारत और विविध भारत की। अंतर सेना सम्मान गर्द का जिम्मा इस बार थल सेना को दिया गया है, कमान है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों। और सलामी मंच के दोनों ओर खड़े हैं कैप्टन विकी मेहता और प्रथम नेगी। प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला पहुंचा है सलामी मंच के पास और माननीय प्रधानमंत्री अपने वाहन से उतरते हुए लाल रंग का साफा और ब्राउन यानी भूरे रंग की सदरी, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा। माननीय प्रधानमंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव का अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव जीओसी दिल्ली एरिया राजेश सेठी से परिचय कराते हुए अब माननीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं सलामी मंच की ओर, जहां उन्हें अंतर सेना पुलिस सम्मान गर्द सलामी देगी, कमान लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों में। संयुक्त कमांडर के नेतृत्व में टुकड़ों की सलामी। भारतीय सैन्य बलों के पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन लाल किले की इस प्रांगण में। अब संयुक्त कमांडर सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जी से सम्मान गर टुकड़ियों का निरीक्षण करने के लिए आग्रहपूर्ण अनुमति लेंगे। सधे हुए कदमों से, हाथों में तलवार लिए और जोश भारतीय सैन्य बलों का जो झलक रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सहमति दी और सलामी मंच से नीचे उतरते हुए मंच के बाईं ओर से बिछा है रेड कार्पेट, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री के स्वागत में अपनी लालिमा से इस स्थल को और गौरव प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री के दाईं ओर दो कदम पीछे, हाथों में तलवार और भारतीय सैन्य बलों का शौर्य लिए चल रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं नौसेना बैंड दस्ते के पास। बैंड मास्टर डी सेल्वम के नेतृत्व में नौसेना का ये बैंड आनंद लोके की धुन बजाएगा, जिसे तैयार किया बैंड मास्टर जे रोड्रिक्स ने, और बच्चों की आवाजें आप सुन पा रहे हैं। यहाँ मौजूद उपस्थित बच्चे माननीय प्रधानमंत्री का अपनी आवाज के साथ स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री के अब का आगमन हुआ है थल सेना की टुकड़ी के पास। 25 जवान नेतृत्व मेजर आदित्य शर्मा के हाथों में। प्रधानमंत्री के समक्ष पूरी नम्रता लेकिन अभिमान का भामंडल देश के वीर सैनिकों के मुख पर, विश्वास दिलाते हुए मां भारती की रक्षा में सदैव तत्पर। नौसेना की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर अरुण कलमाड़ी के हाथों में तीनों सेनाएं देशवासियों को विश्वास दिलाती हुई, हम है भारत के प्रहरी, हम है मां भारती के सेवक और रक्षक। और अब प्रधानमंत्री वायुसेना के दस्ते के समक्ष 24 जवानों की टुकड़ी भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व 80वें स्वतंत्रता दिवस पर करती हुई, कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार के हाथों में। दिल्ली पुलिस का नेतृत्व एडिशनल डीसीपी विनीत कुमार कर रहे हैं। सभी ने अपने भावों से माननीय प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया मां भारती के रक्षक सदैव तत्पर। और अब लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह परेड कमांडर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करते हुए, और अब लाहौरी गेट से माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं समारोह स्थल लाल किले की प्राचीर की ओर, जो 1947 से हर वर्ष केंद्र बना है भारत के स्वाधीनता उत्सव का। प्रधानमंत्री के साथ हैं जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। लाहौरी गेट, लाल किले की प्राचीर और दोनों गुंबद साक्षी हैं भारत के स्वाधीन होने, विकासशील से विकसित बनने के अमृतकाल के। स्वाधीन 79 वर्षों में भारत ने अपने विकास की लंबी यात्रा तय की है। श्रोताओं, 2026 का भारत विश्व पटल पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। भारत के विचार दुनिया के लिए मायने रखते हैं, जो समाधानों के लिए आज भारत की ओर देखते हैं, क्योंकि भारत की नीतियों के मूल में है वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श और भारत का उत्कर्ष। विकास भी और विरासत भी भारत की विचारधारा और भारत
हमारा प्यारा भारत बढ़ रहा आगे, एक तरफ अपने हृदय में संजो रहा अपने

0: पूर्वजों के बलिदानों को तो दूसरी ओर माथे पर चंदन की तरह बिठा रहा, युवाओं को जो भविष्य के भारत की गाथा लिखने को तत्पर। एक ओर इंडियन नॉलेज सिस्टम का सम्मान, दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घोष भी। 80वां स्वाधीनता दिवस अवसर है अपने पूर्वजों को प्रणाम करने का, उनके प्रति श्रद्धावनत होने का, जिन्होंने तन मन और धन से माँ भारती की सेवा की। 21वीं सदी का सबल भारत वीर बलिदानियों का ऋणी है, जिनके समर्पण और बलिदान से हमें आज का यह सौभाग्य मिला। और श्रोताओं, मुख्य समारोह स्थल की ओर चलते हैं, लाल किले की प्राचीर पर, जहां 150 वर्ष गौरवशाली 150 वर्ष वंदे मातरम के पूर्ण होने के अवसर पर इस बार पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम की धुन आप सुनेंगे। उसके बाद ध्वज फहराया जाएगा और फिर राष्ट्रगान होगा और प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। और विवरण के लिए हम लाल किले की प्राचीर कमेंट्री बूथ पर लिए चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर नीलम और जैनेन्द्र के पास।
1: धन्यवाद देवेंद्र। साथियों, कुछ ही देर में ये पावन और ऐतिहासिक क्षण आएगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर ध्वज फहराने के लिए लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल की ओर आएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे, तब भारतीय सेना का बैंड वंदे मातरम की धुन बजाएगा। अपने राष्ट्रगीत के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। प्रधानमंत्री जी भारत माँ की अस्मिता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को जब फहराएंगे, तब राष्ट्रगान होगा, साथ ही तिरंगे को सलामी भी दी जाएगी। आर्मी सिग्नल कोर से कैप्टन रितिका खरेटा माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करेंगी ध्वज फहराने में। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और साथ ही भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर आकाश से झंडा वर्दन करते हुए पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वज फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए कमान अधिकारी विंग कमांडर ऋषिकांत के साथ को पायलट स्क्वाड्रन लीडर मोहित सिंह राष्ट्रीय ध्वज वहन किए हुए आएंगे। दूसरा हेलीकॉप्टर वंदे मातरम का ध्वज लिए हुए आगे बढ़ेगा और स्क्वाड्रन लीडर पुनीत यादव पुष्प वर्षा करेंगे, इस तरह से अपनी ओर से झंडा वंदन भी करेंगे और साथ ही यहां बैठे उत्साहित देशवासियों पर भी पंखुड़ियां जब गिरेंगी तो वो दृश्य देखने लायक होता है। बच्चे बेहद उत्साहित हो जाते हैं इसे देखते हुए और आप जानते ही हैं कि अब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं। इस तरह से अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को, राष्ट्र को प्रेरणा देने वाले इन गीतों को हम सम्मान देते हैं। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, भगत सिंह की फांसी, मैं बापू की अंगड़ाई हूँ, हूँ जलियांवाला बाग भी मैं, पानीपत का पानी हूँ, ऊधम की पिस्तौल भी मैं, झांसी वाली रानी हूँ, रंग दे बसंती चोला मैं, गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हूँ, चेतक की हुंकार में ही मैं राणा प्रताप की शान हूँ, मैं छुपा बोस किनारों में, मैं जंग लगी तलवारों में, मैं इनकलाब की बोली हूँ, आजाद की आखिरी गोली हूँ, मैं भारत का हर भाव चंगा हूँ, मैं सबका पूज्य तिरंगा हूँ। इसी तिरंगे के सम्मान में पूरा आयोजन यहाँ का हो रहा है और यहाँ पर जो सलामी गारद है वो भी जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा उस समय राष्ट्रीय सलामी देगी।
0: निश्चित रूप से, और सभी को उस पल की प्रतीक्षा है। श्रोताओं, लाल किले के प्राचीर से जब हमारी दृष्टि सामने इस पूरे क्षेत्र की तरफ जाती है, चांदनी चौक की तरफ जाती है, तो अनायास ही बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्ने अपने आप सजीव होने लगते हैं जो हमारे पूरे राष्ट्र के लिए, देश के लिए संघर्ष का एक बहुत कठिन दौर रहा है जिससे देश गुजरा है। धर्मांधता और बलपूर्वक धर्मांतरण की वो विभत्स और क्रूर घटनाएं दृश्य आंखों के सामने सजीव होने लगते हैं। आपको मालूम ही है लाल किले के प्राचीर के सामने चांदनी चौक में ही स्थित है गुरुद्वारा सीसगंज। सन 1675 में 24 नवंबर की वो तारीख थी जब यहीं हमारे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। गुरु साहब ने बलिदान से पहले, गुरु साहब के बलिदान से पहले उनके शिष्य भाई मतीदास, भाई दयाला और भाई सतीदास के ऊपर भी बर्बरता भला कौन भूल सकता है। देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में भी ये दिल्ली स्थित चांदनी चौक एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक केंद्र रहा है। 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए ब्रिटिश सेना ने यहाँ की मुख्य सड़कों और कोतवाली के आसपास के क्षेत्रों में अपना दमन चक्र चलाया। क्रांतिकारियों को खुलेआम फांसी दी गई। 1857 में आपको याद होगा ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले, जिन्हें दिल्ली का आयरन वॉल कहा जाता था, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 में 32 साल की मात्र उनकी उम्र थी, तब उनको इसी चांदनी चौक में फांसी पर लटकाया गया था खुले में। 23 दिसंबर 1912 को जब ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली को राजधानी बनाने के उपलक्ष्य में इसी चांदनी चौक से होकर शाही जुलूस निकाल रहा था, तब यहां घंटाघर के पास क्रांतिकारियों ने उस पर बम फेंका और उस हमले की योजना राजबिहारी बोस ने बनाई थी, उसमें मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद जी और वसंत कुमार विश्वास जैसे क्रांतिकारी

0: शामिल थे। बाद में बालमुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई थी, जबकि राजबिहारी बोस वेश बदलकर देश से बाहर निकल गए और जापान पहुंचकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की और उसके आगे का इतिहास आप सबको विदित है। सन 1915 से 1934 के बीच महात्मा गांधी ने चांदनी चौक में कई ऐतिहासिक बैठने की थी। यहाँ की मारवाड़ी पब्लिक लाइब्रेरी हो, गांधी मैदान हो, ये सब क्रांतिकारियों और देशभक्तों की बैठकों का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। अंग्रेजों के दमनकारी कानून रॉलट एक्ट के को लेकर जब देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तब 1919 में ही स्वामी श्रद्धानंद जी ने चांदनी चौक के घंटाघर पर पुलिस की संगीनों के सामने खड़े होकर निडरता से रॉलट एक्ट का विरोध किया था। कोतवाली के सामने का जो क्षेत्र है, इसी चांदनी चौक की एक गली में क्रांतिवीर स्वतंत्रता संग्राम के पर्चे और बुलेटिन चुपके चुपके छापा करते थे और पूरे शहर में बांटकर स्वतंत्रता की अलख जगाया करते थे। यहाँ चाहे वो कटरा नील हो, खारी बावली हो, दरीबा कला हो, इन सभी क्षेत्रों के व्यापारी और आम नागरिक भी इस लड़ाई में शामिल थे। और इस समय जबकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के साथ जब शुरू होगा यहाँ का मुख्य आयोजन और वंदे मातरम के स्वर गूंजेंगे, उसकी उत्कंठा में और उल्लास में बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ उपस्थित जनसमुदाय है, विशेष रूप से बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं। प्राचीर की तरफ देख कर उनके उत्साह और उमंग की अभिव्यक्ति उनके चेहरे पर साफ नजर आती है और जो पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, उनके स्वर, उनकी पहचान और उनकी आभा जो व्यक्तित्व की है वो भी बहुत आकर्षित कर रही है।
1: बिल्कुल जानेंद्र जी, और मैं देख पा रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो बार बार टुकुर टुकुर निहार रहे हैं यहाँ ध्वज स्थल की ओर, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और सम्मानित प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। साथियों, आज का दिन हम अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए भी विशेष तौर पर मनाते हैं। विशेष तौर पर आज का दिन हमें ये अवसर देता है, क्योंकि हम जानते हैं, तुम न समझो देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। स्वतंत्रता संग्राम के चिर परिचित सेनानियों के साथ ही गुमनाम नायकों के प्रति आज कृतज्ञता का भाव है, तो आज़ाद भारत के उन वीरों का गुणगान भी है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। मंगल पांडे की पहली चिंगारी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई का दम्य साहस, सब कुछ हमें प्रेरित करता है। और हम देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है इस समय ध्वज स्थल पर।

0: और अब माननीय प्रधानमंत्री
1: अंदाज
0: महोदय
1: लाभ ले
0: राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं।
1: लाभ।

0: और इस समय आकाश आकाश में जो स्वर हमें सुनाई दे रहे, ध्वनि सुनाई दे रही है, वो उन हेलीकॉप्टर्स की है जो पुष्प वर्षा करते हुए लाल किले के प्राचीर के ऊपर से गुजर रहे हैं और लोगों की निगाह उसी आसमान की तरफ है। एक हेलीकॉप्टर, ये Mi-17 हेलीकॉप्टर से भारतीय वायुसेना के, जिसमें एक हेलीकॉप्टर में राष्ट्रीय ध्वज उसमें दिखाई दे रहा है हवा के साथ अठखेलियां करता हुआ, और दूसरे हेलीकॉप्टर में नीचे लिखा है वंदे मातरम और पुष्प वर्षा करते हुए ये सभी यहाँ से हमारी बाईं तरफ से दाहिनी तरफ आसमान में आगे बढ़ते हुए। बच्चों के बीच खासतौर पर उल्लास और फूलों की पंखुड़ियां यहाँ चारों तरफ बिखरी दिखाई देती है। खासतौर पर जो सफेद वेशभूषा में बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ ठीक सामने, उनके कपड़ों पर सफेद रंग पर जो पुष्प है, पंखुड़ियां है पीले रंग की, वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आनंदित करने वाली लग रही
1: जी। और जनेंद्र, किस तरह से बच्चे उल्लासित होकर प्रधानमंत्री जी को भी निहार रहे हैं और उनकी कोशिश है कि एक दो पंखुड़ी को वो कैच कर पाए, और ये पंखुड़ियां इस समय हमारे बूथ की ओर भी आई, बेहद रमणीय दृश्य है ये
0: जी। और राष्ट्रीय सलामी कारत अब राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद और राष्ट्रीय सलामी देने के बाद यहाँ से प्रस्थान करती हुई सेना कमांड कुमायूं रेजिमेंट सेंटर, जो इसमें शामिल थी, जिसने आज पहली बार ये इतिहास रचा गया, स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में पहली बार यहाँ राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन बजी, लेकिन सस्वर यहाँ उपस्थित हजारों लोगों ने उस गीत को अपने मुखारबिंदु से गाया है, चाहे वो प्राचीर के ऊपर बैठे हुए हमारे सभी अतिथियों दर्शक दीर्घाओं में या ठीक सामने हमारे बाई और दाहिनी तरफ बड़ी संख्या में जो दर्शक दीर्घा में हजारों की संख्या में देश भर से पधारे हमारे दर्शक हैं, विशेष मेहमान हैं, दिल्ली वासी हैं, अलग अलग प्रदेशों के और केंद्र शासित प्रदेशों के वासी हैं, उन सबने अपने वेशभूषा में, जिसमें बहुत सारे लोग हैं पारंपरिक वेशभूषा में, खड़े होकर बड़े गर्व के साथ इस बार पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया। इस समय परेड कमांडर मेजर लोकेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलामी गारद जो है हमारी दाहिनी तरफ, जो उनका स्थल है इकट्ठे होने का, वहां आगे की तरफ लाल किले के प्राचीर से ज्ञानपथ से होते हुए यहां से प्रस्थान करते हुए, और आतुरता से यहां उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमुदाय, देश के 145 करोड़ जनता और दुनिया भर के लोग आतुरता से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाल किले की ये प्राचीर, जिसने पिछले 12 वर्षों में विकास के नए नए प्रतिमानों का बीजारोपण जहां से हुआ है लाल किले के प्राचीर से, और इस प्राचीर से विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचने और जन जन की प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर मिला है। राष्ट्र को जब प्रधानमंत्री महोदय संबोधित करते हैं तो उसे सभी सुनते हैं।

0: सभी प्रेरणा लेते हैं, सभी उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि आज राष्ट्र के प्रति सोच, राष्ट्र के प्रति हमारी संवेदनाएं अपनी गहनता के शिखर पर हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, विकसित भारत बनना है। श्रोताओं,
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप, त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र्य सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने

हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है, और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है, तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। प्यारे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं, और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फॉल में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल फाइव के उस डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी है, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। अरे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ,

खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े, सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए, हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए, हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया, हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया, हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी, जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले 1 दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है, और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में

जल्द शुरू होने वाले हैं। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसे ये चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है। पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है। भारत इसमें भी अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है। ये क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए, नेशनल क्रिटिकल मिनरल ये हमने लॉन्च किया। बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की हमने घोषणा की है। कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं। विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल के विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है, और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है, और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है, और इसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती है। जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है, और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा। हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था। हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया, और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की थी, और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों,

एनर्जी सिक्योरिटी, इसका मैंने कहा कि हमें अल्टरनेट स्रोतों की तरफ भी पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए भारत इसी दिशा में आज तेजी से काम कर रहा है। 2014 से पहले, मतलब आज से 12 साल पहले, हमारे देश में सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी, पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 12 साल में इन 70 शहरों को हमने 700 शहरों तक पहुंचा दिया है। ये होती है रफ्तार, ये होता है विस्तार। 2014 के पहले मुश्किल से 20-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था, आज 2.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। 12 वर्ष पहले देश में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी, 2 गीगावाट, आज 160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं, हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले, इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चालू की और आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं, तेजी से चल रहा है और उसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल जीरो हो गया है। हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में, 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमें इन एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया। 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां तो नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का एक नया क्षेत्र को भी छू लिया है। देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है। और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार

47 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में इतने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पर तनाव का माहौल और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी। देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग, एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा। लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर्स, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स। इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भर के मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए
एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन मैं ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमईस को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है, भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे और हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा। और पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्री तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफटीए के कारण हमारे श्रिप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है। हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है। और इसलिए मैं चाहूंगा हमें इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए हम आगे चलते हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है और अगला एक चौथाई हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कैटल बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कोई कंपल्शन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे के लिए कोई बजबड़ है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश, भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे।
अब विकसित भारत बनाने के लिए

0: नई धारा चाहिए।
1: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्त धारा की बात करता हूं, सप्त धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे ऊर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चाहे हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं 3 चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, यह समय का यह अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए, क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज। और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए, यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्त धारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर हमें एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे पाल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे, तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्त धारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है। और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजीज, उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्त धारा की चौथी शक्ति है

गति शक्ति, ये गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट्स को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है मेरे प्यारे देशवासियों। डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है, वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है, ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके चला है तब हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है, और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है उसकी राह देखता रहता है, और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदा है, हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है। क्षमता बहुत है लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का। हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है। हम ये काम आरा से करें और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र, दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत में क्यों ना हो। कॉन्स्टेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है, विश्व का

हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सर्ट करे। ये बहुत बड़ा अवसर है, हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की सात शक्तियां, सप्त शक्तियां, उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है, दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो, भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए, भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है, क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए? टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए? भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी, हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा, और इसको अगर हम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है, और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है, और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं,
आप अपने सपनों को लेकर के आइए।

संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1,00,000 करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा, युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर, और देश के नौजवानों ने नौजवानों को उसने नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है। 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको। 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है। करीब 1,000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकर की लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया। आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल के एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया उन्होंने। बहुत बड़ा काम कर दिया साथियों। आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके दे। बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का, बायो इकोनॉमी 20,00,000 करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, दो हजार 9-10 का कालखंड था सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए, मेरे साथियों,

ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है, वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं, तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता की है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती है ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत दो तिहाई खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर के देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत, ये हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य
हम हमारे देश के

के काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माय भारत के वॉलेंटियर्स ने, देश के एनजीओ ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दुर्मल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया, हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने चार चार दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारी पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहूलुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस विषाद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है, पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है, अब युद्ध सीमा पर ही होता है गारंटी नहीं है, युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है,
करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र

सत्र पहुंच रहे हैं। वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है, और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलेंट्री फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही है। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बेटियां निकली हैं वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी। मेरी बेटियों की ताकत कैसी है, मैं पिछले दिनों सारण में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां, देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही, वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था, वो बेटियां विदेशों में गई ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है, और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से यह सपना हमेशा राजनीति के अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ का। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है।

और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था वो मेरे परिवारों के बच्चे हैं, वो गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बड़ी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं। सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका 1 या 2 घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाले। आपको लगेगा ये 1-2 घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, मैं बताता हूं, आप बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले। और इसलिए हर घर में वातावरण बने। इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है। और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है। और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं, और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती हैं। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए, और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी। इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्मगौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सबसे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस आइए इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा समय हमारा है, मैं सभी देशवासियों से कहूंगा समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे, एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बहुत बहुत आभार महोदय। और वो सामने
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रेरणादायी वक्तव्य आपके जो लंबे समय तक सभी को प्रेरित करते रहेंगे। और इस समय हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, शान से वो लहराता हुआ, और हमारे दाहिनी ओर से तीन रंगों के गुब्बारे इस समय गगन को चूमने के लिए तैयार ऊपर उड़ते हुए, सभी की निगाहें इन गुब्बारों को देखती हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय अपने केंद्रीय मंत्रियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ध्वज स्थल से ही हाथ हिलाकर जो विशाल जन समुदाय यहाँ पर उपस्थित है उनका अभिवादन, उनका स्नेह भी स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही जो एनसीसी कैडेट्स बैठे हैं, माई भारत के स्वयंसेवक इस समय बैठे हैं अपने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और बीच में नारंगी रंग से वंदे मातरम जिन्होंने लिखा है, वो करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सम्मान और स्नेह प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समय लाल किले की प्राचीर से उसके प्रांगण में प्रस्थान हो रहा है और सभी केंद्रीय मंत्री अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए शाम

0: से हमारा तिरंगा यहाँ पर लहराता हुआ सभी की निगाहें कभी प्राचीर की ओर, कभी आसमान में उड़ते तीन रंगों के गुब्बारों की ओर और कभी दाहिनी ओर जाती है, क्योंकि सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला उस ओर से आएगा कुछ ही देर में। और सभी इस उत्कंठा से भरे हुए कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने स्वयं को प्रधान सेवक कहा है, उन्हें नजर भर देख लें और अगर ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनके सर पर हाथ रख दें, तो जीवन भर के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक ऐसी याद रहेगी जो इन युवाओं को तो प्रेरित करेगी ही, साथ ही इनके पूरे परिवार को और विद्यालयों को भी प्रेरित करेगी। हम आपको बताएं कि हर घर तिरंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो ये अभियान शुरू हुआ है 9 अगस्त से इस बार 17 अगस्त तक चलेगा। इस बार नया ये है कि सूर्य पथ तिरंगा भी हमारे पास है, जिसने कि भूखंड और कालखंड की सीमाओं को छोटा कर दिया है। यही है वसुधैव कुटुंबकम का वास्तविक भाव। अलग अलग देशों में जहां जहां सूर्य रश्मियां पहुंचेंगी, यानी सूर्योदय के साथ ही भव्य उदय होगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी, हमारे प्रिय तिरंगे का भी। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावास और मिशन के परस्पर संयोजन से तिरंगा फहराया जाएगा, अनेक माध्यमों से प्रदर्शित किया जाएगा, वैश्विक स्तर पर तकनीक का परंपरा के साथ समागम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया और साथ ही इस मंच से आपने बात की शक्ति की, सप्त धारा की, यहीं से पंचप्रण का उल्लेख हुआ, स्वच्छ भारत यहीं से हमने अपनाया और फिर उसे दुनिया को भी दिखाया कि भारतीय जब एकजुट हो जाएं एक लक्ष्य के प्रति तो क्या कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना इसी मंच से हुई। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने विनिर्माण क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों को हासिल करने की प्रेरणा दी है, इनोवेशन का हब भारत को बनाने की बात कही है, भारत की सॉफ्ट पावर किस तरह दुनिया में अपना स्थान बना रही है इसका उल्लेख किया, तो साथ ही खेल क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र का भी उल्लेख किया है।
1: और इस समय
0: माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला हम देख रहे हैं कि इस समय बढ़ चला है ज्ञान पथ की ओर, और जो NCC कैडेट्स हैं वो उत्सुकता से अपने अपने स्थान पर खड़े होने को आतुर हैं। जानेंद्र,
1: निश्चित रूप से उनके लिए ये बहुत विशेष अवसर होता है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय या लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने के बाद जब वे यहाँ से प्रस्थान कर रहे होते हैं, उस समय इन सभी उपस्थित बच्चों को उनका स्नेह मिलता है। यहाँ पर दर्शक कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भी बड़ी उत्कंठा से यहाँ उपस्थित होते हैं इस बात के लिए, और उस काफिले के राह के किनारे कहीं खड़े होकर एक झलक पाने को आतुर होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का युवाओं के साथ जो जुड़ाव है, जो कनेक्ट है, वो बहुत अद्भुत है, और इसीलिए वो देश, चूंकि ये युवाओं का देश है और इस देश के भविष्य में 1 करोड़ ऐसे युवाओं को जो कि कर्तव्य को अपनी पहचान बनाए, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे, ऐसे 1 करोड़ युवा अपने आप को कौशल के साथ जोड़ते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं, इस बात का बहुत विशेष उल्लेख किया उन्होंने। इसके पहले भी उन्होंने अनेक बार युवाओं को केंद्र में रखते हुए अपनी विजन, अपने विजन को, अपनी सोच को यहां से इस मंच से साझा किया है। शक्ति की सप्तधारा का बहुत विशेष उन्होंने आज एक नई सोच दी है इस देश को और देश के प्रगति को, विकास को, और इसमें जो 7 अलग अलग क्षेत्रों की उन्होंने बात की, दरअसल इसके पीछे चूंकि कार्य तो हर क्षेत्र में हो ही रहा है लेकिन इसको गति देने की बात है, इसको शक्ति देने की बात है। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने वाहन से उतरकर बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं, इसलिए करतल ध्वनि के जो गूंज है वो आप तक पहुंच रही होगी। प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए उन बच्चों को अपना आशीष दिया है, और जो 7 बच्चे वहां निकट हैं उनके, उन बच्चों के साथ वो हाथ मिलाकर उन्हें अपना स्नेह दे रहे हैं। इस समय बच्चों के लिए ये विशेष अवसर होता है, क्योंकि एक बार का दृश्य मुझे याद है, पहले का बच्चे जब खड़े होते हैं तो सभी सब निकट आने की कोशिश करते हैं और ऐसे में थोड़ी सी अफरा तफरी भी होती है, लेकिन चूंकि अनुशासन और संयम का एक दृश्य इस समय NCC के विद्यार्थी यहां पर दिखा रहे हैं, तो वो दृश्य हम यहां पर देख पा रहे हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए युवा साथी अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का और उनका स्नेह प्राप्त कर रहे हैं।
0: जी, और जिन बालिकाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ मिलाया है उनके लिए तो ये एक ऐसा पल है जो वो लंबे समय तक याद करेंगी, और जब एक लक्ष्य चुनेंगी, अपने जीवन को एक दिशा देंगी, उस समय भी ये पल उन्हें अभिभूत करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय NCC कैडेट्स के बीच से दोनों ओर हाथ हिलाते हुए जैसे एक साथ सभी को अपना स्नेह, अपना आशीष देना चाहते जाते हों, और ये कैडेट्स जो हैं बहुत ही मुश्किल से संयम दिखा रहे हैं, इस समय अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं निर्देशों का पालन करते हुए, लेकिन अपना

0: स्नेह लगातार प्रकट कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हवा में दोनों हाथ हिलाते हुए नमस्कार भी कर रहे हैं और साथ ही भारत माता की जय के नारे यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष लगा रहे हैं। मैं भारत के उज्ज्वल भविष्य का प्रमाण हूँ, राष्ट्रहित में होने वाला सारा उत्थान हूँ, स्वामी विवेकानंद के विचारों का चितवाण हूँ, मैं युवा हूँ, मैं भारत का प्राण हूँ।
1: प्रधानमंत्री जी ने एक जो उनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व से एक बात, एक संदेश जो साफ झलकती है वो है नई सोच नागरिक देवो भव का। नागरिक को केंद्र में रखते हुए अपने पूरे सुशासन के तंत्र को, व्यवस्था को उस ढंग से रूप देना, आकार देना। बच्चों के बीच से होते हुए प्रधानमंत्री महोदय अब दर्शक दीर्घा की तरफ जा रहे हैं। हमारी बाई तरफ जो दर्शक दीर्घाएं बनी है उसके रेलिंग के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग बड़े उत्साह उमंग से अपने अपने मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए वे कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई फोटो खींचना चाहता है, कोई हाथ हवा में लहराते हुए प्रधानमंत्री जी का अभिवादन और अभिनंदन कर रहे हैं। देश का ये वो नेतृत्व है जो दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय है, जो विकसित भारत की सोच और विजन को इस देश को जिन्होंने दिया है, इस देश के करोड़ों युवाओं को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और आत्मगौरव का भाव जिन्होंने भरा है। और हर व्यक्ति आज, हर भारतवासी इस विश्वास के साथ कि भारत विकसित होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत अपने स्वदेशी सोच और अपने पुरातन चिंतन के साथ, धर्म और आध्यात्म के साथ विश्व में अपनी पहचान बनाएगा, भारत विकसित भी होगा, अपनी विरासत के साथ विकसित होगा। इस समय दर्शक दीर्घा में काफी आगे तक प्रधानमंत्री जी बढ़ चुके हैं और उनकी इच्छा होती है कि कोई भी दूर दूर तक, जहां तक भी दर्शक आए हुए हैं और बल्कि ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, इसमें ऐसी बड़ी संख्या में हमारे दर्शक हैं जो अलग अलग जो सरकार की नीतियां रही हैं, उनकी योजनाएं रही हैं, उसका लाभ लेते हुए जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उन सबको विशेष रूप से इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ आमंत्रित किया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है, आकर्षण की चीज ये लगती है कि वो सभी अपने अपने प्रदेश की अलग अलग वेशभूषा में यहाँ पर आए हुए हैं। अधिकांशता उसमें से वहां प्रधानमंत्री महोदय के निकट अपने आप को पाकर वो निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे।
0: जी बिल्कुल जैनेन्द्र, और यहाँ पर भारत में जो अन्य देशों के दूतावास हैं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी है। इस समय वे भी बेहद आह्लादित महसूस कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की यही शैली, जो अपने देशवासियों से जुड़ने की शैली है, इससे दुनिया के बहुत सारे नेता प्रेरित हुए हैं और यही वजह है कि खाड़ी और मध्य पूर्व के देशों या हमारे पड़ोसी और एशियाई देशों या फिर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है, अपने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिए हैं, सैन्य सम्मान दिए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यवहार से अन्य देशों को भी दिखाया है कि किस प्रकार से अपने देशवासियों से जुड़ना है, उनके आकांक्षाओं को कैसे समझना है और किस प्रकार से उनके लिए जनहित की नीतियां बनाकर जन जन को राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए प्रेरित करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने प्रिय ये जो जनता है इनसे भेंट करने के बाद, अब पुनः जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन लगातार हाथ हिलाते हुए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए ये थोड़ी सी कठिन घड़ी है क्योंकि लगातार पैनी दृष्टि हर ओर उन्होंने बना रखी है, लेकिन वो भी समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं सबके स्नेह का, इसलिए उचित दूरी उन्होंने बनाए रखी है, लेकिन पूरी तरह से मुस्तैद और चौकस हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर स्नेहिल मुस्कान है अपने देशवासियों को देखकर और साथ ही जो बच्चे हैं यहाँ पर उन्हें देखते हुए, और ये जो देशवासी है इस समय आभार प्रकट कर रहे हैं एक तरह से उन नीतियों के लिए जिन्होंने इनके जीवन में बड़ा बदलाव किया है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, जीएसटी हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, प्रधानमंत्री जी की कही ये उक्ति हो, हरित ऊर्जा हो, अंतरिक्ष अनुसंधान हो, जनधन से जन जन तक होता वित्तीय समावेशन हो, उन सभी के प्रति एक तरह से आभार प्रकट करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहते हुए अपने जो ये संकेत है उनसे, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के बेहद नजदीक पहुंच गए कुछ एनसीसी कैडेट और सुरक्षा कर्मी, उन्हें स्नेहिल भाव से थोड़ा हटाते हुए, वहाँ थोड़ा अनुशासन बनाते हुए, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना, डिजिटल भारत जिसकी धूम अब दुनिया भर में है, और साथ ही आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते रहे हैं हमारे उत्पाद जो हैं वो वैश्विक गुणवत्ता के हो, हमारे बाजार दुनिया भर के लिए खुले रहें, और जब भी कोई विदेशी मेहमान हमारे यहाँ आता है तो जो भोजन परोसा जाता है उस

0: में हमारे हर प्रांत का कोई एक व्यंजन उसमें होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और साथ ही जो हमारे बुनकर हैं उनके द्वारा बुनी हुई जो वस्तुएं हैं वो भेंट स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी देश दुनिया के बड़े नेताओं को देते हैं, और बहुत सारी इस तरह की सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लगातार हमारे देशवासियों को मिलता रहा है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो मंच है, गरिमा में मंच है, यहाँ से भी देश दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है, नए प्रयास किए हैं, देशवासियों को लगातार प्रेरित किया है आगे बढ़ने के लिए, और अब नया लक्ष्य है हमारे सामने विकसित भारत का, जिसमें हम सभी को लगातार योगदान देना है।
1: आज प्रधानमंत्री जी ने इस लाल किले के प्राचीर से जहां संकल्पों की बात की, संकल्प से सामर्थ्य के निर्माण की बात की, और सामर्थ्य से सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए देश को समृद्धि के राह पर विकसित भारत बनाने का एक संकल्प उन्होंने दिया है। बीते 12 वर्षों में सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो तमाम प्रयास किए गए हैं, उनके बारे में इस बात की परिकल्पना शायद पहले भी किसी ने नहीं की होगी कि उनका इतना बड़ा परिणाम और फल इस देश को मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जनधन योजना की ही, तो जब जनधन योजना की शुरुआत हुई, आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकिंग सेवा देश के कोने कोने तक पहुंची है, हर गांव तक पहुंची है, 99.92% गांवों तक इस सेवा की पहुंच बनी है, ये निश्चित रूप से 100% आप इसको कह सकते हैं। और किसी भी गांव में 6 लाख से अधिक गांव में देश में मात्र 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर भीतर बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होती हैं। प्रधानमंत्री महोदय बच्चों के बीच से निकलते हुए और एक बार फिर से प्राचीर की तरफ उन्होंने हाथ हिलाकर यहाँ के अतिथियों का भी अभिवादन स्वीकार करते हुए अब अपने वाहन में वो सवार हो चुके हैं, और अब समय है जब 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतिम चरण में माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्र को संबोधित करने के बाद और यहाँ उपस्थित जनसमुदाय और विशेष रूप से युवा शक्ति के साथ संवाद और निकटता का एक भाव प्रेषित संप्रेषित करने के बाद अपने वाहन में सवार होकर यहाँ से अब प्रस्थान करने जा रहे हैं। आप सबके लिए उनकी तरफ से जो प्रेरणा मिली है इस राष्ट्र को निश्चित रूप से आगे लेकर जाएगी।
0: जी बिल्कुल, और माननीय प्रधानमंत्री जी अब अपने वाहन में सवार हो चुके हैं, वाहनों का काफिला मंथर गति से बूथ जो है हमारा उसकी बाईं ओर बढ़ता हुआ धीरे धीरे, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो अब पुनः अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, जो आगंतुक है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों की भी तस्वीर इस समय ले रहे हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री जी अपने वाहन के भीतर से भी हाथ हिलाकर लगातार सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नया देश है, नया भारत है, बदलती तस्वीर है जिसमें बेटियों को भी बराबरी मिल रही है, और इसी वजह से शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे तो सबसे पहले एक बेटी के सर पर हाथ रखा। सैन्य क्षेत्र, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, फैशन, खेल और उद्योग क्षेत्र में भारत माँ की बेटियां भी प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही हैं। फाइटर कॉम्बैट लीडर बनना हो या ड्रोन दीदी, या फिर अपनी मेहनत से सफलता के नए अध्याय रचती लखपति दीदी हो, माँ भारती का नाम रोशन कर रही है देश की बेटियां। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे मेहनती खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण पदक जीते जिनमें 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, लगभग 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस दिशा में नए लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं, और ऐसे ही लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी हमें दिए हैं। मत पूछो मुझसे देश क्या है, ये कागज पर खींची रेखा नहीं, ये उन वीरों की आखिरी सांस है जिन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनके प्रति आभार प्रकट करने का दिन आज, लेकिन साथ ही जो राष्ट्र निर्माण में लगातार सहयोग करते रहे हैं उनके प्रति भी। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान, प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार और कलाकार, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाज सेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सैनिक और सशस्त्र बल, अपनी कर्तव्य निष्ठा से हम सभी को विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाना है, इसमें अपना दायित्व निभाते हैं प्रवासी भारतीय भी। सभी के ऊपर ये दायित्व के 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। और आपको फिर से एक बार आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए मैं तकनीकी टीम प्रमुख श्री जितेंद्र पुरुथी, तकनीकी टीम के सदस्य शांतनु घोष, शक्ति धरध्यानी, अशोक कुमार मिश्र, कमल सिंह, सुमित कटियार, नागेंद्र पटेल, नीरज तिर्की, बाबूलाल मीणा, राजकमल शर्मा, नरेंद्र नाथ, किरण पाल सिंह, विष्णु

0: आनंद तिवारी, अतुल कुमार, हेमराज मीणा, विशाल कुमार, अभिषेक कुमार, कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती मनीषा जैन, कार्यक्रम टीम के सदस्य विवेक कुमार तोमर, तुषार पाराशर, शाहनवाज खान, भगवती चरण बौखंडी, जगमोहन सिंह, कार्यक्रम संयोजक श्री प्रमोद कुमार वत्स के साथ मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर जैनेन्द्र सिंह और देवेंद्र त्रिपाठी के साथ पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लेकर चलती हूँ। जय हिंद।
1: अभी आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजारोहण और राष्ट्र के नाम संबोधन का सजीव प्रसारण। FM बैंड 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। श्रोताओं, हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
3: योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
4: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं।

ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 9:20 में अब आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान।

सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहउ मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजसु विधि हाथ। श्री रामचरित मानस का ये दोहा भारतीय जीवन दर्शन का मानो एक आधार स्तंभ है। राजा दशरथ की अंत्येष्टि तथा दशगात्र विधान संपन्न हो जाने के पश्चात मुनि वशिष्ठ ने राजसभा में भरत को धीरज बंधाते हुए ये वचन कहे थे। राजा दशरथ के निधन पर सोच करने का औचित्य नहीं है, सोच उस राजा के बारे में करना चाहिए जो नीति निपुण नहीं होता और जिसे प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं होती। मुनि वशिष्ठ ने इस प्रकार नारी वर्ग सहित समाज के विभिन्न वर्णों, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा अन्य लोगों के हित अहित और उन कार्यकलापों की चर्चा की जिनके कारण वे सोच करने के हेतु बनते हैं। राजा दशरथ तो सब प्रकार से बड़भागी थे, अतः उनके कारण विषाद व्यर्थ है। उन्होंने भरत को राज दिया है तो भरत को पिता के वचन को साकार करना चाहिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 9:30 में अब आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

नमस्कार। संस्कार, संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का अनूठा संगम, सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़, छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए वैदिक पढ़ाई का एकमात्र संस्थान, राजस्थान का पहला बालिका वेद विद्यालय भी यहीं संचालित होता है। छात्र छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित पृथक पृथक छात्रावास की उत्तम सुविधा है। प्रवेश प्रारंभ है, संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 MHz पर। सुबह के 9:40 में अब आप सुनेंगे कार्यक्रम साजों पर धुन।

सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582401168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम साजों पर धुन। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM एंड 103.7 MHz पर। सुबह के 10 बजे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत की ओर। साथियों, आज का दिन हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का दिन है। हम मना रहे हैं अपने देश की स्वतंत्रता के 80वें वर्ष का राष्ट्रीय पर्व। ये केवल एक तारीख नहीं है, ये उन अनगिनत बलिदानों की याद है जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की नींव रखी। आज जब हम आज़ादी के 80 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं, तो हमें ये भी सोचना होगा कि इन 80 वर्षों में हमारा देश कितना आगे बढ़ा है। कभी संसाधनों की कमी से जूझता भारत आज विज्ञान, तकनीकी, अंतरिक्ष, कृषि, शिक्षा, खेल और डिजिटल क्षेत्र में दुनिया के सामने अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। साथियों, अब हम आपको ले चलते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने पुराने जमाने की ओर, और शुरुआत करते हैं फिल्म लीडर का ये प्यारा सा नगमा। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और साथियों की, संगीत नौशाद का और गीत लिखा है शकील बदायूनी ने।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, फिल्म संगीत का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म तुमसे अच्छा कौन है से। आवाज मोहम्मद रफी की है, संगीत शंकर जयकिशन का है और गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी बलबीर और साथियों की आवाज़ में फिल्म नया दौर से। संगीत ओपी नायर का और गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज़ में फिल्म हकीकत से। संगीत मदन मोहन का और गीत लिखा है कालिफ आजमी ने।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
5: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर केंद्र से

कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने पुराने जमाने के। साथियों, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर की आवाज़ में फिल्म उपकार से। संगीत कल्याण जी आनंद जी का और गीत लिखा है गुलशन बावरा ने।

श्रोता हूँ, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने पुराने ज़माने के। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है FM 103.7 MHz पर। सुबह के 10:30 में अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने नए तराने नए। साथियों, शुरुआत करते हैं फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से। आवाज़ नीति मोहन, विशाल ददलानी और के शंकर महादेवन का है। संगीत इरशाद कामिल का, माफ़ कीजिएगा, विशाल शेखर का, और गीत लिखा है इरशाद कामिल ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं दलेर मेहंदी और चित्रा की आवाज़ में फिल्म रंग दे बसंती से। संगीत ए आर रहमान का और गीत लिखा है परशुन जोशी ने।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर केंद्र के चिरमी चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने नए जमाने के। कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं विशाल ददलानी और शेखर रावजियानी की आवाज़ में फिल्म फाइटर का ये प्यारा सा नगमा। गीत के बोल कुमार के और संगीत विशाल शेखर का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D से। आवाज़ शंकर महादेवन और उदित नारायण के, गीत के बोल समीर के और संगीत शंकर एहसान लोय का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
3: श्रोताओं, फिल्म संगीत का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म राजी से। गीत के बोल गुलजार के और संगीत शंकर एहसान लोय का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला और अंतिम नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बॉर्डर टू से। आवाज़ सोनू निगम की है, संगीत मिथुन का और गीत के बोले मनोज मुंसियर।

0: हम आपको ले चलते हैं विविध भारती राष्ट्र सेवा देश की सुरीली धड़कन की ओर। सुनवाते हैं विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
4: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
3: हाँ।
4: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
3: हाँ।
4: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
3: हाँ? पता नहीं।
4: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
5: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

श्रोताओं, अब आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने नए तराने नए। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11 बजे हैं अब।

0: प्राचीन काल से हिंदुस्तान में भाषा, धर्म, आहार विहार और भौगोलिक परिस्थिति में विविधता पाई जाती है। ब्रिटिश काल में भी राजकाज की सहूलियत को देखते हुए प्रांत रचना सीमित संख्या में थी। फिर भी सार्वजनिक रूप से आम जीवन में बोली जाने वाली 15 से अधिक ऐसी भाषाएं तो थीं जिनकी अपनी अधिकृत लिपि थी।
1: वंदे मातरम इस रचना की और उसके रचयिता की बात करें तो मातृभाषा बांग्ला और अंग्रेजी के ज्ञाता तो वे थे ही। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय गीरवाण भाषा संस्कृत के भी अध्येता थे। संस्कृत साहित्य का प्रभाव उनके साहित्य पर था। वंदे मातरम गीत का निर्माण एक सहज उमंग से हुआ था, इसलिए उसे भाषा के बंधन स्वयं बंकिम चंद्र भी नहीं लगा सके। यह गीत बांग्ला और संस्कृत भाषा का मिश्रण है, पर इसमें हर वाक्य में एक शब्द बांग्ला और एक शब्द संस्कृत ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें कुछ वाक्य पूरे पूरे बांग्ला हैं। ऐसा होने पर भी इसकी प्रभावकारिता कहीं भी खंडित नहीं होती। वंदे मातरम का पहला अनुवाद बंकिम चंद्र जी के जीवन काल में ही हुआ और यह अनुवाद संस्कृत में किया गया था। विजयलाल दत्त द्वारा रचित जागो माँ आमार इस कविता में शुरुआत की कुछ पंक्तियों को जोड़कर वंदे मातरम का संस्कृत अनुवाद लेकर और फिर अंत में उन्होंने वंदे मातरम के महत्व को बताने वाली पंक्तियां जोड़ी। मूल गीत में जो पंक्तियां या शब्द बांग्ला के हैं केवल उन्हीं पंक्तियों को संस्कृत में बदला गया था। उदाहरण के लिए के बोले माँ तुमी अबले इसकी जगह कोह भिदंते मातर बले, उसी प्रकार बाहुते तुमी माँ शक्ति के स्थान पर भुजयो स्तबम मसी शक्ति चेतसी त्वमसी भक्ति ही सृजामिते प्रतिमूर्ति ही मंदिरे मंदिरे ऐसी पंक्तियां आई हैं। ऋषि बंकिम चंद्र द्वारा लिखे गए वंदे मातरम गीत में अधिकांश शब्द रचना संस्कृत में ही है, इसलिए इस अनुवाद में सभी पंक्तियां संस्कृत भाषा में रूपांतरित हो गई हैं और इसीलिए इसे पूरी तरह से स्वतंत्र पहला अनुवाद नहीं माना जा सकता।
2: ১৮৭৫ में ऋषि बंकिम चंद्र जी ने बंगाली मिश्रित संस्कृत में वंदे मातरम की रचना की, लेकिन उसमें निहित आशय के कारण मात्र बंगाल तक सीमित न रहकर वो काव्य पूरे देश का गीत बन गया। मूल गीत तो लोकप्रिय हुआ ही, परंतु अनेक भाषाओं के कवियों ने ये महसूस किया कि ये गीत उनकी अपनी प्रांतीय भाषा बोलने वाले सामान्य जनों तक पहुंचना चाहिए। अतएव उन कवियों ने अपनी अपनी भाषा में इसका अनुवाद भी किया।

0: गुजराती, तेलुगु और उर्दू जैसी भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में भी 9 से अधिक अनुवाद हुए। हर भाषा की अपनी विशेषता, अपना निरालापन होने पर भी बंकिम बाबू के मूल गीत की मधुरता बनाए रखने का प्रयास सभी ने किया।
1: आश्चर्य की बात यह है कि वंदे मातरम का पहला अनुवाद 1888 में यानी बंकिम चंद्र जी के जीवन काल में ही श्री अरविंद के दादा राज नारायण बसु ने अंग्रेजी में किया। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसी अनुवाद के कारण वंदे मातरम के भाव पर शंका जताई गई। अंग्रेजों ने वंदे मातरम का संज्ञान इसी अंग्रेजी अनुवाद के कारण लिया। बाद में लगभग 17-18 साल बाद राज नारायण बसु के ही नाती क्रांतिकारी अरविंद घोष ने वंदे मातरम के 2 अंग्रेजी अनुवाद किए।
2: मदर, I bow to thee।
3: उसके बाद 6 और अनुवाद प्रकाशित हुए। उनमें से एक अनुवाद बंगाल के विभाजन की पृष्ठभूमि में 11 दिसंबर 1905 के इंडियन मिरर के अंक में प्रकाशित हुआ। उस पर कवि का नाम नहीं था। एक और अंग्रेजी अनुवाद द स्टेट्समैन के 1905 के अंक में प्रकाशित हुआ और उस पर ट्रांसलेटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल काउंसिल इन अमेरिका ऐसा छपा था।
1: इन अंग्रेजी अनुवादों की एक विशेष बात यह है कि इनमें से एक अनुवाद ब्रिटिश अधिकारी W.H.L. लेफ्ट ने किया था, जिसमें विंध्य, दुर्गा, लक्ष्मी और वाणी इन शुद्ध हिंदी शब्दों का प्रयोग उल्लेखनीय है।
4: My motherland, I sing. Her splendid streams, her glorious trees, they zephyr from the far-off Vindhya Heights. Her fields of waving corn, the rapturous radiance of her moonlit nights, the trees and flowers that flame afar, the smiling days that sweetly vocal are, the happy blessed motherland, her will by 70 million arms upheld, her strength no man's scorn, thou art my head, thou art my heart, my life and soul art thou, my song, my worship and my art. Before thy feet I bow, as Durga, scourge of all thy foes, as Lakshmi, bowered in flower that in the water grows, as Vani, wisdom and power, the source of all our might. Our every temple doth thy form uphold, unequaled, tender, happy, pure, of splendid streams, of glorious trees, my motherland, I sing. The stainless charm that shall endure, and verdant banks and wholesome breeze, that with her praises sing, my motherland.

सबसे अधिक अनुवाद अंग्रेजी में हुए। हिंदी साहित्यकारों पर भी वंदे मातरम का प्रभाव पड़ा। प्रसिद्ध हिंदी कवि मदनलाल वर्मा कान

0: और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत सुंदर अनुवाद किए हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी वंदे मातरम के कोटि कोटि कंठ वाले छंद का अनुवाद सुंदर हिंदी में करते हैं।
1: 30 कोटि लोगों की कलकल सुनी जहां पर जाती है, उसके दुगुन खड्ग धारा की द्युति विकास जहां पाती है, तिस पर भी तू अबला है, ये बात व्यथा उपजाती है। हे तारिणी, हे बहुबल धारिणी, रिपु तू काट गिराती है, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
2: उर्दू भाषा में भी वंदे मातरम के 3 अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। उनमें से पहला काजी अब्दुल गफ्फार द्वारा किया गया अनुवाद दैनिक पयाम के उर्दू अंक में 7 अक्टूबर 1937 को प्रकाशित हुआ। प्रसिद्ध उर्दू शायर सीमाब अकबराबादी तथा कवि भानु ने भी उर्दू में अनुवाद किए हैं। उनमें से भानु द्वारा किया गया अनुवाद ये रहा।

तमिल भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। विख्यात कवि सुब्रमण्यम भारती ने दक्षिण में वंदे मातरम शब्दों का प्रचार अपने काव्य और कार्य से किया। भारत रत्न MS सुब्बलक्ष्मी ने भारती द्वारा किए गए अनुवाद को अपने मधुर स्वरों से सजाया था।

संध्या दीक्षित के कन्नड़ अनुवाद में मूल वंदे मातरम की नाद मेहता बहुत सुंदर ढंग से प्रकट हुई है। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म का अनुवाद करते हुए वे लिखती हैं, नी विद्ये नी ने धर्म, नम हृदय दी नी ने मर्म।

0: बड़ौदा के सावरकर अध्येता और
1: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का SD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: अंग्रेजी अनुवाद के बाद सबसे अधिक यानी 5 अनुवाद मराठी भाषा में हुए हैं। विष्णु रंगाजी शेरडेकर जो गोवा के प्रसिद्ध कवि थे उनके द्वारा किया गया अनुवाद संभवतः 1910 से पहले का है। वहीं पर वंदे मातरम के 125वें वर्ष के अवसर पर डॉक्टर प्रदीप आगाशे ने मुक्त छंद में वंदे मातरम का अनुवाद किया।
1: वंदितो माते तुलामी मातृभूमि आमुची, वर्णिता शब्द ही सुचेना ही अवस्था आमुची, पाणी आणि धान्य विपुल ही देसी सततची तू आम्हा, वायु लहरी शीतल अशा मलय शिखरा वरुणी ज्या, विपुल शेती शीतलहरी यामुळे श्यामल अशी, वंदितो माते तुलामी मातृभूमी आमुची।

वंदे मातरम के इन अनुवादों के अलावा वंदे मातरम से प्रेरणा लेकर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, कविवर बीनी माधव, क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, स्वामी श्रद्धानंद के पुत्र कवि इंद्र, सरला देवी चौधरानी, मराठी में ग दी माडगुलकर, गुजराती कवि नानालाल और महाकवि वल्लतोल नारायण मेनन ने भी वंदे मातरम से प्रेरित होकर मातृ वंदना करने वाले गीत लिखे हैं। उनमें से मलयाली कवि महाकवि वल्लतोल का ये गीत

और अब वंदे मातरम का वो हिंदी अनुवाद संवित स्वरों में प्रस्तुत है जो रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष के इस विशेष संस्करण के लिए रचा गया है। अनुवादक कवि जयंत पात्रिकर, संगीतकार अजय पराड़।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वंदे मातरम के विषय में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा है,
1: वंदे मातरम, वंदे मातरम, एक गान नथी आ शान बान अने आन आपणी, आजादीना महायज्ञनी आहुति आ, राष्ट्रभक्तिनी आहले का, गणतंत्रना उरतंत्रनो महामंत्र आ, विकासनी आ सतत धबकती अननम ओळख रहे आपणी, 1857 नो प्रकाश पुंज आ, सत्य काजे रक्तनो अभिषेक अविरत, वंदे मातरम ए शब्द नहीं आ मंत्र आपणो, आजादीनी ऊर्जानो धबकार आपणो, विकासनो आ राजमार्ग छे, संकल्पित आ राष्ट्र जीवननो महामार्ग छे, प्रजा जीवननी प्रत्येक प्रत्येक प्रभातनी प्रत्येक प्रबुद्ध चेतनानो स्वर आछे, वंदे मातरम। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर, ममता सिंह, मंदाकिनी जो

समृद्धि नाइक, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है।

0: जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी शक्ति दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
0: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
0: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है और ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की जनता से अधिक विकसित, समृद्ध और उज्जवल पश्चिम बंगाल के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। श्री अधिकारी ने स्वतंत्रता दिवस पर राज्य की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हमलों में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेबनान और इसराइल में इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिणी लेबनान के इसराइली सैनिकों को लौट जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री अरबिंदो की जयंती पर स्मरण किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अरबिंदो को एक महान दार्शनिक, राष्ट्रवादी कवि और विचारक बताया। प्रधानमंत्री ने पारसी नववर्ष नवरोज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि पारसी समुदाय के लोगों के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान ने देश को अनगिनत तरीकों से समृद्ध किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। गाल में श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 101 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी

0: लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। अपने सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विविध भारती परिवार की ओर से हमारे सभी सुनने वालों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।

0: शंकर जय किशन की तर्ज थी शैलेंद्र का लिखा गीत, आपने सुना मुकेश की आवाज में, फिल्म थी जिस देश में गंगा बहती है।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे

0: प्रेम पुजारी फिल्म का ये देशभक्ति गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। नीरज की रचना थी, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।
1: बैठ जा, खड़ी हो जा।
2: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
3: अब कहां जाएं हम?
4: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदार राजाध्यक्ष आ रही हैं।
4: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
2: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सेहतनामा।

आप सुन रहे थे शहीद फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी और साथियों का गाया। प्रेम धवन की रचना थी और संगीत भी था प्रेम धवन का ही। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

जिगरी दोस्त इस फिल्म में मोहम्मद रफी को आपने सुना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।

0: जागृति फिल्म का ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी की आवाज में प्रदीप की रचना थी श्रद्धा और हेमंत कुमार की तर्ज थी ये।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा

0: अच्छा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
2: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: गंगा की सौगंध फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आरती मुखर्जी, मोहम्मद रफी, अमित कुमार और साथियों की आवाजों में। अनजान के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। श्रोताओं, यादों की महफिल कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरली धड़कन। ये आकाशवाणी नागौर का चिरपी चैनल है। दोपहर के 1 बजे हैं। अब आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। राष्ट्र आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देशवासियों से स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें निश्चित दिशा में आगे बढ़ना है। भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु से ही संभव होगा। उन्होंने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान किया ताकि देश को नई ऊंचाई तक पहुंचाया जा सके। श्री मोदी ने कहा कि इसके लिए युवाओं का सहयोग जरूरी है। देश को अब डिजाइन से लेकर विनिर्माण तक पूरी मूल्य श्रृंखला पर ध्यान देना होगा। इधर प्रदेश भर में भी राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस का उल्लास छाया हुआ है। स्वाधीनता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह बीकानेर में आयोजित

0: आयोजित किया गया। करणी सिंह स्टेडियम में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की डिजिटल क्रांति और यूपीआई पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीकानेर में युवा संवाद विकसित राजस्थान 2047 कार्यक्रम में युवाओं से रूबरू हो रहे हैं। ये कार्यक्रम बीकानेर के जल विज्ञान एवं जल प्रबंधन संस्थान में रखा गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बीकानेर को 5 ई बसों की सौगात भी दी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रदेश के लिए 12,112 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। श्री शाह प्रदेश के किसानों को किसान सम्मान निधि की 667 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 152 करोड़ रुपए की राशि सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री 10,500 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। वे अलवर और चित्तौड़गढ़ जिलों में भी विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रदेश भर में आज हरियाली तीज का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सावन के पवित्र महीने की तीज को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अखंड सौभाग्य और सुखी दांपत्य जीवन की कामना की जाती है। तीज पर मेहंदी लगाने, झूला झूलने और लोक गीतों का भी विशेष महत्व है। कई स्थानों पर मेले भी भरते हैं। पर्यटन विभाग की ओर से राजधानी जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाएगी। शाही लवाजमे के साथ जनानी ड्योढ़ी से ये सवारी निकलेगी। इसके लिए प्रशासन ने यातायात के विशेष प्रबंध किए हैं। रामदेवरा मेले में यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने 4 जोड़ी मेला स्पेशल रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया है। इनमें भगत की कोठी रामदेवरा के बीच 3 जोड़ी तथा श्रीगंगानगर पोकरण के बीच 1 जोड़ी स्पेशल ट्रेन शामिल है। भगत की कोठी रामदेवरा मेला स्पेशल 28 अगस्त से 25 सितंबर तक चलेगी। जोधपुर, राई का बाग, मंडोर, मारवाड़, मथानिया, तिवरी, ओसियां, मारवाड़, लोहावट और फलोदी में इस ट्रेन का ठहराव रहेगा। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 18 अगस्त तक राज्य के पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस बीच पिछले 24 घंटों में धौलपुर जिले में भारी बारिश हुई। वहीं अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, डीग, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद और सिरोही सहित अन्य स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 14 सेंटीमीटर बरसात जोधपुर के बाड़ी में रिकॉर्ड हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, दोपहर के 1:05 में फिर से हम आपको ले चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरली धड़कन की ओर। सुनवाते हैं विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में

रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: बी प्राक की आवाज में ये गीत आपने सुना योद्धा फिल्म से। बोल थे मनोज मुंतशिर के और संगीत था तनिष्क बागची का। फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।
1: क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420।

ये देशभक्ति से ओतप्रोत गीत आपने सुना पूरब और पश्चिम फिल्म से। आवाजें थी महेंद्र कपूर और साथियों की, बोल थे इंदीवर के और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत रोजा फिल्म से।

0: आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मानापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मानापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मानापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है परदेश फिल्म से। आवाजें हैं हरिहरन, कविता आदित्य शंकर महादेवन की, बोल है आनंद बख्शी के और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
5: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। आइए अब सुनते हैं महिला जगत।

महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियां अभिवादन स्वीकार कीजिए निधि दत्त भारद्वाज का। आप सभी को आकाशवाणी की महिला जगत

0: टीम की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। सखियों, आज हम सभी बहनों ने अपने अपने घरों में तिरंगा फहराया है। आज जिस आजादी को हम महसूस कर पा रहे हैं, इस आजादी के लिए अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे और अब हमारी बारी है स्वतंत्रता के वर्तमान आयामों से अपने देश की सेवा करने की। भैया, आप सोच रही होंगी ना कि अब तो हम आजाद हैं, फिर और क्या करना है हमको? करना है सखियों, बहुत कुछ करना है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान देकर एक सुंदर भारत के निर्माण की नींव रखी। अब भारत को बुलंदियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे आज के वर्तमान को बेहतर प्रयासों से हमें आने वाले भारत को दुनिया की ऊंचाइयों को प्राप्त करवाना है। हमारी आने वाली पीढ़ियां बेहतर और सुंदर विकसित भारत में निवास करेंगी, ऐसी हम कामना करते हैं। हम इसे कुछ इस तरह से समझते हैं सखियों कि आज हमारी जो सखियां जीवन के इस पड़ाव पर हैं, जहां अब उनकी सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं, वो देश के पर्यावरण, स्वच्छता और शिक्षा के लिए अपनी परिस्थितियों के अनुसार काम कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, वह फलदार वृक्षों को रोप सकती हैं। अभी देखिए, खूब बारिश हो रही है, प्रकृति सहयोग कर रही है। ऐसे में हम सखियां यदि एक एक सखी 10 फलदार पौधों को रोपे, पेड़ों को रोपे, उनका पालन पोषण करेगी, तो आने वाले 15-20 वर्षों में हम जो पेड़ हैं वो हमें फल देंगे, छाया देंगे, साथ ही साथ प्राणवायु, ऑक्सीजन भी देंगे। इस तरह से हम अपने देश को सुंदर बनाकर आजादी में सहयोग कर पाएंगे। और अब बात हमारी उन सखियों की जो बहुत सफाई पसंद है। भाई, अपने इस जुनून को वो अपने देश सेवा में भी उपयोग कर सकती हैं। वो अपने देश के लिए अपने दिन के कुछ समय को निकालें, मोहल्ले, कॉलोनी और खुद के क्षेत्र में सफाई के प्रति जागरूकता फैलाएं। अपने इस जुनून को वो देश के लिए उपयोग बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि देखियो सखियों, ऐसे कई उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं जिन्होंने अकेले अपने दम पर कई किलोमीटर के क्षेत्र की सड़कें, तालाब, बाग बगीचे और समुद्र के किनारों को एक
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: को ये कहना चाहते हैं कि वो हमारी पेरेंटिंग को दोबारा से रीइवैल्यूएट करें, और ये करना ही होगा। अपने बच्चों को भरपूर समय देना होगा, वो क्या चाहते हैं उन्हें सुनना होगा, समझना होगा, और अपनी परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय लेने होंगे। ध्यान रखना है सखियों, इसमें हमारे बच्चों की सहमति जरूर लेनी है। तो सखियों, इस तरह से हम अपनी आजादी के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर सकते हैं, साथ ही साथ एक समृद्ध उज्जवल भारत के निर्माण में अपना सहयोग भी दे सकते हैं।
3: देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।

सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भारत

मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झनझनाओ बार बार, झनझनाओ।

तुझे सौगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे, है मुझे सौगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे, युद्ध ये सम्मान का है मान रहना चाहिए।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।

0: एक वार्ता का जिसका विषय है भारत की स्वतंत्रता यात्रा, और हमारी वार्ताकार हैं प्रोफेसर गिरिजा जोशी।
1: नमस्कार श्रोताओं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम विषय पर आज आपसे मुखातिब हूँ। 16वीं शताब्दी में भारत प्रसिद्धि एवं समृद्धि के शीर्ष पर था। विश्व के सभी राष्ट्र इसी समृद्धि से प्रभावित होकर भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाने का प्रयास कर रहे थे। लंदन स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश साम्राज्ञी एलिजाबेथ से 31 दिसंबर 1600 को भारत में व्यापारिक गतिविधियां प्रारंभ करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। 1750 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शक्ति राजनीति का खेल शुरू करते हुए 1850 ईस्वी तक भारत के बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। 1857 में कंपनी शासन द्वारा भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सैनिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रवृत्तियों के माध्यम से हस्तक्षेप करने से भारत में कंपनी का विरोध प्रारंभ हो गया, जिसकी परिणति के रूप में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम अस्तित्व में आया। कुछ कमियों तथा फूट डालो और राज करो की नीति के कारण यह विद्रोह असफल हो गया, लेकिन इसका सकारात्मक प्रभाव भारतीय जनमानस पर पड़ा। उनके व्यवहार में स्वतंत्रता प्राप्ति की आकांक्षा जन विद्रोह के रूप में सामने आई। 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई। 1885 से 1947 तक कांग्रेस के स्वरूपों में परिवर्तन जन आकांक्षाओं और परिस्थितियों के अनुरूप समक्ष आए। स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर कांग्रेस की क्रिया प्रणाली को 3 मुख्य कालों के रूप में विश्लेषित किया गया। 1885 से 1905 तक का प्रथम काल जो उदार या नरम राष्ट्रीयता के काल के रूप में था, जिसमें ब्रिटिश सम्राट के प्रति विश्वास और सहयोग की नीति को अपनाकर भारतीय नागरिकों को राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए याचना, स्मृति पत्रों तथा प्रतिनिधिमंडलों के माध्यम से प्रयास किए गए। इस विचारधारा के प्रमुख नेता दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा फिरोज शाह मेहता द्वारा शांतिपूर्ण तरीके और संयम से अपनी बात मनवाने का प्रयास किया गया। उदार रवैये की असफलता से 1906 से 1919 तक उग्र राष्ट्रीयता का काल का जन्म हुआ। इस काल में नवयुवकों में व्याप्त असंतोष का कारण कांग्रेस के नेतृत्व में उग्र राष्ट्रवादी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय तथा विपिन चंद्र पाल, तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, के हाथों में आ गया। इनकी उग्र विचारधारा के कारण ये ब्रिटिश शासन पर दबाव डालकर शासन व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन लाने का समर्थन करते रहे। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरम और गरम दल के रूप में हुआ, जो कि उदार और उग्र राष्ट्रीयवाद के समर्थक थे। दोनों एकीकृत 1915 में हुए। 16 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा एक घोषणा हुई, जिसमें बंगाल का विभाजन पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के रूप में होना प्रस्तावित किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू किया गया। जब उदार और उग्र राष्ट्रीयता के कालों में कांग्रेस द्वारा अपनी विचारधारा परिवर्तन से भी सफलता नहीं मिल पाई, तब कांग्रेस के 1920 से लेकर 1947 तक के महत्वपूर्ण काल में स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन में मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में जन समर्थित नेता को भारतीय जनमानस की भावनाओं को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व बना दिया। 1600 ईस्वी से 1920 तक की अवधि में भारत की वैश्विक पहचान अहिंसा, शांति और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा की रही है। प्रधानतः भारत द्वारा इन विशेषताओं का प्रयोग अपनी सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में किया गया। गांधी जी ने भारतीय जनमानस की इच्छाओं को समझा, उनका विश्लेषण किया तथा उनको अपने साथ सम्मिलित करने हेतु उनकी ही जैसी छवि को अपनाकर अपने साथ सफलतापूर्वक जोड़ा। गांधी जी द्वारा किए गए ये प्रयास अद्भुत सामाजिक परिवर्तन का संवाहक बने। गांधी जी द्वारा दिए गए सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह रूपी शस्त्रों की सहायता और स्वीकार्यता से राष्ट्रीय आंदोलन एक सबल जन आंदोलन के स्वरूप में प्रत्यक्ष रूप से सामने आया। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह और जन चेतना जागृत करने के शांतिपूर्ण आंदोलनों की दिशा से एक मार्ग प्रशस्त किया गया, जिसमें 1917 का चंपारण सत्याग्रह, जो कि नील खेती किसानों पर अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ था, इसको भी शासन तक पहुंचाया गया। 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद में किए गए आंदोलन, जो कि किसान

0: किसानों और मिल मजदूरों के खिलाफ थे, जिसमें कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध रुख का विरोध किया गया था। 1920 में असहयोग आंदोलन के द्वारा अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को दी गई सरकारी नौकरियों, उपाधियों और वस्तुओं का शांतिपूर्ण बहिष्कार करके अपना असहयोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ रखा। 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन एक बड़ा राष्ट्रीय अहिंसक आंदोलन था, जिसमें विनम्रता के साथ कानूनों की अवहेलना करनी थी। इसका प्रारंभ 12 मार्च 1930 को डांडी यात्रा से हुआ, जिसमें गांधी जी ने साबरमती आश्रम से डांडी तक पैदल यात्रा कर 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों के काले कानून को तोड़ा था। 1942 का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें करो या मरो का नारा देकर अंग्रेजों को देश से भगाने का आह्वान किया गया, जो कि एक जन आक्रोश और प्रबल समर्थन के साथ पूरे देश में फैल गया। ब्रिटिश शासन की मजबूती धीरे धीरे कमजोरी बनने लगी। अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम की सार्थकता से परिचित होकर भारत छोड़ने की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए मजबूर कर दिया गया। 1857 से 1947 तक की स्थितियों का विश्लेषण इस तथ्य का प्रत्यक्ष प्रमाण देता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन की नियत प्रवृत्ति में नकारात्मकता के कारण भारतीय जनमानस की सरल, सौहार्दपूर्ण एवं सामंजस्य वाली भावनाओं में कटुता, फूट डालो और राज करो तथा वैमनस्य की उपस्थिति हो गई, जिससे मूल भारतीय संकल्पना तथा पहचान का संकट उत्पन्न हो गया। गांधी जी के नेतृत्व ने भारत की गौरवशाली परंपरा को पुनः स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। अंग्रेज शासन ने स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्रता तथा उसकी सबलता को दृष्टिगत रखते हुए सत्ता हस्तांतरण हेतु लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा। इन्होंने एक योजना का प्रारूप तैयार किया, जिसमें हिंदुस्तान एवं पाकिस्तान का दो राष्ट्रों में विभाजन तथा सत्ता हस्तांतरण का विवरण दिया गया। इस प्रारूप को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इसको भारत के लिए कांग्रेस द्वारा तथा पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1947 का 20 धाराओं से युक्त भारत शासन अधिनियम अस्तित्व में आया। इसी के आधार पर लंबे संघर्ष प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसमें भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान देने वाले किसानों, व्यापारियों, शिक्षकों, समाज सुधारकों तथा जन सामान्य का योगदान भी अतुलनीय रहा। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया योगदान, आजाद हिंद फौज की स्थापना करके सैन्य बल की सहायता से स्वतंत्रता प्राप्त करने का संकल्प करने वाले सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा देकर देश को एकजुट करने का कार्य किया, क्रांतिकारी भावनाओं से ओतप्रोत शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिन्होंने असेंबली में बम फेंककर अंग्रेजों तक अपनी आवाज पहुंचाई और छोटी सी उम्र में फांसी को गले लगाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिखरी हुई देशी रियासतों को एकीकृत करके भारत के एकीकृत रूप को सुदृढ़ता प्रदान की, क्रांतिकारी सेनानियों मंगल पांडे, खुदीराम बोस, रामप्रसाद बिस्मिल ने भी स्वतंत्रता की अलख को बढ़ाने में अपना योगदान दिया, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, उषा मेहता, कनकलता बरुआ, एनी बेसेंट, लक्ष्मी सहगल, भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू और सुचेता कृपलानी ने भी महिला स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में अपना योगदान दिया। लंबे स्वतंत्रता संघर्ष, आपसी कटुताएं, फूट डालो राज करो तथा कुछ भारतीयों द्वारा अंग्रेज शासन का समर्थन और सहयोग की प्रवृत्ति ने गुलामी के लंबे समय को अभिशाप के रूप में अनुभव किया। जन सहयोग, जन इच्छा और जन आंदोलन के तूफान तथा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों के चमत्कारिक नेतृत्व से भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। आज आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा, तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के उच्चतम शिखर को प्राप्त कर एक शक्तिशाली के राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित किए हुए है। यही भारत की स्वतंत्रता का भी लक्ष्य है। धन्यवाद।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले।

0: सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
2: कार्यक्रम चल रहा है महिला जगत और सखियों, अभी आपने सुनी वार्ता जिसका विषय था भारत की स्वतंत्रता यात्रा और हमारी वार्ताकार थी प्रोफेसर गिरिजा जोशी। और सखियों अब बात तीज की। आज हमारी सभी सखियां तीज की तैयारी कर रही हैं, खूब मजे से सेलिब्रेट भी कर रही हैं। सखियों सावन का महीना आते ही प्रकृति हरियाली की चादर ओढ़ लेती है, चारों ओर झूले, लोकगीत, मेहंदी और खुशियां आप देख ही रही हैं। सावन की इस ऋतु में हम सब मना रहे हैं हरियाली तीज। सखियों तीज का पर्व विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र प्रेम और समर्पण से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी इसी तपस्या और अटूट आस्था के फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। आज अब सभी सखियों ने लहरिया पहना है, मेहंदी रचाई है और अब झूला झूलते हुए आकाशवाणी का अपना फेवरेट प्रोग्राम महिला जगत सुन रही हैं। सखियों ये तीज केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं है, बल्कि है प्रेम, विश्वास, सौंदर्य, प्रकृति और पारिवारिक रिश्तों की मिठास का उत्सव भी है। यह पर्व हमें हमारी समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं से जोड़ता है। इस सावन तीज पर हम अपनी परंपराओं को सहेजने और प्रकृति से प्रेम का संदेश लेकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और घेवर के स्वाद का आनंद भी ले रहे हैं। तो हम सभी हरियाली छाए, खुशियां मुस्कुराए और जीवन को प्रेम से भर जाए, इस मंत्र को अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे और झूला झूलेंगे।

0: सक्यूं, आज स्वतंत्रता दिवस पर उम्मीद है आपको कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा और इसके साथ साथ आपने आज ये संकल्प भी लिया होगा कि आप भी किसी भी तरह से आपकी जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी हालात हैं, उसके अनुसार अपने देश की सेवा करेंगी जिससे कि हमारे देश ऊंचाइयों को छू सके। तो महिला
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
6: The headlines. Nation celebrates its 80th Independence Day today with enthusiasm. Prime Minister Narendra Modi leads the nation by hoisting the national flag at Red Fort in Delhi. Vande Mataram rendered for the first time at Red Fort. In his address, Prime Minister announces free online coaching for poor and middle-class families and training in AI skills to 1 crore youths in next 1 year. Prime Minister says India is emerging as a trusted global partner in critical minerals, with agreements being signed with several countries. Mr. Modi expresses dismay over some nations trying to weaponize resources to flaunt their dominance, crediting India's spirit of Atmanirbharta in meeting the challenge. Indian missions abroad celebrate Independence Day with patriotic fervor. At least 20 people killed in Indonesia after a 7.7 magnitude earthquake hits its eastern coast. And in cricket, India were 101 for 1 at lunch against host Sri Lanka in first test of the 2-match series at Gaul. And now the news in detail. The nation is celebrating its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi led the Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. A report.
7: After the arrival of Prime Minister Narendra Modi, a combined inter-services and Delhi Police Guard presented general salute to him. Thereafter, the Prime Minister inspected the Guard of Honour. The hoisting of the national flag was synchronized with the 21-gun salute. For

0: The first time national song Vande Mataram was rendered during the Independence Day celebrations at the Red Fort. After the flag hoisting, flower petals were showered at the venue by two Mi-17 helicopters of the Indian Air Force, cadets of Army, Navy and Air Force, and My Bharat volunteers participated in the celebrations. Around 5,000 special guests from different walks of life witnessed the celebrations at Red Fort today. These include artisans under PM Vishwakarma scheme, women entrepreneurs under PM Mudra Yojana, street vendors under PM Swanidhi, taxi drivers of Bharat Taxi, urban sanitation workers under Swachh Bharat Mission, and youth innovators under National Innovation Programs. With Anand and Dipendra, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
1: Addressing the nation from the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Modi described the chanting of Vande Mataram at the Red Fort as a historic moment. He noted that the nation is moving forward with great zeal and new resolutions.
2: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है? पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
1: Prime Minister Modi said that over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. Highlighting the achievements made in different sectors, the Prime Minister said, over the past 12 years, defence production has increased nearly fourfold, khadi and village industries production grew by nearly fivefold, electronic manufacturing nearly sevenfold, modern railway coach manufacturing 21-fold, and mobile phone manufacturing increased by 33-fold. He said internet users increased by nearly fourfold and digital transactions 100 times.
2: हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया। हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया। हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए।
1: Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle-class families for various public examinations. He said this is a revolutionary step towards making quality education accessible to everyone, led by top teachers. He said this will save thousands of crore rupees of middle-class families in coaching classes.
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: The Prime Minister said, government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things, cost, quality and skill.
2: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है।
1: The Prime Minister highlighted the government's focus on critical minerals, saying the modern technology depends entirely on critical minerals and India is actively working to secure its position in this sector. He said India has launched the National Critical Minerals Mission and announced the Critical Mineral Corridor. Mr. Modi added that agreements are being signed with several countries and nations around the world are increasingly placing their trust in India. Prime Minister Modi said that India has successfully overcome several unprecedented crises while progressing towards the goal of a developed nation by 2047. He recalled the challenges posed by the COVID-19 pandemic and subsequent conflicts in Ukraine and West Asia. The Prime Minister said every nation around

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। कई देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारत आत्मनिर्भरता की भावना से इस चुनौती का सामना कर रहा है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 106 रन बनाए। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है।

0: आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
0: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
0: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है।
0: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिने जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार देश केवल संसाधन की कमी के कारण नहीं बल्कि सीमित सोच के कारण भी पिछड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत को कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ा है और ये भी सीमित सोच का परिणाम था। श्री मोदी ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है।
0: हमने समुद्र तट पे समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 7-8 वर्ष में लगभग 8 सेमीकंडक्टर संयंत्र काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3 संयंत्रों में सेमीकंडक्टर का निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है।
0: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
1: स्वाधीनता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले, भारत टैक्सी के चालक, स्वच्छ भारत मिशन के सफाई कर्मचारी और राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम से जुड़े युवा शामिल थे। लाल किले पर आयोजित समारोह का समापन

0: आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने राष्ट्रध्वज फहराया और हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा यह दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता से राष्ट्र के विकास में योगदान देने और राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियों से दूर रहने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में मातृभूमि के प्रति गहरे श्रद्धा के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है।
2: कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित बंगाल विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकता है। रेड रोड परेड में राज्य सरकार की कई झांकियां प्रदर्शित की गयी जिनमें पीएम सूर्य घर योजना और विकसित भारत जी राम जी योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को दिखाया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने बैरकपुर के गांधी घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कोलकाता से आकाशवाणी समाचार के लिए कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ मैं कुमार राधारमण।
1: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य समारोह श्रीनगर के प्रसिद्ध बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया।
3: स्वतंत्रता दिवस के हवाले से सबसे बड़ा समारोह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हुआ, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आजकल के हालात अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि आजादी के 80 साल बाद जम्मू कश्मीर का भारत का हिस्सा बनने का फैसला सही साबित हुआ है। इधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी श्रीनगर के लोक भवन में तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी। इस बीच जम्मू कश्मीर के सभी जिला मुख्यालयों में भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: छत्तीसगढ़ में 80वां स्वाधीनता दिवस उत्साह, उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली।
4: रायपुर में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। जो क्षेत्र कभी हिंसा और भय से प्रभावित थे, वहाँ आज शांति, विश्वास और विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर की सर्वांगीण प्रगति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। कभी माओवाद से प्रभावित रहे और अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुके राज्य के बस्तर संभाग के करीब 90 गांव ऐसे हैं जहाँ आजादी के बाद आज पहली बार स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: केरलम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रध्वज फहराया। इसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की।
5: तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने परेड की सलामी ली। विभिन्न सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के साथ माउंटेड पुलिस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स तथा स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस संदेश देने के बाद पुलिस, अग्निशमन और बचाव सेवा तथा कारागार विभाग के कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किए। कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान समारोह में वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान नौसेना के जहाजों को झंडों से सजाया गया। इडुक्की में बांधों और नौका केंद्रों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए, जिनमें पर्यटकों ने भी भाग लिया। कोवलम बीच के निकट

0: एक निर्जन द्वीप पर तटरक्षक बल ने भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया। स्मिथी एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: वैश्विक नेताओं ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों का उल्लेख किया है। इसराइल के राजदूत रूवेन अजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिना, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशनी कोलोन, नेपाल दूतावास, फ्रांस दूतावास, ऑस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायुक्त ने भी भारत की विरासत, विविधता, आर्थिक क्षमता और बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देते हुए शुभकामनाएं दी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वाले और मालदीव नेशनल पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने भारत के विकास और मालदीव के साथ घनिष्ठ साझेदारी की प्रशंसा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 118 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 118 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: भाई, मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
3: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ।
4: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
5: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
6: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
7: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
6: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
7: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
6: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।

गंगा की सौगंध फिल्म का ये गीत था अनजान का, लिखा कल्याण जी, आनंद जी की तर्ज थी, आरती मुखर्जी और मोहम्मद रफी की आवाजें थीं।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
4: पर कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जय से हुजूर।
5: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
6: पगड़ी संभालो

0: तेरा लुट गया माल है, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल पगड़ी।
1: गीत और संगीत था प्रेम धवन का, मोहम्मद रफी की आवाज में शहीद फिल्म का गीत आपने सुना।

दीदी फिल्म का ये दो गाना आपने सुना, आशा भोसले मोहम्मद रफी का गाया, साहिल जाह्नवी के बोलों को सुरों में ढाला एन दत्ता ने। फिल्म सीमा का ये गीत है मन्ना डे की आवाज में, शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन की तर्ज।

0: मोहब्बत जिंदगी है, सुन का गीत आपने सुना, महेंद्र कपूर आशा भोसले का गाया, सच बिहारी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था। श्रोताओं, यही थी आज के कार्यक्रम सदाबहार नगमे की आखिरी पेशकश।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी, यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे

आप हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग। विविध भारती से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम मनचाहे गीत।

आ चुका है आपके रेडियो सेट पर विविध भारती का कार्यक्रम मन चाहे गीत। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हवाओं में खास रवानी है, आज दिलों में खुशियों का रंग है और आपके भेजे पत्रों में भी मन चाहे गीत का कुछ ऐसा ही इंद्रधनुषी रंग नजर आ रहा है। ये गीत आपकी पसंद के यकीन मानिए श्रोताओं, रंग भरते हैं हमारे मन चाहे गीत कार्यक्रम में। तो देखते हैं आज हमारे किन श्रोताओं की पसंद मन चाहे गीत कार्यक्रम में झलकती है। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

0: हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का ये दो गाना था।
1: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत

0: होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

शंकर जय किशन की बनाई तर्ज पर इसे गाया लता मंगेशकर ने। आप सुन रहे थे झुक गया आसमान, फिल्म का गीत शैलेंद्र का, लिखा श्रीनगर से सहारनपुर से ये पत्र है श्रोताओं। उत्तर प्रदेश से सुरेश नारंग, आशु नारंग, प्रतीक और सोनाली ने ये पत्र भेजा है। और धमनी मनोरा से हमारे श्रोता हैं तुलसीराम, संदेश, किरण, मायावती, आदेश और प्रज्वल डेरे की फरमाइश है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने पत्र लिखा है। वरोरा चंद्रपुर से हमारे श्रोता हैं लवकुश खाडिलकर, उमा देवी खाडिलकर, रोहित और प्रणीत खाडिलकर और चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश, शुभम और सावित्री की ये फरमाइश आई है धमतरी छत्तीसगढ़ से। और शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा ने इस गीत को सुनना चाह रहा। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं श्रोताओं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

प्रेम धवन की रचना आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में। फिल्म काबुलीवाला के इस गीत को सुनना चाहा था बुलंदशहर से मोहम्मद सईद, निखत परवीन, शहनवाज फुद्दीन और आफान अब्बासी की फरमाइश थी। बर्गीनगर जबलपुर से रविंद्र, सुभाष, दिगंबर राजेश और शुभांग की फरमाइश ये है। श्यामनगर दुर्ग से प्रदीप खांडेलवाल और नीता खांडेलवाल इस गीत को सुनना चाहते थे। सुलेमान भाई, खलील इकबाल और महबूब ये हमारे श्रोता हैं चल्लाला कठियावाड़ के, और इसी गीत को सुनना चाहा गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसवीर कौर ने, ये हमारे श्रोता हैं तंगोरी, अच्छा ये जगह का नाम है तंगोरी मोहाली पंजाब से हमारे ये श्रोता हैं गुरप्रीत सिंह और जसवीर कौर। और ये एक और इस गीत की फरमाइश है कटोल जिला नागपुर से सुरेश मलमकर और श्रीमती रजनी मलमकर की फरमाइश।

ये गीत आप सुन रहे थे सत्यम शिवम सुंदरम। इस फिल्म से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, मुकेश की आवाज थी, संबलपुर कांकेर से फागुन राम और ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और ईशिका यादव ने इस गीत को सुनना चाहा था। अलीवाड़ा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से देवीराम इनवाती और दामिनी इनवाती की फरमाइश आप सुन रहे थे। जमशेदपुर से चिन्मयी महतो, रेखा महतो ने इस गीत को सुनना चाहा और ये हमारे श्रोता हैं लोहारा बालोद के अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तमूरिया, राधिका प्रभा देवी और ये हमारे श्रोता हैं हिच्छा महासमुंद से, अदालत दास मानसी, शांति ऋचा गायत्री।

खानदान फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर का गाया, नक्शलालपुरी के बोल थे, खयाम का संगीत था, जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू, साजन के मास्टर शिवांशु, अभिषेक नायडू की फरमाइश आई, इस्लामपुर जिला बुलढाणा से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर ने इस गीत के लिए पत्र लिखा। लोहेड़ी महोबा के हमारे श्रोता हैं उत्तर प्रदेश से, जयपाल यादव, इंद्रपाल, अरविंद, राघवेंद्र, रिया, रेणु, देव्यांशी, रोनिका और रागिनी यादव ने इस गीत को सुनना चाहा। शीतला नगर दुर्ग के हमारे श्रोता हैं शिवचंद्राकर भगवान और पार्वती राधा चंद्राकर भी यहीं से, और इस गीत के लिए एक और पत्र भेजा अवधेश गुप्ता, भोलू नीलू, शालराज और वंशराज ने। ये हमारे श्रोता हैं गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से।

0: चिराग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी का गाया, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। रिधौरा से बाबूलाल बुराखड़े, गोकुला बुराखड़े, मंगेश की फरमाइश थी। अकोले महाराष्ट्र से श्याम संतानी, आशा नैन्सी, सुमित की फरमाइश थी। लचनपुर छत्तीसगढ़।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 015-82-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
4: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
5: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
4: हाँ।
5: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
4: हाँ।
5: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
4: हाँ? पता नहीं।
5: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
6: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
7: ये सर्दी तो लगता है फिर से पलट गई है। इतनी ठंड तो दिसंबर में भी नहीं थी।
8: कल रात से रुक रुक कर पानी बरस रहा है, बाहर निकलने की तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। मिस्टर निगम, आप एक कॉफी और लेना पसंद करेंगे?
7: क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। लेकिन सुनिए, बस दूध की कंजूसी मत कीजिएगा। आई लाइक कॉफी विद लॉट ऑफ मिल्क, कॉफी और ले।
8: मतलब
7: कॉफी विद मिल्क। आई सेड इट इन फ्रेंच।
8: ओह, फ्रेंच। अच्छा, एक बात बताइए, ये फ्रेंच पढ़ना छोड़ क्यों दिया आपने?
7: जब मेरी जगह उस थुल थुल बनर्जी को फ्रांस भेजा गया,

0: फ्रेंच पढ़ना तो छोड़ना ही था।
1: ये लीजिए गर्मा गर्म अपनी कॉफी और ले।
0: थैंक यू वेरी मच। लगता है कि मौसम इस बात से बहुत नाराज है कि आखिर हम इस ठंड को चुपचाप सहने की बजाय कॉफी के प्याले को हथियार बनाने पर क्यों तुले।
1: निगम साहब, प्रकृति ने जब चाहा बेरहमी से कुचला ही है हमें।
0: नो मिस्टर शेखर, हियर यू आर रॉन्ग। कितनी बेरहमी आदमी ने प्रकृति पर दिखाई है वो क्या कम है। जस्ट फॉर सम बक्स वी हैव वर्चुअली रेप्ड द एनवायरनमेंट। पहाड़ों पर पूरे के पूरे जंगल काट डाले, पूरे के पूरे जंगल। बरसात का पानी है कि रुकता ही नहीं। बाढ़ आने का एक बड़ा कारण है ये, और उधर जंगलों में पूरा का पूरा मैदान साफ कर दिया। तुम्हें याद है ना वो क्या नाम था उसका, वो सिन्हा के लड़के प्रदीप का केस।
1: हाँ, वो फॉरेस्ट ऑफिसर
0: जी, वो इस सब के खिलाफ था, रोकना चाहता था ये सब। मगर जब एक बार उसने अवैध लट्ठों से भरे हुए ट्रक को पकड़ा तो जानते हो क्या हुआ? न जाने लट्ठों को बांधने वाली रस्सी कैसे खुल गई और लट्ठे भारी आवाज के साथ उसे रौंदते हुए आगे तक फिसलते चले गए। इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, यू नो, ही वॉज किल्ड।
1: पुअर चैप। निगम, ये जो डेजर्ट है ना अफ्रीका का, सहारा, इसके बारे में भी कहते हैं कि यहां पर पहले मीठे पानी का सोता था, हरा भरा जंगल था।
0: ये सब बातें सुनकर के तो ऐसा लगता है शेखर, मानो हम सब मेज कुर्सी पर नहीं, हड्डियों को छील कर बनाए गए ढांचे पर बैठे हो।
1: एक बात कहूं, प्रदीप की बीबी सोनाली के साथ बहुत बहुत बुरा व्यवहार किया सिन्हा ने।
0: अरे भाई, सास ससुर थे नवे, और प्रदीप का मरना तो मानो सोनाली की मर्जी से हुआ।
1: अब तो सोनाली ने शादी कर ली।
0: उसका हस्बैंड एक्सपोर्टर है, अच्छा काम है उसका दिल्ली में, और भाई वो भी बहुत खुश है। लेकिन एक बात बताऊं शेखर, वो प्रदीप को भूल नहीं पाई।
1: प्रदीप ऐसा था ही नहीं जिसे भूला जा सके। अरे कौन है बाहर?
2: ए, कौन है वहां? अरे कौन है बरामदे गए? मैंने पूछा कौन है भाई, बोलता क्यों नहीं है?
3: अरे हाँ, मैं बाबूजी, बरसात से बचे के खातिर।
2: अरे हद होती है, बरसात से बचना है तो कहीं और जाओ भाई, और साथ में कौन है तुम्हारे?
3: चलो हजूर, हमारे घर के ही बच्चे हैं।
2: अरे भाग जाओ तुम लोग, चलो भागो यहाँ से।
3: हजूर तेरी बरसात खत्म हो।
2: मैं कहता हूँ अभी बाहर जाओ, इडियट्स, निकलो बाहर।
0: अरे अरे भाई शेखर, जरा बरसात तक।
1: अरे नहीं यार, तुम समझते नहीं हो, बरामदे में तमाम तरह के गुलाब लगा रखे हैं मैंने, एक नहीं बचेगा, सब तोड़ ले जाएंगे ये लोग। अरे देखो तो, इनकी हिम्मत तो देखो, गेट खोलकर अंदर आ गए।
0: अरे भाई दरअसल ठंड इतनी ज्यादा है बाहर की।
1: करते हो निगम, तुम भी ठंड है तो कहीं और जाए।
2: अरे सुना नहीं तुम लोगों ने, कुत्ता है घर में, छोड़ू क्या?
3: जाते हैं बाबूजी, जाते हैं, चलो कहीं और।
1: बताओ भला, हाँ, गेट खोलकर अंदर घुस आए थे? कम से कम आठ तो बच्चे होंगे साथ में, वो क्या पता बच्चे चुराने वाला ही हो।

0: अब इन चक्करों में आग ही बुझने लगी है, एक दो लकड़ियां और डालनी पड़ेंगी।
1: निगम,
0: ये क्या बजाने लगे तुम?
2: क्यों, उस खांसने वाले आदमी की तरह ये भी तुम्हें नापसंद है क्या?
1: अरे नहीं नहीं, क्या बात करते हो, वाकई ये तो बड़ा खूबसूरत म्यूजिक है।
2: शेखर, मैं जब मध्य प्रदेश में था तो वहाँ के आदिवासियों का लोक संगीत टेप किया था मैंने।
1: हाँ हाँ, वो एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के
2: डॉक्टर मूले।
1: ओह यस।

0: भाई गाना बजाना इन आदिवासियों के जीवन का सबसे चटक और पक्का रंग है।
1: निगम, इन लोगों को देखकर हमेशा हमेशा मुझे ऐसा लगा मानो आज भी इस देश का एक टुकड़ा आदिम युग में जी रहा हो।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं शेखर, ऐसा नहीं है। हर जगह एक वर्ग जरूर अपनी सोच और मानसिकता की वजह से आदिम युग में ही है। अब सोनाली के सास ससुर सिन्हा को क्या कहोगे तुम? बोलो, विल यू कॉल देम मॉडर्न?
1: नो, कम से कम मैं तो नहीं कहूंगा।
0: अरे ये क्या हुआ?
1: लगता है इस तूफान की वजह से कोई पेड़ गिरा है।
0: हाँ, ऐसा तो नहीं कि कोई ट्रक या बस खड्डे में गिर गई हो?
1: वैसे आवाज तो बहुत भीषण थी, अब इतनी बारिश और तूफान में जाकर देखना भी असंभव है। अब छोड़ो यार, सुबह पता चल जाएगा।
0: मामला तो कुछ सीरियस लगता है यार।
1: वो कोयला खदान में तो कुछ गड़बड़ नहीं हो गई?
0: नहीं नहीं, फॉर गॉड सेक, ऐसा नहीं हो तो अच्छा है। अरे भाई इंजीनियर मैं हूं, मुझे ही धरा जाएगा।
1: शोर तो बढ़ता ही जा रहा है।
0: वैसे खदान में अगर कुछ होता तो
2: शाम, शाम, शाम,
0: मर गए।
2: शाम, क्या बात है बहादुर? शाम,
0: हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ बहादुर? क्या क्या हुआ, क्या बहादुर? अरे भाई बहादुर, इतने घबराए हुए क्यों हो? कुछ बोलो भी।
2: शाम, शाम, शाम, वो
0: क्या वहाँ वहाँ कहाँ? अरे भाई रो क्यों रहे हो, हुआ क्या? अरे कुछ बोलोगे भी?
2: शाम, शाम, वहाँ
0: कहाँ बहादुर?
2: अरे शाम, वहाँ कोयला खान, कोयला खान में शाम।
0: कोयला खान में क्या हुआ? कोयला खान में
2: शाम, कोयला खान, कोयला खान में हाँ। अंदर की दीवार से पानी आ गया साहब।
0: पानी आ गया?
2: मजदूर लोग वहां अंदर फंस गया है साहब।
0: कितने होंगे
2: साहब? बहुत साहब, मर गया होगा साहब।
0: अरे मरेंगे तो अब हम
2: क्या बोले साहब?
0: नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा सुनो, तुम चलो मैं भी आता हूँ।
2: चलो जल्दी आओ साहब,
0: चलो वहां लोगों से कहो मैं भी फौरन ही पहुंच रहा हूँ।
2: जल्दी आना साहब, जल्दी आना साहब।
0: गॉड, जो सोचा था वही हुआ।
1: मेरे ख्याल से बरसात की वजह से कोई खान ढह गई है।
0: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है, हो सकता है अंडरग्राउंड वाटर किसी दीवार को फाड़ कर खान में घुस आया हो। मेरे ख्याल से तो हम शायद ही अब बचा पाए किसी को। रेनकोट भी नहीं है यहाँ पर।
1: ये लो छाता, मैं भी साथ आऊं?
0: नहीं नहीं, रहने दो, मैं चलता हूं। लेकिन इस आधी तूफान में बाहर निकलना, जिसका डर था वही। हजार बार मना किया था कि इस खान में काम बंद कर दो, बंद कर दो, पानी भरने का खतरा है। लेकिन जब तक कोई मरे नहीं, किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। और अब सब मुझे ही नोच डालेंगे। खैर, जाना तो पड़ेगा ही। अरे साहब आ गए।
3: अरे मनोहर, अरे भाई मनोहर, कैसे हुआ ये सब?
4: अरे क्या बताएं साहब।

0: अन्न बरसी में पानी भर गया है, बगल की दीवार ढह गई, वहीं से जमा पानी अंदर आ गया साहब। अच्छा? हम तो पहले ही कहते थे साहब, दीवार से पानी रिश्ता दिख रहा है, खतरा है।
1: अच्छा ये बताओ कुल कितने लोग फंसे?
0: अरे साहब होंगे करीब 35।
1: 35?
0: आप कुछ कीजिए। हाँ साहब कुछ कीजिए, नहीं तो एक नहीं बचेगा अंदर।
1: अच्छा
0: साहब
1: ठीक है मैं देखता हूँ। ये बताओ चीफ साहब को खबर की कि नहीं?
0: हाँ जी साहब, वो शंकर गया है।
2: अरे निगम साहब कहाँ गए आपके सेफ्टी मेजर? धान में पानी भर चुका है, कैसे निकालेंगे उन्हें बाहर?
1: देखिए देखिए देखिए, मैं
2: आपसे कह चुका हूँ कि इस खदान के बगल में पानी भरा है, यहाँ पर काम बंद करवाइए। सुना
1: भाई, देखिए वो मेरी भी कुछ मजबूरी है।
2: हमारा एक भी आदमी मरा तो हम दिखाएंगे आपको कि मजदूर की ताकत क्या है।
1: अरे भाई देखिए देखिए, काम बंद करना है न करना चीफ साहब के ऊपर था।
2: अरे तो आप किस लिए हैं? चीफ कभी नजर आते ही
1: भाई। देखिए देखिए मेरी एक बात
2: सुनिए। देखिए क्या देखे? तो रहे 35 लोग फंसे पड़े, उनको निकालने का कोई साधन किया है आपने?
1: मैं पूरी कोशिश करता हूँ।
3: मनोहर जी साहब, भाई लिफ्ट का क्या हाल है? चालू हालत में है कि नहीं?
0: साहब लिफ्ट है तो चालू हालत में, मगर मुसीबत यह है कि मस्जिद काफी अंदर फंसे हैं साहब, और आगे की सुरंग काफी नीची है, वहाँ पानी छत तक भर गया है। ऐसे में साहब लिफ्ट तक उन लोगों को कैसे लाएंगे?
3: क्या पानी अभी भी अंदर आ रहा है?
0: जी इस तरफ का पानी तो खान में उतर चुका है, पर लगातार बरसात से अगर मिट्टी पोली पड़ गई तो बगल के ताल का पानी भी अंदर आने लगेगा। साहब तब किसी को भी बचा पाना बहुत मुश्किल होगा।
3: क्या करूँ? अच्छा सुनो, कितनी गहराई पर होंगे ये लोग?
0: होंगे यही करीब करीब 450 फीट पर। ये शंकर आ गया साहब।
4: नमस्ते सर।
3: नमस्ते शंकर, वो तुमने चीफ साहब से बात की कि नहीं?
4: जी चीफ साहब ने कहा है कि आप उनसे बात कर लें।
3: मैं बात कर लूं?
4: जी।
3: अच्छा ठीक है, वो आने के लिए कुछ नहीं कहा उन्होंने? मतलब आ रहे हैं या नहीं?
4: जी नहीं, अभी तो घर ही पर है।
3: अच्छा मनोहर, मनोहर तुम जाओ और 4 जनरेटर और पानी निकलवाने के लिए पंप और पाइप गोदाम से निकलवाओ जल्दी। और सुनो शंकर, तुम भी मनोहर के साथ जाओ, मैं चीफ साहब से फोन पर बात करता हूँ।
2: शायद ऊपर तक जानी चाहिए।
3: कमाल है, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और चीफ यहाँ तुरंत आने की बजाय कह रहे हैं बात करो। पता नहीं बात क्या करनी है।
1: लीजिए साहब, चीफ साहब से बात कीजिए।
5: हेलो हेलो सर, सर मैं निगम, मैं यहाँ पर सर खदान नंबर 3 में 3 से बोल रहा हूँ। सर खदान में पानी भर गया है, करीब 35 लोग अंदर फंस गए हैं।
6: कब हुआ ये
5: सर? करीब आधा घंटा पहले।
3: सर यहाँ पर लोग बुरी तरह से एजिटेटेड हैं, मुझे तो लगता है कि ऑफिशियल्स का घेराव करने वाले हैं।
6: अंदर फंसे सब जिंदा हैं या मर मर गए?
3: मर गए सर? मतलब
6: निगम मरने से बेकार का पकड़ा खड़ा होगा।
3: सर वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन आप यहाँ सर तुरंत पहुँच जाइए प्लीज।
6: निगम डोंट टेल मी व्हाट टू डू, आई डोंट थिंक आई नीड एडवाइस फ्रॉम यू।
3: आई एम सॉरी सर, वेरी सॉरी सर, पर सर मेरा मतलब था इतनी बड़ी दुर्घटना सर, अगर अगर आप होते सर तो
6: निगम ये सब हुआ ही करता है, कोई नई बात नहीं है। उनको निकालने का कोई इंतजाम वगैरह करो, बस कोई मरे नहीं। यू गॉट दैट? आई वोंट बियर एनी कैजुअल्टी निगम।
3: बट सर सर सर, हेलो हेलो हेलो हेलो, लो फोन भी रख दिया। आई वोंट बियर एनी कैजुअल्टी, नॉनसेंस, जैसे जैसे मरना जीना भी मेरे हाथ में है। गॉड, इन लोगों के परिवार वाले भी पहुंच गए लगते हैं। अब तो लगता है पुलिस बुलवानी ही पड़ेगी।
5: सर चीफ साहब आ रहे हैं ना?
3: आने की सोच रहे हैं अभी। सर जनरेटर वगैरह मिला?
7: सर सर वहाँ गोदाम में ताला पड़ा है।
3: What?
7: जी चौकीदार के पास चाबी है, 2 लोगों को भेजा है चौकीदार को बुलाने।
3: ओ, अब ये चौकीदार कहाँ गायब हो गया इस समय?
7: अरे सर बरसात की वजह से शायद अपने क्वार्टर में हो। मनोहर भी गया है उसे लेने।
3: देखो देखो यहाँ तो भीड़ बहुत बढ़ने लगी है, अब तो मुझे लग रहा है कि इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा।
7: सर सर मैंने मैंने पुलिस हेडक्वार्टर को फोन कर दिया है, पुलिस आती ही होगी।
3: पुलिस?
7: जी।
3: अच्छा ठीक है, अच्छा चलो हम लोग चलते हैं।
7: हाँ चलिए।
8: अरे अरे बचा लो मेरे बच्चे को, कोई बचा लो रे, कोई निकालो उसे, मेरे बच्चे को कोई निकालो, मेरे बच्चे को कोई निकालो रे।

0: देखिए आप लोग जरा शांत रहिए भाई, आप लोग शांत रहिए, देखिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं।
1: हंगामा शुरू हो गया आखिर, और ये चौकीदार भी चाबी लेकर पता नहीं कहाँ मर गया है। आने दो, सस्पेंड कर दूंगा बदमाश को। अब तक तो काम शुरू भी हो गया होता। इधर ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है।
2: वो देखिए साहब, मनोहर वगैरह आ गए।
1: अरे भाई मनोहर, वो क्या हुआ, चाबी अभी मिली?
3: अरे साहब, वो चौकीदारी का पता नहीं चल पा रहा है, उसके दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ है, शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ रुके हैं साहब।
1: माय गॉड, लेकिन भाई जनरेटर वगैरह तो निकालना ही पड़ेगा ना। मनोहर तुम ऐसा करो, जा करके गोदाम का ताला तोड़ दो।
3: ताला तोड़ दे?
1: हाँ हाँ भाई, तोड़ दो उसे।
3: अरे मगर साहब, गोदाम की बाकी माल की गारंटी? साहब अगर आप साथ चले तो ठीक रहेगा। देखिए साहब, हम तो मामूली कर्मचारी हैं साहब। आप
1: भाई, अब मैं यहाँ देखूँ या वहाँ चलूँ?
3: साहब चले चलिए।
1: अच्छा ठीक है, हाँ चलो, चलता हूँ मैं।
4: इन लोगों को तो शोर शराबे के अलावा और कोई काम ही नहीं है।
1: सुनो
4: जी,
1: हथौड़ा वगैरह तो है ना पास में?
5: हाँ साहब है।
4: साहब, ये जो आदमी आपसे बहस कर रहा था ना, लक्ष्मण है, एक नंबर का बदमाश है। दो तीन बार तो साहब इसे कोयला चुराते मैंने खुद पकड़ा।
1: हाँ साहब। अच्छा, तो मुझे बताया क्यों नहीं?
4: अरे क्या बताएं साहब, रोने गिड़गिड़ाने लगता है, और फिर इसके साथ साथ बच्चे, और इसकी जोरू बहुत भली है साहब।
1: क्या, सात बच्चे?
4: जी सात बच्चे। वो जो जूट मिले ना साहब, भवानीपुर वाली, वहीं पहले वॉचमैन था, वहीं से निकाला गया है। चुराया होगा कुछ वहां भी। लो शंकर, चलो ऊपर से हथौड़ा निकालो तो भाई।
5: अच्छा
4: आइए साहब। अरे ये तो काफी मोटा ताला है। कमबख्त ये पाजी चपरासी, इसी वक्त गायब होना था इसे। शंकर यार लगाओ तो चोट फिर।
5: हाँ। लीजिए साहब, टूट गया।
1: अच्छा चलो जल्दी से फाटक तो खोलो।
5: हाँ सर। अरे यहां तो बत्ती भी नहीं आ रही, यहां तो कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा।
4: हाँ कुछ।
5: अरे मनोहर, हाँ टॉर्च है तुम्हारे पास?
4: टॉर्च मेरे पास तो नहीं है, देखिए शायद इस अलमारी में।
5: हाँ ढूंढो।
4: मिल गई
5: टॉर्च मिल गई।
4: अच्छा साहब, टॉर्च मिल गई।
1: देखो वो रहा जनरेटर। शंकर तुम पाइप उठाओ
5: जी। अच्छा।
1: अगर दो चार लोग और होते तो सहूलियत रहती। शंकर
5: जी,
1: अभी देखो अगर दो तीन लोग और अगर मिल जाए तो जरा सा बुलाओ दो उन्हें।
5: जी अच्छा, जी अच्छा। अरे ओ बाबू
1: हर्षो, जरा जनरेटर और मोटर बाहर निकलवाने में हमारी मदद तो कर दो।
5: आप रहने दें, हम निकाल लेंगे।
1: नहीं नहीं कोई बात नहीं। बाबू तुम पाइप ले चलो।
5: हाँ
1: लगाओ तो। ये तो घूमता ही नहीं है। शंकर, अरे भाई देखो ये पहिए के नीचे पत्थर तो हटाओ। मैं भी कहूँ कि जनरेटर आगे खिसक क्यों नहीं रहा। हाँ लगाओ जोर, चलो शाबाश। अरे अब ये नारे क्यों लगने लगे
5: साहब? लगता है चीफ साहब आ गए।
1: अरे साहब, लोग तो बेकाबू होते जा रहे हैं। अगर कोई मर गया तब तो लोग मरने माने पुतारू हो जाएंगे।
5: अरे मनोहर, अरे जल्दी जल्दी पाई बिछाओ।
4: तो रहा
5: चीफ तो आए नहीं लगते।
1: हाँ सर, वो तो नहीं आए।
5: तो क्या सर, चीफ साहब के आने तक इंतजार करें?
1: नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मनोहर और तुम मिलकर पाइप नीचे उतारो।
5: जी अच्छा।
1: शंकर चलो जल्दी खींचो पाइप।
5: जी समझिए।
1: मनोहर जल्दी करो, पाइप नीचे लटकाओ।
5: हाँ।
1: और सुनो, कम से कम चार पाइप का इंतजाम और करना होगा।
3: ठीक है सर, मैं और बाबू जाकर इसका इंतजाम करते हैं।
1: शंकर पाइप नीचे लटकाना शुरू करो।
5: जी ये लीजिए साहब,
1: पाइप छोटा ना पड़ जाए। सुनो कितने कितने फीट नीचे होगा पानी?
5: अरे साहब करीब 400 फुट तो होगा ही।
1: 400 फुट?
5: पाइप 600 फुट लंबा है।
1: अच्छा,
5: छोटा नहीं पड़े साहब। अरे बाबू जल्दी।

0: जल्दी हाथ चलाओ।
1: अरे निगम साहब, जब लोगों की जान चली जाएगी।
2: अरे भाई अब क्यों शोर कर रहे हैं आप लोग? देखिए पानी निकलते ही लिफ्ट चालू कर दी जाएगी।
3: शाबाश बनो, और तेजी से नीचे पहुंचाओ।
4: जी सर, जी सर। सर, लगता है पाइप पहुंच गया नीचे तक।
3: वेरी गुड। चलो और थोड़ी सी मेहनत और करो।
2: अरे अरे अरे अरे भाई, अरे अरे ये पत्थर कौन देख रहा? अरे अरे अरे भाई, पत्थर क्यों चला रहे आप लोग? अरे पागल हो गए क्या? अरे देखिए, बस आधे घंटे की बात है, पानी निकलते ही लिफ्ट चालू कर दी जाएगी।
4: अरे पागल हो गए आप क्या?
3: जाने कौन भड़का रहा है इन्हें।
4: साहब, मुझे लगता है लोग बढ़ते जाएंगे। आइए इधर आइए।
3: वो तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं पुलिस ने हल्का सा भी लाठी चार्ज कर दिया तो ये लोग तो और भड़क जाएंगे। सुनो, तुम लोग पानी निकालते रहो, मैं जाकर के समझाता हूँ।
4: नहीं साहब, नहीं साहब, अरे आप मत जाइए साहब।

0: अरे कितना मना किया था साहब को,
1: भीड़ तो जैसे बेकाबू हो गई थी।
0: डॉक्टर कह रहा था खून बहुत निकल गया है।
1: उनके बेहोश होकर गिरने के बाद भी लोग उन्हें पांव से ठोकर मारते रहे। बच जाएं बस, और क्या चाहिए।
0: हम उन्हें चाहकर भी भीड़ से नहीं निकाल पाए।
2: डॉक्टर क्या कह रहा था?
1: सीरियस बता रहा था, सिर पर गहरी चोट है। अरे डॉक्टर साहब कमरे से बाहर आ रहे हैं।
3: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
4: ये मनोहर और शंकर कौन है?
0: हम हैं डॉक्टर साहब।
4: आप मनोहर हैं?
0: जी हाँ डॉक्टर साहब, और ये हैं शंकर
4: जी। देखिए उन्हें होश आ रहा है, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं।
0: अच्छा, होश आ गया?
4: मगर ध्यान रहे
0: जी,
4: ज्यादा बात मत कीजिएगा।
0: जी जी जी,
4: आइए
0: चलिए जी, आइए आइए।
4: निगम, मिस्टर निगम, देखिए आपसे मिलने कौन आया है।
0: साहब, साहब, नमस्ते साहब।
3: नमस्ते साहब।
0: तबीयत कैसी है साहब?
3: मैं शंकर साहब। शंकर? हाँ साहब।
5: शंकर?
3: हाँ साहब।
5: शंकर
3: जी।
5: मनोहर?
3: हाँ साहब।
5: कौन?
3: यहाँ पर सब ठीक हो गया साहब।
0: हाँ साहब, सब ठीक हो गया।
3: साहब पानी निकाल दिया गया साहब। सब आपकी तारीफ कर रहे हैं साहब। वो जिन्होंने आप पर हाथ उठाया था ना साहब, वो भी शर्मिंदा है
0: जी। बहुत शर्मिंदा है साहब।
3: नहीं साहब, कोई नहीं मरा, सभी को बचा लिया गया।
2: निगम, निगम, ये क्या हो गया है तुम्हें? हाँ निगम, निगम, तुमने तो हद कर दी उन लोगों के लिए अपनी जान।
5: शेखर, तुम समझते नहीं हो। शेखर, शेखर, शेखर, तुम समझते नहीं हो। शेखर, बरामदे में तरह तरह के गुलाब लगा रखे मैंने, एक नहीं बचेगा, सब तोड़ ले जाएंगे ना, सब तोड़ ले जाएंगे।
2: निगम, I am sorry यार।

अभी आप सुन रहे थे नाटक लगन। इसके लेखक थे रोमी सिराज, निर्देशन किया मुद्रा राक्षस ने। आकाशवाणी लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी कोरियोग्राफर जिनके कोरियोग्राफ किए गए गानों ने आपको जमकर थिरकाया है। उनके कई गाने ऐसे हैं जिनको सुनते ही आपके पैर मचल उठते हैं नाचने के लिए। आज के जमाने की महत्वपूर्ण कोरियोग्राफर्स में उनकी गिनती होती है।
2: प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, मत मिलन की लायो, प्रेम रतन।
1: आज बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान। इनसे बातचीत कर रही हैं विधि जैन। ये है इस बातचीत का दूसरा भाग।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने सुना कुछ ऐसी बातों को जो बातें बड़ी खूबसूरत थी। हम सुन रहे थे कैसे नृत्य करते हैं हमारे बड़े बड़े कलाकार और कैसे होती है शूटिंग और उसकी ढेर सारी बातें। जी, हम आज फिर से बात करने वाले हैं अपनी कला के साथ एक फिल्म को बड़े सुंदर से मोड़ तक लाने वाली एक बेहतरीन कोरियोग्राफर शबीना खान जी। स्वागत है आपका एक बार फिर से।
4: थैंक यू। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे याद किया, बुलाया, बिकॉज ये सबके दिलों की धड़कन है तो मेरे दिल की बहुत बड़ी धड़कन है।
3: जी, विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
4: विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
3: जी, तो ये जो सुरीली धड़कन है आज एक बहुत सुरीली देश की बेटी से बात करने वाली है, जिस बेटी ने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारा काम किया और बहुत सुंदर तरीके से पर्दे पर खुद नहीं उतरी, दूसरों से उतरवाया। तो हमारे बीच में शबीना जी आप हैं और आप एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और उसके साथ एक बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। तो इस सब में आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारी एक्ट्रेस के लिए काम किया है, इवन एक्ट्रेस को भी डांस करवाया है, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम हमने पढ़ा था, नाम था अमिताभ बच्चन।
4: बिल्कुल।
3: और उनके साथ कुछ तो बहुत अच्छे डांसर्स हैं जो अच्छा करते हैं, उनके नाम हमने पढ़े थे, पर उन नामों में कुछ नाम ऐसे भी थे जिन्हें डांस करते हुए शायद हम देखते भी हैं तो उतना समझ में भी नहीं आता है। उनसे भी आपने डांस करवाया, सनी देओल हैं, संजय दत्त हैं या और भी बहुत सारे, अनुपम खेर को भी आपने डांस करवाया है। ये बहुत सारे नाम है, इमरान हाशमी को आपने डांस करवाया।

0: बोमन ईरानी,
1: बोमन ईरानी को
0: डैनी
1: आपने
0: डैन
1: जी
0: जोंगपा,
1: जी डैनी को कैसे, मतलब वो तो बड़े
0: हमारी फिल्म थी ऊंचाई सूरज
1: जी,
0: बड़जात्या जी की,
1: बहुत प्यारी फिल्म
0: बहुत
1: है,
0: प्यारी फिल्म
1: बहुत
0: थी।
1: प्यारी फिल्म है जी
0: नेशनल अवार्ड मिला है उनको एज ए
1: जी
0: डायरेक्टर उस
1: जी
0: फिल्म पे,
1: जी
0: एज ए कोरियोग्राफर मेरा नाम भी गया था, जो मुझे नहीं मिला, बट कोई बात नहीं, मुझे रिवॉर्ड मिल गया।
1: नहीं, वो फिल्म ही इतनी खूबसूरत है, और
0: बहुत
1: आपने
0: खूबसूरत फिल्म बनाई थी, जो
1: जी
0: सोच थी उस फिल्म के
1: जी जी
0: पीछे, वो सूरज
1: उसी उस
0: जी,
1: उम्र के लोगों को एक प्रेरणा स्रोत है वो
0: बिल्कुल
1: फिल्म जी
0: बिल्कुल। तो उसमें ये था सवाल कि इनका एक गाना है, ये इतनी उम्र में पहुंच चुके हैं और उस उम्र में ये गाना अपने दोस्त को बर्थडे सेलिब्रेशन में ये गाना कर रहे हैं, जिसका नाम है केटिको सॉन्ग।
1: हाँ हाँ
0: केटिको का मतलब होता है लड़की,
1: अच्छा,
0: हाँ नेपाली भाषा
1: नेपाली
0: में
1: शब्द है
0: लड़की।
1: जी
0: तो फिर वो गाना की और पता चला कि ओ डैनी सर को करना है, डैनी सर को डांस करवाना है, अनुपम
1: जी
0: जी को डांस कर।
1: जी वही
0: अच्छा, अब इनका सबका जो लेन देन था अमिताभ बच्चन के साथ था, जो
1: हाँ
0: इतने ग्रेसफुल डांसर साबित
1: हाँ
0: कर चुके अपने आप को,
1: हाँ
0: बोमन ईरानी, अनुपम खेर, डैनी जी, तीनों कह रहे हम कैसे करेंगे।
1: जी
0: फिर उनको रिहर्सल करवाया। मैं एक चीज और करती हूँ, एक अपने असिस्टेंट्स को वो कैरेक्टर बना देती हूँ, उनको कहती हूँ आपको उनकी तरह जीना है,
1: अच्छा
0: रिहर्सल हॉल में हम ये प्रैक्टिस करते हैं।
1: हाँ
0: मेरा एक असिस्टेंट अमिताभ बच्चन बन गया, एक डैनी बन गया, एक अनुपम खेर बन गया,
1: हाँ
0: एक
1: इम्प्रोवाइजेशन चलता रहता है।
0: इम्प्रोवाइजेशन। अब आप अपने कैरेक्टर के साथ जब हम एक्टर को करके दिखाएंगे, उनको अपना आप दिखना चाहिए उनके अंदर। फिर ये कहानी शुरू हुई और फिर हमने ये गाना किया और बहुत लोगों ने सराहा और शूटिंग के दौरान भी बहुत मजा आया इन
1: हाँ
0: दिग्गज कलाकारों को।
1: हम वो मजा जो है ना वो सुनना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं एक गीत हमारे श्रोताओं के लिए आपकी पसंद का दे दें, और तो इस गीत के बाद हम बताएंगे कि मजा क्या आया।
0: तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी तरफ से एक मेरा फेमस गाना जो मुझे बहुत पसंद है,
1: हाँ
0: अमिताभ बच्चन, डैनी डेंजोंगपा, बोमन ईरानी साहब के साथ,
1: हाँ
0: अनुपम खेर जी,
1: जी
0: केटी को।
1: केटी को, तो ये गाना हम सुनते हैं, लेकिन इसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि मजा क्या आया। हमें
0: बिल्कुल
1: भी उस मजे
0: बताऊंगी,
1: को,
0: हाँ
1: उस
0: बिल्कुल
1: मजे
0: बताऊंगी,
1: वाली जिंदगी को जीना है।
0: बिल्कुल बताऊंगी, हर एक कैरेक्टर के साथ आपको थोड़ा एक उस सफर पे ले
1: जी
0: जाऊंगी।
1: जी चलिए, तो सुनते हैं ये प्यारा गाना केटी को, और केटी को का मतलब होता है लड़की,
0: बिल्कुल,
1: इस उम्र में
0: पहाड़ी
1: भी
0: लड़की
1: बहुत बढ़िया।
0: जी,
1: चलिए सुनते हैं ये
0: हाँ।
1: गाना।

0: गाना तो सुन लिया, बहुत मजा आया, लेकिन इस गाने की जो बात आप हमारे यहाँ कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो उस वचन को पूरा कीजिए और बताइए कि मजा क्या आया था।
1: तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी से शुरू करते हैं। अमित जी के साथ मैंने एज एन असिस्टेंट काम किया हुआ है।
0: हाँ।
1: मुझे गुड्डी बुलाते थे सेट पर।
0: अच्छा,
1: उन्हें लगता था मैं जय बहादुर जैसी थोड़ी लगती हूँ, तो बोलते

0: एक गुड्डी इधर आओ। मेजर साहब फिल्म का एक गाना था
1: जी
0: जो हम मैंने असिस्टेंट में किया था या नहीं, तो जब वो इस सेट पे आए
1: जी
0: तो उन्होंने कहा हम तो काम कर चुके हैं साथ में, तुम बहुत छोटी सी होती थी बड़ी हो गई।
1: गुड्डी बड़ी हो गई।
0: तो मैंने याद दिलाया कि सर मैंने इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफी शुरू की तो आपके साथ भी एक गाना किया है, और रामगोपाल वर्मा का एक गाना था कम्मो कम्मो,
1: हाँ एक गाना सुना हुआ है जी जी
0: अमिताभ
1: जी
0: बच्चन और
1: जी
0: संजय दत्त वगैरह। तो अरे अरे हाँ तुम्हारे साथ तो काम किया है, बताओ बताओ क्या करना है मास्टर जी। अब वो मुझे मास्टर जी बुलाने लगे थे
1: गुड्डी
0: अपने,
1: से मास्टर जी।
0: वो अपनी दो कुर्सी लेकर बैठ जाते थे पैर पे पैर चढ़ाकर। अमिताभ बच्चन जब आपके सामने बैठा हो और आपने उनको करके दिखाना है, आप दिखाओगे मास्टर जी? ऐसे जी सर मैं करके दिखाऊंगी। तो मैं क्या लड़कों का डांस भी कर लेती हूँ, लड़कियों का भी कर लेती हूँ,
1: क्या
0: जब मैं
1: बात है,
0: लड़कों का करती हूँ तो उसी अंदाज में करती हूँ,
1: पूरा लड़का बन
0: पूरा
1: जाती
0: लड़का
1: हूँ।
0: बन जाती हूँ। मैं उनको कर कर दिखाई और वो खड़े हो गए, बोले इस साला, अपने कमर पे हाथ रख दिया और मुझसे कहे हम। तो मैंने कहा मुझे लगा कुछ गलती हो गई, मैं भागती भी गई, सर क्या हुआ, कुछ स्टेप चेंज करना है, कुछ भी आप बताइए जो करना है। मैं नहीं नहीं फिर वो चलकर आए मेरे साथ सेंटर ऑफ द स्टेज और कहने लगे मैं सर प्लीज बताइए क्या किया मैंने, कुछ गया, तुमने इतना बढ़िया किया मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा।
1: जी
0: सोचिए उन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट किया। ये है लेजेंड अमिताभ बच्चन,
1: ये
0: कि
1: बड़प्पन
0: अब
1: है।
0: आप सिखाओ मुझे। और फिर उन्होंने मुझसे सीखा। अब बोले डैनी और अनुपम तुम सब आ जाओ, देखा तुमने? हाँ सर हम तो रिहर्सल कर रहे 3 दिन से। तो ही सेड हाँ मैंने भी कल रात घर पे रिहर्सल किया था, उन्होंने एक दिन रिहर्सल किया था घर पे। सोचो इस उम्र में उन्होंने घर बुला के हमें रिहर्सल किया,
1: जी
0: और सेट पे आके वो एकदम ऐसे हो गए और मेरा एनर्जी बूस्ट कर दी उन्होंने। कि जब अमिताभ बच्चन आपको ये कहता है, क्योंकि वो उनका तरीका है अपने मास्टर्स को डील करने का, उसी
1: नहीं वो
0: दिन
1: परंपरा है
0: हाँ
1: गुरु को गुरु बनाने
0: हाँ
1: की
0: और वो
1: जी।
0: मुझे मास्टर जी कहते थे। तो सेट पे सब ऐसे परेशान, क्योंकि मास्टर जी आजकल कोई नहीं कहता
1: हाँ
0: कोरियोग्राफर्स को, बहुत कम लोग कहते हैं जो जानते हैं कि मास्टर क्यों कहते हैं
1: हाँ
0: मास्टर को। फिर उन्होंने एक अपना व्लॉग लिखते हैं वो, उन्होंने अपने व्लॉग में मेरे बारे में लिखा,
1: अच्छा
0: और उस वक्त लिखा कि एक नन्ही सी बच्ची थी जो मुझे सिखाती थी और आज वो मेरी मास्टर बन गई, और आज वो एक फीमेल जो पूरे सेट को चला रही है, 1000 लोगों के सेट को, और वो मुझे भी ऑर्डर दे रही है। मुझे बहुत पसंद आता है जब ऐसे हमारी हमारी बेटियां यहाँ तक पहुंच जाती है।
1: क्या बात।
0: तब वो मेरे एक असिस्टेंट ने कहा कि सर ने लिखा, और मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो गई, मैं बहुत रो पड़ी, क्योंकि यही अचीवमेंट
1: वो
0: होती है।
1: चीज
0: मैं
1: आपकी
0: ये
1: आंखों में अभी भी दिख रही
0: हाँ
1: है
0: कि
1: जी।
0: मैं बहुत खुश हो गई। ये थे अमिताभ बच्चन, और फिर आते अनुपम खेर जी।
1: हाँ उनका तो जानना है
0: उनका जो कॉमिक टाइमिंग है उसको कोई बीट नहीं कर सकता, वो
1: बिल्कुल
0: इतने कमाल के एक्टर है,
1: जी
0: और उसके वो रुला भी देते हैं वो हंसा भी देते हैं एक ही
1: पल
0: फ्रेम में
1: में। हाँ
0: पल में वो है। अब उनके लिए जो असिस्टेंट करके दिखा रहा था वो उस दिन आया नहीं, और मेरी एक लड़की असिस्टेंट थी एकता, और मैं अपनी लड़कियों को तैयार करती हूँ कि तुम्हें ये करना है, जब मैं कर सकती हूँ तो तुम भी करोगी, और उसने वो कर लिया। वो आई सेट पे, सर मैं अमित जी का करूँ तो उनका कर, और उस लड़की ने जब अनुपम खेर बन के दिखाया पूरा सेट, ताली बजाया, अनुपम जी सिटी बजाने लगे, बहुत खुश हुए, बोले बस कमाल अब मैंने ये करना है, और वो उछल उछल के सेट पे अपने स्टेप करते थे, और पूरा सेट उस गाने में ऐसा होता था कि एक भी जूनियर और एक भी डांसर, जैसे शॉट खत्म होता है ना तो हम लोग बाहर निकल जाते हैं, डांसर निकल जाते हैं
1: जी
0: हाँ सेट में आ
1: जी
0: जाएंगे,
1: जी
0: जूनियर निकल, जूनियर्स बाहर ही नहीं जाते थे,
1: सब वहीं रहते
0: वहीं
1: थे।
0: रहते थे, मतलब कि 500
1: मजा
0: लोग वहीं खड़े हैं,
1: आता
0: 100 150 डांसर वहीं खड़े हैं,
1: जी
0: और एक्टरों की रिहर्सल चल रही है, और हर बात पे वो हंस भी रहे हैं, वो
1: हाँ
0: ताली भी बजा रहे हैं,
1: हाँ
0: और बूढ़े डांसर्स थे हमारे पास, हमारे पास 60 70 के
1: हाँ
0: डांसर्स भी थे,
1: हाँ
0: और वो आगे आते थे और इनके साथ नाचने लग जाते थे। तो
1: जी
0: एक अलग माहौल था उस सेट पे।
1: जी जी
0: और उसके बाद डेनी सर
1: हाँ उनका भी जानना है, वो तो इस बड़े अलग टाइप का किरदार
0: वो
1: है,
0: सीधा
1: वो
0: बोल
1: कैसे
0: देते थे
1: करें।
0: आके कि देखो बेटा मैं भूल जाऊंगा, मुझे नहीं पता तुमने
1: हाँ
0: करना है मेरे साथ,
1: हाँ
0: तो कैमरा के पास हम लोग उनके लिए डांस
1: करते
0: करते
1: थे
0: रहते
1: और
0: थे।
1: वो कॉपी करते
0: और
1: थे।
0: बोमन ईरानी भी, इतने बड़े कलाकार हैं, उनका भी एक अलग कॉमिक टाइमिंग चल रहा होता था, और वो बोलते थे उनका एक पोर्शन था जिसमें उन्हें लड़की बनना था, तो मैं जो बोलते थे तुम करके दिखाओ मुझे मैं तुम्हें कॉपी करूंगा, और फिर उनको केटी को ये दोनों इनको बोलते हैं,
1: हाँ
0: और ये लड़की की तरह अदायगी
1: हाँ
0: दिखाते, और
1: इधर
0: फिर मैं
1: आते
0: उनको
1: हैं
0: करके
1: जी।
0: दिखाती। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस हम लेते हैं ना ऐसे लोगों के साथ, ऐसे कलाकारों के साथ काम करके, वो शायद मैं इतना बोलूं तो आप इमेजिन नहीं कर पाओ जो हमने जिया है।
1: फिर भी
0: बहुत
1: हम कुछ प्रतिशत तक तो पहुंच गए
0: पहुंच गए।
1: जी।
0: और फिर हमारे एक प्यारे से शर्मीले से डायरेक्टर साहब जो सूरज
1: बड़ी
0: बजातिया जी है,
1: सॉफ्टली बोलने
0: बहुत ही
1: वाले
0: सॉफ्ट, और
1: जी।
0: वो जब आते हैं इन सबको देखते करते हुए, और वो मुझे ऐसे गले लगाते हैं, बहुत असर पे हाथ रखते हैं हर बार, बहुत अच्छा किया शबीना। तो ये कहानियां हैं जिनको हम जीते हैं, जिनके साथ हम सीखते हैं कि इस

0: उम्र में भी उनकी जो एनर्जी थी, जो सीखने की, बच्चों की तरह वो उछलते थे रिहर्सल पे, अरे एक बार एक बार एक बार एक बार, अरे मैं गलत कर दिया, अरे मैंने ये, वो भूल जाते थे कि उनकी उम्र क्या है।
1: जी
0: मैं कहती थी सर आराम से, नहीं नहीं करना है, वो जो
1: बहुत मजा आ रहा
0: बचपना,
1: होगा ना
0: बहुत मजा
1: जी।
0: हमने उनसे सीखा कि कलाकार की कोई उम्र नहीं होती,
1: कलाकार कभी बूढ़ा नहीं
0: बूढ़ा
1: होता।
0: नहीं होता कभी,
1: हाँ
0: वो हमेशा एक छोटा बच्चा ही होता है। तो आप गाना देखिए, आपको पता चले उसमें।
1: हाँ उस गीत को देखने के बाद मजा हमको भी आया था। हम सब भी उसके साथ थोड़ा डांस किए थे कि जब ये डांस कर सकते
0: तो
1: हैं तो हम
0: हम
1: तो
0: क्यों नहीं
1: कर ही
0: कर
1: नहीं
0: सकते हैं?
1: सकते। मैंने आपसे बात कर ली एक्ट्रेसेस के बारे में यानी अभिनेत्रियों के बारे में। आपने हमारे पुराने जो दिग्गज हैं उन अभिनेताओं के बारे में भी बता दिया। एक अभिनेता है जिनकी हर फिल्म में शबीना का नाम लिखा ही हुआ है। साथ में शुरुआत कहाँ से हुई उनके साथ और उसके बाद फिर शायद कोई फिल्म बीच में ऐसी थी ही नहीं जिसमें आप नहीं थी। तो आप समझ गई हैं मैं
0: बिल्कुल
1: किसके
0: समझ
1: किस
0: गई,
1: विषय पे बात कर रही हूं। तो मैं चाहती हूं वो विषय आप खुद ही शुरू
0: बिल्कुल
1: करें
0: समझ गई।
1: और हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: सबसे पहले मैं ये बताऊं, आप बात कर रही हैं मेरे, जिसे मैं जिंदगी में, मैं कुछ लोगों को अपना मेंटोर गुरु मानती हूँ
1: जी
0: और मेरी जिंदगी की हर एक सफलता का जरिया मानती हूँ। उनमें अगर सूरज बड़जात्या है तो उसमें एक बड़ा नाम है सलमान खान ऑल्सो,
1: जी
0: जिन्हें मैं भाई बुलाती हूँ
1: जी
0: बहुत मोहब्बत से, और बहुत जब हाथ उठाती हूँ उनके लिए दुआ करती हूँ,
1: जी
0: क्योंकि आज भी जो आप उनका रूप बाहर देखते हैं
1: जी
0: वो 5% भी नहीं है जो वो दुनिया के लिए करते हैं,
1: जी
0: 5% भी नहीं है। तो सलमान भाई का और मेरा काम जो शुरू हुआ, मेरी पहली फिल्म एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी खामोशी, गणेश हेगड़े के साथ।
1: हाँ खामोशी द म्यूजिकल जर्नी।
0: यस, जो मैंने पहले कहा आपसे कि स्टेज के बाद जब मैं कोरियोग्राफी में आई, जो मुझे गणेश आचार्य जी ने डांस करते हुए देखा, हमारा एक हॉल होता था मंगला हॉल, वहां पे जो डांस करते हुए देखा वो गणेश हेगड़े साहब के ही गाने का डांस कर रही थी मैं।
1: अच्छा
0: गणेश हेगड़े की जो पोनी है वर्मा, जो बहुत बड़ी कोरियोग्राफर है, वो उनकी असिस्टेंट होती थी उस वक्त, वो मेरी सीनियर है और उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। उनके एग्जाम्स होते थे तो गणेश हेगड़े साहब को ये फिल्म मिली थी खामोशी, जिसमें वो कोरियोग्राफी कर रहे थे, उनकी पहली फिल्म थी, मतलब स्टेज करते थे वो, और
1: जी
0: संजय लीला बंसाली थे और ये एक लड़की असिस्टेंट ढूंढ रहे थे। तो उस फिल्म में पोनी वर्मा जी ने भी एज एन असिस्टेंट किया और फिर मुझे भी मौका मिला
1: जी
0: एक स्केड्यूल करने का,
1: जी
0: और मेरे पहले हीरो थे सलमान खान,
1: ओके
0: जबकि मुझे पता भी नहीं था कि ये सलमान खान है, क्योंकि उस वक्त घर में टीवी नहीं होता था, हम फिल्में नहीं देख रहे होते थे, हमें इतना पता नहीं था,
1: हाँ
0: स्कूल में थे हम,
1: आप उस चीज को उतना समझते भी नहीं थे।
0: एक्टिंग इंस्टीट्यूट में थे, सीख
1: जी
0: रहे थे,
1: जी
0: और फिर उस फिल्म को करने का मौका मिला तो मुझे लगा कि ठीक है पर डे इतना पैसा मिलेगा, हम गोवा चले गए,
1: हम पैसे के लिए गए थे।
0: चलो वही मास्टर है जिन्होंने स्टेज पे मेरे साथ किया है,
1: हाँ
0: कंफर्टेबल है, हम मास्टर जी समझते हैं गणेश हेगड़े साहब,
1: कोई दिक्कत
0: कोई
1: नहीं है
0: दिक्कत
1: रिस्क
0: नहीं है,
1: नहीं
0: मम्मी ने
1: है।
0: कहा बेटा चलो करते
1: हाँ
0: हैं देख लो
1: हाँ
0: क्या है। तो हमने गाने उनके साथ में किए और मेरा पहला हीरो सलमान खान, और उसमें नाना पाटेकर जी भी थे और मनीषा कोराला थी, तो वो
1: बहुत
0: मेरी
1: प्यारी
0: पहली,
1: फिल्म है बहुत
0: बहुत
1: प्यारे
0: प्यारी
1: गाने
0: फिल्म।
1: हैं जी।
0: वो फिल्म के बाद मैं 6 महीना एग्जाम्स के लिए वापस आ गई, मेरे एग्जाम्स हुए और उसके बाद स्टेज करने लगी, और फिर गणेश आचार्य जी के साथ फुल फ्लेज में फिल्म में शूट किया। तो
1: ये
0: वो मेरे,
1: खामोशी में जब सलमान खान को पहली बार आपने डायरेक्ट किया तो व्हाट यू रियलाइज कि वो बहुत अच्छे डांसर हैं या बहुत अच्छे एक्टर हैं।
0: ही वॉज अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी ऑन सेट फॉर मी,
1: हाँ भारत की बहुत
0: जो
1: सारी लड़कियां 90 के दशक में सलमान खान का पोस्टर अपने कमरे में लगाती थी।
0: जो मुझे, मतलब छोटी है लड़की तो मुझे बड़े प्यार से बिहेव करते थे कि आ
1: जी
0: जाओ बता दो क्या करना है,
1: जी
0: वो भी बड़े यंग ही थे
1: हाँ
0: बट वो
1: हाँ
0: बड़े ही सूदिंग पर्सनालिटी थी मेरे लिए
1: जी
0: उस वक्त, कुछ भी सब कुछ नया था,
1: हाँ
0: कैमरा पहली बार देखा, अच्छा ऐसे शॉट होता है, अच्छा ये कभी नहीं देखा था
1: वही सीख
0: जिंदगी,
1: रहे थे वही कर रहे
0: तो
1: थे
0: वो जब देख रही थी मेरे लिए था कि ये तो बड़ा अच्छा हीरो है, बड़े प्यार से बात करता है, मनीषा करोला
1: जी
0: बड़ी अच्छी है इसको बताना है, संजय लीला बंसाली से डर जाती थी मैं सेट पे कई बार,
1: हाँ
0: नाना पाटेकर जी से डर जाती थी, बट काम
1: बढ़िया
0: करने आए थे, बस इतनी समझ तो थी नहीं।
1: जी
0: सिर्फ सलमान खान इसलिए याद है कि ही बिहेव रियली वेल विथ मी।
1: हाँ वो शायद उम्र का भी ऐसा था कि वो आपसे उम्र में भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे
0: हाँ, और
1: बहुत
0: वो
1: ज्यादा गैप
0: समझते थे कि,
1: नहीं
0: वो समझ रहे थे कि अच्छे बच्ची नहीं है
1: था।
0: अभी आई है, और उस वक्त वो तो बड़े स्टार हो चुके थे,
1: जी
0: वो उनकी
1: बिल्कुल
0: बड़ी बड़ी फिल्में आ रही थी।
1: जी
0: उसके बाद मैं वापस आ गई, उसके बाद में सलमान भाई का, अब उसके बाद जब मैं कोरियोग्राफर बनी तो काफी वक्त तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मैं जब कोरियोग्राफर बनी, एक नियम होता है कि आप जाके सबसे मिलते हो जिनके साथ आपने काम किया है, कि गोविंदा से मिली, मैं सलमान से मिली, क्योंकि मैं उनके असिस्टेंट डेज में कर चुकी थी,
1: तो

0: जब
1: बताने तो जाना
0: खामोशी के
1: पड़ेगा।
0: बाद मैं गणेश आचार्य जी की असिस्टेंट बनी तो सारे गाने सलमान खान के किए मैंने, जुड़वा से लेके जितनी भी उनकी फिल्में थी, रानी मुखर्जी के साथ बोलो, गोविंदा के साथ काम किया। तो सलमान भाई के साथ एक असिस्टेंट डेज में फिर रेपो बन गया कि वो जब डांस करते थे कैमरा के नीचे मुझे बोलते थे चल तू कर, तो उन्हीं को सिखा रही होती थी क्योंकि मैं गणेश मास्टर जी मेल है उनके असिस्टेंट थी, उनको कॉपी करती थी तो सबको लगता था मास्टर जी के बाद शबीना है जो अच्छा करती है उनका स्टाइल। तो तू सिखा, सनी देओली बोल रहे तू सिखा, संजू बाबा बोल रहे तू सिखा, गोविंदा जी बोल रहे तू सिखा, तो लड़कियों को भी सिखा रही हूँ वो भी कर रही हूँ। तो एक वो एक चलन आ गया, तो वो सलमान भाई के साथ रेपो बन गया जब उन्होंने पहली बार मुझे अपनी फिल्म के लिए बुलाया, वो थी दबंग में बुलाया था सबसे पहले, पहली दबंग मस्त मस्त दो नैन गाने किया था वो बुलाया। उसके बाद में एक गैप आया, उसके बाद में फिर जय हो में बुलाया उन्होंने, जय हो का गाना जय जय जय क्या करियो आजा जय हो करो, वो गाना हिट हो गया
1: बिल्कुल।
0: उसके बाद में सूरज भजातिया जी की फिल्म आई, शायद आगे पीछे दबंग थ्री सूरज भजातिया की फिल्म 2014, उनके साथ काम किया। सूरज जी ने बोला मेरे गाने तो शबीना ही करेगी, फिर सलमान भाई से मुलाकात हुई तो एक रैपो बनता था ही मेरा पहले से उनके साथ, तो आसानियां बढ़ गई क्योंकि ही न्यू दैट ओके शबीना इज देयर चलो करेगी। वो पिक्चर मेरी जो पहली हिट हुई वो भी सलमान खान की फिल्म थी जो प्रेम रतन धन पायो
1: जी बिल्कुल,
0: उसके पहले आशिक बनाया आपने, उसके पहले नाच आई मेरी, काफी फिल्में चली, मुझे कभी किसी के पास जाके काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। माधुरी दीक्षित फिल्म आने के बाद इंडस्ट्री का चलन था, मुझे बुलाने लगे बहुत ज्यादा, रामगोपाल वर्मा अपनी सारी फिल्में मुझे दे रहे हैं, तो ये चलता रहा। फिर सलमान भाई की फिल्म आई, पहला गाना मेरा हिट हो गया आशिक बनाया, उसके बाद सलमान भाई का गाना जिसने मुझे नाम दिया, जिसे कहते हैं ना कि आप अपनी डीवीडी नहीं भेज रहे हो, पहले डीवीडी भेजते थे प्रोड्यूसर के पास के सर देखिए मैंने ये काम किया,
1: अब इस बार डीवीडी नहीं भेजनी
0: पड़ी। अब मैं प्रेम रतन के बाद डीवीडी नहीं भेजना पड़ा, इंडस्ट्री में सबको पता चल गया शबीना खान कौन है बिकॉज मेरा वो गाना प्रेम रतन धन पायो हिट हुआ, जबकि वो गाना सोनम कपूर की स्टेप्स थी, लेकिन सलमान खान हर जगह जा रहे थे और वो स्टेप कर रहे थे सोनम के साथ, ये पहली बार हुआ था। सलमान भाई बोलते थे अरे लड़की का स्टेप मुझसे करा रहे हर जगह, एंड ही यूज्ड टू डू आल्सो बिकॉज ही वाज डूइंग इट, वो हिट वो
1: ऑरा क्रिएट हो गया था,
0: ऑरा क्रिएट हो गया, और वो स्टेप आज भी यूट्यूब में वो गाना सबसे ज्यादा,
1: कई लोग रील्स भी उस पे बहुत बनाते
0: उसी पे रील
1: हैं।
0: बनी डब स्मैशेस बने, मैं हिट हो गई
1: जी,
0: मेरा करियर चल पड़ा, तो वो सलमान खान थे। फिर दबंग हुड़ हुड़ दबंग जब आया उन्होंने जो
1: मेरे पैंट की जेब में उंगली डाल के,
0: वो तो गणेश आचार्य जी ने किया था
1: जी जी,
0: दो गाने उन्होंने किए, जब तीसरी दबंग का आया तो उन्होंने मुझे दिया ये गाना,
1: अच्छा
0: कि शबीना करेगी तुम करो ये गाना,
1: अरे वाह।
0: फिर वो स्लीव्स के साथ में मोमेंट हिट हुआ,
1: अच्छा।
0: तो फिर उन्होंने एक चलन हो गया कि वो उन्होंने कभी मुझे फीमेल कोरियोग्राफर की तरह देखा ही नहीं है, उन्होंने हमेशा मुझे एक सेंसिबल कोरियोग्राफर देखा,
1: मतलब मेल फीमेल से परे
0: परे
1: एक कोरियोग्राफर,
0: एक कोरियोग्राफर है जो जज्बात समझती है, जो फैमिली बैकग्राउंड से आती है ये फैमिली समझती है। तो मुझे ट्यूबलाइट का गाना दिया उठा के, कबीर खान को बोला ये गाना तो नाच मेरी जान शबीना करेगी उसको दो, तो वो मुझे हमेशा एक ऐसा गाना अपनी फिल्मों में दे देते हैं बुला के जो उन्हें लगता है शबीना करेगी।
1: तो ये बहुत अच्छी बात है ना, साथ लेके चल रहे हैं, और साथ सिर्फ इसलिए नहीं लेके चल रहे कि करना है, इसलिए चल रहे हैं क्योंकि
0: ही नोज
1: कुबत है, काबिलियत है,
0: काबिलियत को देख के उन्होंने मुझे बुलाया। राधे में उन्होंने गाना दिया
1: जी,
0: उसके बाद
1: राधे का कौन सा गाना था आपका
0: जो परदेसिया सॉन्ग का रिमिक था जैकलिन का और सलमान खान का,
1: हाँ वो बहुत खूबसूरत,
0: वो गाना मुझे दिया बुला के, तो एक बेस्ट गाना वो मुझे बुला के दे देते हैं। और उन्हीं की वजह से आई थिंक जब एक मेगा स्टार आप पे भरोसा करता है ना तो आपके लिए आसानियां हो जाती है
1: जी,
0: बाकी लोगों को लगता है यार सलमान खान की कोरियोग्राफर, तो वो एक चलन चल गया, मुझे बोलने लगे सलमान खान की कोरियोग्राफर, सलमान खान की कोरियोग्राफर, सलमान खान की कोरियोग्राफर।
1: तो एक गीत जो आपने और सलमान खान ने साथ में किया है, यानी शबीना खान और सलमान खान का साथ का गाना है, वो कोई एक गीत जो आप कहेंगे वो हम हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाना चाहेंगे, आपकी पसंद का, आपकी ख्वाहिश से।
0: सलमान भाई का एक हमारा साथ में किया हुआ गाना जो मुझे बहुत पसंद है, सभी गाने पसंद है नाच मेरी जान एक गाना है, बहुत पैपी नंबर है
1: जी।

0: श्रोता हमारे साथ हैं शबीना खान, जो कि एक बहुत बहुत बहुत बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। और अगर मैं कहूं कि आज तक की जो लिस्ट बनी है, ऐसा कोई अभिनेता या अभिनेत्री या कोई दिग्दर्शक या कोई निर्देशक कोई नहीं बचा है जिसके साथ शबीना खान ने काम नहीं किया है, और जो भी किया है उम्दा किया है, परफेक्ट किया है और अब तक का बेस्ट किया है। हमने जब तक इनके बारे में इनके जाना या इनसे बात की है, जो अब तक उस सब में इतने सारे गाने आए हैं और हर गाना अद्भुत है, ऐसा लगता है कि वो अपने उत्कृष्टतम उत्कृष्ट पर बैठा हुआ है। तो उन्हीं में से एक और फिल्म आई थी जिसने अपना नाम पूरी दुनिया में बना लिया था, और उस फिल्म में हैंडपंप भी उखाड़ा गया, भारत के बारे में भी बात की गई। और ये फिल्म है ना, जो अपना एक कहा जाता है ना, एक स्थान बना चुकी है, और कई सालों बाद वापस वो फिल्म आती है। और शायद जब ये फिल्म आई थी तब शबीना खान बहुत छोटी सी रही होंगी, और जब ये दोबारा ये फिल्म आई तब शबीना खान जो है वो कोरियोग्राफर बन चुकी हैं, और ये फिल्म इनके हाथ में आती है। फिल्म का नाम है गदर 2। ये फिल्म कैसे आपके हाथ में आई, और जो गाना अपने आप को पहले ही स्थापित कर चुका है, उस गाने को फिर से नए कलवर के साथ प्रेजेंट करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उस गाने को हमने देखा था एक स्कूल के बड़े से ऑडिटोरियम में मंच पे नाचते हुए। अब उस गाने को आप सड़क पे, यानी एक स्थान पे, एक आंगन में नृत्य करवा रही हैं, तो थोड़ा सा अगर वहां तक हमें ले जाए तो।
1: पहले सवाल का जवाब ये है कि गदर,
0: हाँ,
1: जब गदर रिलीज हुई थी 2020-21 में, तब मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी गणेश मास्टर जी के साथ।
0: जी,
1: इस फिल्म को किया था जय बोराडे साहब ने। जय बोराडे हमारे बहुत फेमस कोरियोग्राफर, जो सूरज बरजाते की सारी फिल्म,
0: बहुत बड़े कोरियोग्राफर,
1: बहुत बड़े कोरियोग्राफर थे।
0: हम साथ साथ हैं भी उनकी,
1: हम साथ साथ हैं, मैंने प्यार किया, हाँ। उनकी लास्ट फिल्म थी विवाह,
0: हाँ।
1: उसके बाद मैंने ज्वाइन किया सूरज बरजाते,
0: एक विवाह है, सभी फिर आपके पास आया था जी।
1: उसके बाद से मैंने राजश्री प्रोडक्शन को ज्वाइन किया। तो जब गदर 2 कैसे आई, अनिल शर्मा जी जो हमारे बहुत ही दिग्गज, बहुत ही माने हुए डायरेक्टर है, उनके बेटे की एक फिल्म आई थी जीनियस, उसमें उन्होंने मुझे दो गाने दिए थे।
0: अच्छा।
1: जब उन्होंने मेरा काम देखा तो उन्होंने कहा कि बड़ी फिल्म करेंगे साथ में।
0: अच्छा।
1: और जब गदर फिल्म आई तब उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे कहा ये फिल्म तुमने करनी है।
0: अच्छा।
1: तो उन्हें लगा था दो तीन गाने देंगे, मैंने कहा सर मैं पूरी फिल्म करूंगी, अब पूरी फिल्म एक ही फिल्म करूंगी। ऊंचाई की शूटिंग चल रही थी मेरी, आई सर ऊंचाई पूरी फिल्म मैंने अकेले खुद की है, ये फिल्म भी पूरी करने दो मुझे, और मेरा पूरा वक्त आपका, आप जब बुलाओगे सुबह शाम 3 बजे रात को 4 बजे सुबह जब बुलाओगे मैं आपके साथ करूंगी, पूरी फिल्म करूंगी।
0: मतलब उतने दिनों में मैं कुछ और नहीं,
1: कुछ और काम नहीं करूंगी, क्योंकि इस फिल्म की डिमांड होनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट थी, 22 साल बाद रिलीज हो रही है, यू नो। और चैलेंज ये था इस फिल्म के साथ कि 22 साल के बाद आज की ऑडियंस सोशल मीडिया को लेकर बहुत अलग है। अगर

0: 40% पुराने लोग ये फिल्म देखेंगे तो 60% आज के लोग देखेंगे जो उस वक्त पैदा हुए होंगे और आज 22 साल के होंगे, 25 साल के होंगे या 27, 28 साल के होंगे. तो
1: जी
0: ये ऑडियंस तो यही मेन है अपनी, 65-70%. तो मैंने काम तो बहुत मेहनत की इस फिल्म पे, एक एक गाने को तराशा. और सवाल ये था कि आज की ऑडियंस को, पिक्चर बनी है हमारी 1970 के ऊपर,
1: बहुत पुराने समय की बात है,
0: 70s के ऊपर फिल्म बनी है, अंदाज 70s का है, कैरेक्टर 70s के, गाने 70s के अंदाज में,
1: खुशबू उसी समय की है,
0: सब कुछ उसी समय का, लेकिन दिखाना आज की ऑडियंस को है. और पुरानी ऑडियंस भी डिसअपॉइंट नहीं हो कि अरे यार ये क्या कर दिया नहीं कोरियोग्राफर ने.
1: हाँ, हमारा पुराना वाला अच्छा था.
0: तो ये जो ख्याल थे ना, ये मेरी रातों की नींद उड़ गई थी. और मैंने इतनी मेहनत की इस फिल्म को लेके कि हर एक गाना मोती के दाने की तरह निकल कर आए. मैं निकला गड्डी लेके, जो आपने कहा आंगन के अंदर किया, वही चैलेंज था. सनी देओल उस वक्त, सनी देओल इस वक्त,
1: उम्र का भी अंतर है,
0: उम्र का भी अंतर है. लेकिन क्योंकि सनी सर के साथ मैंने असिस्टेंट डेज में काम किया है, हमारी एक रेपो थी, और मैंने उनसे कहा कि सर ये सिग्नेचर मूवमेंट, सबने कहा सिग्नेचर मूवमेंट अलग करते हैं, अलग करते हैं, अलग करते हैं. सर नहीं, सर सिग्नेचर मूवमेंट वो मत करे, कोई और कोरियोग्राफर बोलता मैं करता हूँ मेरी स्टेप.
1: हाँ.
0: यहाँ पे आपकी अना, आपका ईगो नहीं आना चाहिए.
1: हाँ.
0: सर जय मास्टर जी को एक मुझे श्रद्धांजलि देनी है, उन्होंने जो बनाया था स्टेप हाथ का,
1: हाँ,
0: गड्डी लेके,
1: हाँ, हाँ,
0: वही स्टेप रखेंगे. उनके बेटे का जो रोल अभिनय निभा रहे थे, उत्कर्ष शर्मा,
1: हाँ,
0: जो अनिल शर्मा जी के बेटे हैं, उनको मैंने अलग स्टेप दिया.
1: हाँ,
0: मैंने कहा कि आप, वो 70s का बच्चा है, तो उनको मैंने स्टेप दिया राजेश खन्ना वाला,
1: हाँ,
0: क्योंकि वो बच्चा होता है राजेश खन्ना का और उसका दीवाना.
1: हाँ,
0: और फिर वहां जाके ये गाना बना. और अगर आप पूरी फिल्म के गाने देखो, उसमें दो गाने नए एक्ट कलाकारों के साथ निभाए गए थे
1: जी,
0: जो सबसे बड़े हिट हुए.
1: जी,
0: एक गाना था चलते रे इश्क में,
1: चलते रे इश्क में
0: जो
1: बहुत पसंद किया यूथ ने.
0: उसमें ये दिखाया है कि वो लड़की पाकिस्तान की मुसलमान फैमिली से ताल्लुक रखती है, ये बच्चा हिंदुस्तान से जाता है, उनका अफेयर होता है, और लड़की पाकिस्तान की ईद के दिन डांस कर रही है.
1: हाँ,
0: तो हमने चिलमन बनवाई, क्योंकि मुझे पता है
1: बहुत
0: ना
1: खूबसूरत सेट था वो.
0: चिलमन बनवा के, चिलमन के अंदर वो लड़कियों के साथ नाच रही है, चिलमन के बाहर लोग ईद, और पाकिस्तान के अंदर ये गाना हो रहा है ऐसा दिखाया है,
1: हाँ,
0: और हिंदुस्तान की ऑडियंस उसको देख रही है. तो वो गाना इतना सुपरहिट हुआ कि लोग आज गदर के बाद फौरन चलते रे इश्क में कहते हैं
1: जी
0: गाना,
1: बिल्कुल
0: इतना खूबसूरत.
1: बिल्कुल.
0: और उत्कर्ष शर्मा का एक गाना हिट हुआ था जो झूम झूम गाना था,
1: हाँ,
0: तो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, पूरी दुनिया के लोगों ने. तो मैं ये कह रही हूं फिर से कि मेहनत ही मेहनत, कंसिस्टेंसी, लगन, और बार बार एक चीज को सोचना, करते रहना, रातों की नींद गवाना, बेचैन रहने से ही आप गदर 2 जैसी फिल्म को दर्शा सकते हो.
1: फिर से वही बात, मेहनत तो करनी पड़ेगी,
0: करनी पड़ेगी
1: बिना
0: आपको,
1: मेहनत के.
0: आप हर बार साबित करना पड़ेगा, आप
1: हाँ
0: बैठ नहीं सकते पीछे,
1: हाँ
0: आपको
1: यानी कि
0: साबित करना
1: आपने
0: पड़ेगा.
1: इतनी बड़ी बड़ी सुपर डुपर हिट दे दी, बहुत सारे अवार्ड्स आपने ले लिए, लेकिन जब गदर 2 सामने आई, ऊंचाई में इतने सारे बुजुर्ग वय लोगों को भी आपने काम करवा लिए, यानी वो बुजुर्ग वय नहीं बोलना चाहिए, वो दिग्गज बोलना चाहिए,
0: दिग्गज है,
1: भारत
0: लेजेंडरी,
1: के वो सबसे बढ़िया कोहिनूर
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हैं, उन
0: कोहिनूर
1: सबको
0: है वो,
1: आपने काम करवा लिया. और
0: बिल्कुल
1: उसके बाद, क्योंकि इन्होंने उस समय जो काम करके दिया है, 70-60 से लेके 80-90 के दशक तक, और उसके बाद भी वो करते ही जा रहे हैं, पर वो जो किया है वो तो खैर बात ही अलग है. और उनसे काम कराने के बाद गदर 2 में भी वही पसीना बहा रहे हो, एसी कमरे में बैठे हो लेकिन पसीना तो आ रहा है.
0: बिल्कुल
1: तो हमें मेहनत करनी चाहिए, ये बात,
0: बिल्कुल
1: ये सीख हमारे छोटे छोटे जो श्रोता हैं
0: बिल्कुल
1: उन तक बात पहुंचनी चाहिए, और पहुंचती है. इतने सारे लोगों के साथ डांस किया, इतने सारे लोगों को काम कराया, राजपाल यादव एक नाम आता है.
0: मेरा पहला हीरो,
1: अच्छा.
0: मेरी पहली फिल्म का पहला हीरो, बिल्कुल. मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ,
1: हाँ
0: मैं
1: हाँ
0: हीरो तो राजपाल यादव ही
1: जी
0: थे, तो
1: जी
0: मैं तो उनके जिंदगी भर अभी भी मिलती हूँ तो बोलती हूँ मेरा पहला हीरो.
1: हाँ, तो हमारा प्रश्न यहाँ पे ये आ रहा है कि वो तो कॉमिक साइड में जाते हैं, कॉमिक साइड को डांस में या कोरियोग्राफी में कैसे कन्वर्ट कर पाते हो, क्योंकि कोरियोग्राफी में भी वो जो कॉमिक टाइमिंग है, या वो जो मजाक मस्ती है, या वो जो हल्की सी एक छोटी सी बात ही होती है, राजपाल यादव के साथ जो उनका अभिनय है, वो एक हल्का सा किरदार थोड़ा सा घूमता है, उतने में भी जनता जो है, जो देख रही होती है, वो हंसना शुरू कर देती है.
0: बिल्कुल.
1: तो उनके साथ कैसे आपने काम किया?
0: मैं आपको एक बात बताऊं, बीइंग एन एक्टर माय सेल्फ, मैंने एक्टिंग सीखी है,
1: जी,
0: तो सबसे मुश्किल काम होता है हंसाना लोगों को.
1: रुलाना आसान है.
0: हंसाना बहुत मुश्किल है। और वही काम मैंने कहा ना, जैसे ऊंचाई में केटी को मैं अनुपम खेर के बारे में कह रही थी, मैं वैसे ही राजपाल यादव है जितना

0: बंदा उछल उछल के हंसाता है, वो उतना रुला भी देता है आपको 1 मिनट के अंदर। और जिसके अंदर ये एक रिदम है, जिसके अंदर कॉमिक टाइमिंग होती है उसके अंदर रिदम होता है, तो डांस करना तो बाएं हाथ का खेल है।
1: अच्छा।
0: उसके बाद मैंने उनके 2-3 गाने किए जिनमें उन्हें नचाया है, और वो बराबर टाइमिंग पर डांस करते हैं।
1: क्या बात है।
0: बिल्कुल
1: तो ऐसे बढ़िया बेहतरीन अभिनेता अभिनेत्रियां भी हमारे यहाँ पे हैं। आपने कुछ साउथ के डांसर्स के साथ भी काम किया
0: काफी काम किया
1: है
0: साउथ
1: ना,
0: में।
1: साउथ के अभिनेताओं के साथ अभिनेत्रियों के साथ काम किया, तो क्या अंतर है बॉलीवुड और दक्षिण भारत के काम में?
0: जिस वक्त मैंने काम किया, मैं बात कर रही हूँ 2000 शायद 12-13 की, मैं इतना काम करती थी वहां पर कि मुझे मुंबई आने का वक्त नहीं मिलता था।
1: जी।
0: तमन्ना, कार्ति, सूर्या, पवन कल्याण, ऐसे कई नाम हैं जिनके साथ मैंने काम किया। एक चीज जो मैं उस वक्त वहां देखती थी, डिसिप्लिन। अगर वो 7 बजे की शिफ्ट रखते हैं तो 7 बजे पहला शॉट होना चाहिए। मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ।
1: 7 बजे रखते हैं तो 7 बजे शॉट होता है, मतलब उसके पहले लोग आते
0: उसके
1: हैं।
0: पहले 6 बजे सब आके सेटअप करके रेडी होके एक्टर शुड टच द सेट एट
1: मतलब
0: सेवन।
1: एक्टर 5 बजे आके मेकअप करा के तैयार होके बैठा
0: बिल्कुल।
1: होगा।
0: अगर आप वो डिसिप्लिन देखा है कि मैंने डायरेक्टर को पैकअप करते हुए देख लिया कि एक एक्टर सिर्फ 10 मिनट लेट आया तो ही कॉल्ड मी असिस्टेंट के साथ, मैंने एक्टर के साथ रिहर्सल किया, शॉट दिखाया डायरेक्टर को और डीओपी को, शॉट की रिहर्सल हो गई, बस टेक बोलने वाले है, हीरोइन ने गाउन उतारा, बोला पैकअप। बड़ी हीरोइन, मैं नाम नहीं लूं, क्यों? ही सेड, अम्मा यू एंटर्ड इन द सेट एट 7:10, सो टुमारो वी रोल दिस एट 7।
1: 7 मीन 7।
0: 7 पैकअप। शी स्टार्टेड क्राइंग। ही सेड नो प्रॉब्लम। सो ये एक, इसे आप रूडनेस नहीं बोलते, इसको कहते हो कि आपको कभी कभी जब चीजें सीधी करनी होती है तो थोड़ा सा अलग रास्ता अपनाना होता है। वही किया। नेक्स्ट डे 6:30-7 में लड़की बैठी हुई थी वहां पे, जबकि उसकी गलती उस दिन भी नहीं थी, लेकिन ये एक तरीका है उनका काम करने का। लेकिन अब हमारे यहाँ पे भी मैंने ये देखा है कि हम वक्त पे काम शुरू कर देते हैं,
1: अच्छा।
0: और
1: तो
0: कहते हैं ना कुछ एक्टर बहुत लेट आते हैं,
1: हाँ,
0: बट लोगों को ये नहीं पता कि वो लेट आने के बाद भी 8 घंटे का काम 4 घंटे में खत्म करके दे के निकल जाते
1: निकल भी
0: हैं।
1: जाते हैं क्योंकि वो इतना क्विक है।
0: एब्सोल्युटली।
1: हाँ, तो अब जब इतनी अच्छी बात चल रही है तो एक गाना और बनता है, क्योंकि हम तो इंफोटेनमेंट वाले हैं, इंफॉर्मेशन भी देते हैं और एंटरटेनमेंट भी करते हैं, तो एंटरटेनमेंट के लिए कौन सा गाना हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे?
0: मेरा बहुत फेवरेट गाना गदर 2 का, चल
1: हाँ,
0: तेरे इश्क में खो
1: हाय हाय,
0: जाते
1: क्या बढ़िया,
0: हैं।
1: बहुत खूबसूरत सा गीत है। तो ये गीत हम हमारे श्रोताओं तक पहुंचाते हैं और
0: प्लीज
1: हम
0: सुनिए।
1: आपके काम के इश्क में खो जाते हैं उतनी देर के लिए। बहुत खूबसूरत काम किया शबीना जी, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं इस गीत की तरफ।

0: हालांकि शबीना जी, हमने आपसे बात की, लेकिन ऐसा लगता है कि इतनी देर में आपको समेट पाना बहुत कठिन है। फिर भी हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने आपसे बहुत सारी बातें कर लिया, ऐसा हम मान रहे हैं खुद से। हालांकि हम भी जानते हैं कि अभी बहुत सारे गानों की बहुत सारी कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपसे सुनी जा सकती हैं, और रोचक तथ्य और रोचक बातें आपकी सुनने को मिलेंगी, और हम चाहेंगे कि सुने भी एक आध। लेकिन उसके पहले एक बात बनती है कि शमीना खान यानी छोटी सी 7वीं 8वीं की लड़की आई थी इंडस्ट्री में, उसने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करके बहुत बड़ी बन गई। अवार्ड्स भी बहुत सारे मिले, फिल्म फेयर मिला, बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तो हम चाहते हैं कि वो अवार्ड्स जब आप ले रहे थे, कैसा लग रहा था? कौन था जो आंखों के सामने आया था कि यार थैंक यू, तेरे कारण मुझे ये मिला है?
1: मेरी अम्मी, मुझे पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला
0: जी।
1: तो मैं मुंबई में थी नहीं। प्रेम रतन धन पायो के लिए मुझे इनविटेशन आया, मैं मुंबई में थी नहीं। तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी चल नहीं पाती थी उस वक्त, उनका बैक का ऑपरेशन हुआ था,
0: अच्छा
1: तो मैंने कहा अम्मी तुमको जाना पड़ेगा, ये तुम्हारा अवार्ड है। क्योंकि जिंदगी भर से मैंने सोच के रखा था कि जब भी अवार्ड मिलेगा मैं अकेले नहीं जाऊंगी स्टेज पर,
0: माँ को साथ लेके
1: अम्मी को ले
0: जाएंगे
1: जाऊंगी, क्योंकि ये उनका अवार्ड है। हर एक
0: जी
1: कदम चली मैं थी,
0: जी
1: बट दिल और दिमाग उनका था। मुझे इतनी तरीके से, सलीके से पालना, इस तरह बनाना, इतना सोच समझ के चलने वाली लड़की, बचपन में हमें क्या पता होता है? कुछ नहीं पता होता है। हमारी माएं होती है जो हमें
0: और उस जनरेशन के बच्चों को कुछ नहीं पता होता था।
1: हमारे पास टीवी नहीं, रेडियो
0: हाँ
1: नहीं, ये
0: जी
1: हम सिर्फ अपनी माँ को सुनते थे,
0: हाँ
1: उसको देखते थे, उस जैसे बनना चाहते थे। बाल तुम्हारे लंबे हैं, मुझे भी बाल लंबे चाहिए, तुम ऐसी दे। मेरी माँ मेरी हीरोइन है, मेरा बाप मेरा हीरो है, हम यही थे ना उस
0: कई बार
1: जनरेशन
0: ऐसा
1: के
0: होता था,
1: बच्चे।
0: पूछते थे बड़े होके क्या बनना है, तो मम्मी बनना है।
1: मम्मी बनना है या टीचर बनना है।
0: जी
1: हमारी हमारी
0: जी
1: टीचरें भी हमारी बहुत बड़ी,
0: बिल्कुल,
1: आजकल वक्त बदल गया है, लेकिन हमारी टीचरें हमारी पहली बात
0: रोल
1: होती थी।
0: मॉडल
1: हम
0: होती
1: टीचर
0: थी।
1: रोल मॉडल होती थी हमारी टीचर,
0: बिल्कुल।
1: हमारे सर, हमारे टीचर, हमारे ट्यूशन टीचर, यही होता था।
0: जी
1: तो मैंने हमेशा सोचा था अम्मी को ले जाऊंगी और उनके हाथ में अवार्ड दूंगी और फिर उनको बोलूंगी मुझे अवार्ड दे। तो कई बार ऐसा भी हुआ, मैं पहुंची और मुझे अवार्ड नहीं मिला, किसी और को मिल गया। मैं स्पीच रेडी करके
0: नॉमिनेशंस में
1: गई,
0: आपने
1: नॉमिनेशंस में मैं थी, तो जब ये अवार्ड मिला, देखो कुदरत ने भी मेरे मैनिफेस्टेशन को कैसे हाँ किया। कहते ना, हम जो मानते हैं वो ही मिलता है कुदरत
0: मिलता
1: से।
0: है।
1: मैं मुंबई में हूँ नहीं, बैंगलोर में शूट कर रही हूँ, फोन आया आपको अवार्ड मिल रहा है, वो भी ओरिजिनल दादा साहब फाल्के अवार्ड।
0: क्या बात है।
1: या तो अम्मी को फोन, अम्मी बोले बेटा मैं जाने पाने। मैंने अपने भाई को फोन किया, ऐसे बेटा व्हील चेयर पर ले जाना अम्मी को,
0: पर लेके
1: बट
0: जाना।
1: लेकर जाना, मैं चाहती हूँ अम्मी जाए। मेरी अम्मी गई, उन्होंने वो दादा साहब फाल्के अवार्ड लिया और वहां पे उन्होंने बोला मेरी बेटी के लिए मैं ले रही हूँ। वो अवार्ड मेरी माँ को मिला है, कम से मेरा अवार्ड नहीं है वो।
0: जी
1: तो उस अवार्ड को मैं बहुत अलग नजर से देखती हूँ।
0: जी
1: उसके बाद पटाखा फिल्म के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन,
0: जी
1: उसके बाद मराठी फिल्म के लिए जी सिने अवार्ड, मैंने मराठी फिल्में भी की
0: जी
1: हैं। उसके बाद बस

0: वहां से सिलसिला शुरू हुआ, कई सारे अवार्ड्स मिले,
1: अब अलमारियां भर चुकी हैं।
0: हाँ काफी कुछ काफी कुछ, अब तो खैर बहुत सारे अवार्ड्स हो चुके हैं
1: जी,
0: बहुत सारे अवार्ड्स हैं जिनके अभी भी फोन आते हैं और हम कभी जा पाते कभी नहीं जा पाते, लेकिन जिसको मैं सराहती हूँ बहुत ज्यादा, फिल्म फेयर और दासा फाल्के अवार्ड, अजीज सिने अवार्ड, और गदर भी, सारे गदर के
1: जी
0: गाने भी अवार्ड्स में थे।
1: जी
0: फिर एक नेशनल अवार्ड के लिए मैं 3 बार नॉमिनेशन में आई हूँ।
1: क्या बात,
0: देखो आपके सारे श्रोता मेरे लिए दुआ करें और मुझे नेशनल अवार्ड इस साल
1: हम
0: मिल
1: सबकी
0: जाए,
1: प्रार्थना है कि आपके हाथ में
0: बस
1: नेशनल अवार्ड आना
0: नेशनल
1: चाहिए,
0: अवार्ड आ
1: जिसने
0: जाए।
1: इतनी मेहनत की है, अपना पूरा जीवन दिया है और किरदारों को खुद के नजरिए से हम तक पहुंचाया है,
0: बिल्कुल
1: या कहें कि किरदारों के रूप में खुद हमारे सामने आई है, तो उसको मिलना तो चाहिए। तो हम सबकी दुआएं, हम सबकी प्रार्थनाएं आपके लिए रहेंगी। तो कोई एक गाना जिसने आपको बड़ी खुशी दी हो, ऐसा मन किया हो कि हम खड़े हैं तो 3 फीट ऊपर उछल जाएं और थोड़ा नाच लें और थोड़ा नाच लें, ऐसा कोई गाना जिसको करने के बाद बड़ा मजा आया हो या करवाने के बाद?
0: ऐसा एक गाना है तो जरूर, हमारे लेजेंडरी मेगा स्टार सलमान खान का गाना है। उस गाने की हर लम्हा उसका मेरे लिए कीमती था, क्योंकि एक फीमेल कोरियोग्राफर को हुड़ हुड़ दबंग गाना देना
1: जी सही
0: पहली बात
1: बात है
0: अपने आप में बहुत।
1: जी।
0: वो गाना जब हम कोरियोग्राफी कर रहे थे तो मेरा जो मेल असिस्टेंट है, मेरा भाई शर्जिल, वो मेरा राइट हैंड है हमेशा से। जब हम
1: आपने
0: दोनों
1: बताया
0: नाचते हैं तो ऐसा लगता है कि जमाना कैरेक्टर को
1: अलग
0: देख रहा है, एक
1: जी
0: लेवल अलग है, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मर है।
1: जी
0: उसकी बैक में प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि उससे
1: अच्छा
0: एक गाने पहले वो इंजर्ड हो गया था,
1: ओ
0: अब वो डांस कर नहीं पा रहा है। इस फिल्म के डायरेक्टर है प्रभु देवा जो मेरे गुरु रह चुके हैं,
1: जी
0: सलमान खान साहब ने इतना बड़ा गाना दिया है, तो मैं थोड़ी सी ऐसी हो गई कि मैं फीमेल हूँ, हुरूर दबंग मुझे करना है और मैं चाहती थी कि शर्जिल के ऊपर किया जाए और वो इंजर्ड है तो मैं क्या करूं। तो मैं जब रिहर्सल हॉल पे जाऊं तो अपने 20 लड़के जिनके साथ मैं कंपोज कर रही थी, मेरे अपने डांसर, उनमें से चुनती रहूं, ढूंढती रहूं कि कोई है जो ऐसा परफॉर्म कर
1: किससे
0: सके,
1: करवा दें?
0: क्योंकि वो गाना जब मैं कंपोज कर रही थी उसमें एक दबंग वाला एक वो था ऑरा, और वो गाना जो था इस बार वाला वो उस पावर से कनेक्टेड हमें करना था जो ऊपर से आता है,
1: जी
0: वैसा पावर चाहिए था।
1: हाँ
0: मुझे मिले ही ना, मिले ही ना, और मैं गाना कंपोज करती जा रही हूँ, डांसर लड़कों को सिखाती जा रही हूँ और ढूंढ रही हूँ कोई एक लड़का मिल जाए। और फिर तीसरे दिन मुझे सारे डांसर और मेरे अपने भाई ने बैठ के बोला कि यू परफॉर्म,
1: ओ
0: यू शो इट टू प्रभु देवा, यू
1: ओके
0: शो इट टू एवरीबडी।
1: ओके
0: लड़कों ने बोला मैम देर इज नो अदर डांसर हु कैन डांस लाइक यू द वे यू आर डूइंग दैट सॉन्ग। तब प्रभु सर जब आए और मैंने सोचा यार सच में,
1: प्रभु देवा के सामने
0: अच्छा
1: डांस
0: प्रभु
1: कर
0: देवा
1: रहे
0: के साथ सामने
1: हो।
0: जब वो आए बोले यू विल डू इट, वाई वाई वाई यू सर, एक बार देख लीजिए। फिर उसके बाद जब मैंने करके दिखाया वो भूल गए कि मैं लड़की हूँ प्रभु सर, वो बस मुझसे डिस्कस करते रहे। फिर हम सेट पे पहुंचे, सलमान भाई वैसे ही रिहर्सल नहीं करते, सेट पे पहुंचे, हम कर रहे थे ये गाना शूट, हम इंदौर में कर रहे थे गाना, तो जैसे हमेशा की तरह सलमान भाई ने सोचा नहीं कि मैं लड़की हूँ लड़का हूँ कौन हूँ, मैं कोरियोग्राफर हूँ, मुझे बोले चलो पूरा गाना करके दिखाओ। अब पूरा गांव वहां पे खड़ा है सेट पे, सलमान भाई आए तो पूरा गांव खड़ा
1: हाँ,
0: हुआ
1: वो तो
0: है,
1: आए गई।
0: और मैं भी भूल गई कि मैं लड़की हूँ भाई, मैं तो कोरियोग्राफर हूँ। हमेशा की तरह दबंग अंदाज में मैंने वो गाना गांव के सामने किया,
1: हाँ
0: पूरा गांव शूट कर रहा था एंड दे ऑल क्लैप्ड, एंड सलमान भाई बोले करवा लेना मुझसे तुम ऐसे बस। वो जो शूट होके आया और लोगों ने पोस्ट करना शुरू किया, मैं अपने आप में हैरान थी, मेरे सारे लड़कों ने मुझे ऊपर उठा लिया कि मैम व्हाट वाइब्स यू गिव। तो उस वक्त मैं तो कोरियोग्राफर थी ना, मैं लड़की थी नहीं। अच्छा अब शूटिंग शुरू होती है और मैं हर शॉट मैं करके दिखा रही हूँ बिकॉज माई असिस्टेंट शर्जिल वॉज ऑन सेट बट ही कुडंट डू इट, नाउ मुझे ही करना है, शॉट लगाऊं करके भी मैं दिखाऊं, भाई को भी सिखा रही हूँ कर भी रही। अब ये पूरा जो गाँव के लोग है वो खड़े रह के देख रहे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन,
1: वो समझ रहे उस
0: वो
1: चीज को।
0: देख रहे हैं मुझे, देख रहे हैं। अब मैं रोजों में थी, उस वक्त रमजान चल रहा था, मेरे रोजे भी चल रहे थे। अब ये गाना खत्म हुआ, जैसे ही सब हो गया, लास्ट शॉट एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड टू लीव, और मैं अपने होटल की तरफ ऊपर जा रही हूँ, एक मजमा सा मेरी तरफ भागता हुआ आया, और मुझे लगा ये लोग आके मुझे बोलना चाहते होंगे सलमान खान से फोटो दिलवा दो, ऐसे कुछ होगा, और मैं बोली अरे अरे अरे रुको रुको मुझे जाने दो फिर चले जाओ मुझे जा। सर नहीं मैम वी वॉन्ट टू, दे आर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स एंड गांव के आसपास के लोग, एंड दे सेड कि आपके साथ फोटो उतारना है,
1: क्या बात है।
0: एंड देन वो फोटो उतारे, ऑटोग्राफ ले, मैं एकदम हैरान थी। उसमें से पूरे ग्रुप ने लास्ट में मुझे बोला मैम वी वॉन्ट टू गिव यू वन नेम टूडे, और लड़कियां थी उसमें 50 के करीब, आज के बाद हम जब भी आपका नाम ले आपका नाम दबंगिनी होगा, असली।

0: दबंग आप हो हमारे लिए। अगर
1: शबीना
0: सच
1: बन गई दबंगनी
0: तो उन्होंने मुझे ये खिताब दिया कि आप हमारी दबंगनी हो।
1: जी
0: तो आज भी वो सारे लोग जो खड़े थे वो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे है,
1: हाँ
0: मेरी पोस्ट देखते और मुझे पोस्ट बताते हैं कि आप दबंगनी शबीना खान दबंगनी। तो वो एक सिलसिला सोशल मीडिया पे उस वक्त शुरू हुआ था।
1: जी
0: तो ये इस तरह की अचीवमेंट्स भी होती है आपकी जिंदगी में कभी कभी,
1: जी
0: कि आपको नहीं पता जाने अनजाने में आप किसी के हीरो बन जाते हो।
1: ये अचीवमेंट शायद आपके सच्चे मन, बच्चे जैसा दिल
0: बिल्कुल
1: और अच्छा काम,
0: बिल्कुल,
1: इसके कारण आपको ये
0: बहुत
1: सब
0: जरूरी
1: मिली
0: है।
1: है। जी
0: रोटी की भूख खत्म ना हो पेट में और
1: जी
0: नींद ना आए, बेचैनी से आप अपना काम करते रहो।
1: जी बड़ी खूबसूरत सी बातें आपके साथ चल रही हैं। तो दबंगनी शबीना खान हमारे बीच में है, तो दबंगनी शबीना खान को एक गीत तो सुनवाना बनता है, वो गीत हम आपको सुनवा देते हैं। और गीत के परे हम आपसे, हमारे उन्हीं बच्चों से कुछ कहलवाना चाहेंगे।

0: शबीना बोलूं या दबंगनी बोलूं?
1: हाँ
0: तो शबीना खान जी, आपका फिर से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में
1: सुरीली
0: बहुत
1: धड़कन।
0: प्यार से स्वागत है। और अब जो है हम चल रहे हैं हमारे, हालांकि बातें तो दो महिलाएं बैठी हैं तो खत्म नहीं हो सकती हैं, और उसके बाद बात यह है कि आपके पास तो कितना सारा, कितना कुछ है आपके पास जिसे हम अगर चाहें तो शायद एक बार में खत्म नहीं होगा। तो विविध भारती आपसे चाहता है कि एक बार और आना, एक बार और कह के जाना अपने जो मन का है जितना है, लेकिन अभी जो है वो हम कहलवाना चाहते हैं आपसे कि जो जीवन जिया है, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा बड़ी, जो आप कह रही हैं इतनी देर से कि नदी बह रही है उसके साथ हम बहते जा रहे हैं, तो जब नदी के साथ बहते हैं तो बीच में चट्टाने, पत्थर, कांटे, बहुत कुछ आता है। ऐसा सबके जीवन में आता है, तो आपके जीवन में भी आया होगा। तो हम चाहते हैं आप हमारे श्रोताओं में उन बच्चों को बताएं जो कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, जो डांसर बनना चाहते हैं, जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, या जो कुछ भी बनना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ संदेश।
1: बिना तकलीफ के तो राहत कभी नहीं आती। तकलीफ है तभी हमें राहत का मजा पता चलता है। तो तकलीफें बहुत आई, अभी तो हमने सिर्फ सक्सेस की बातें की हैं।
0: जी
1: ऐसे कई लम्हात, कई

0: दिन कई महीने कई साल गुजरे जब काम भी नहीं होता है आपके पास।
1: अच्छा
0: ऐसा भी होता है क्योंकि जब आपका नाम होता है ना, वो अपने साथ एक बहुत बड़ी चीज लेकर आता है कि अरे सलमान खान की कोरियोग्राफर है, महंगी होगी,
1: हाँ
0: तो आपके पास लोग नहीं आते। फिर आपको पता चलता है कि अच्छा मैं तो महंगी नहीं हूं, तो आओ तो सही, पता चलेगा क्या
1: पूछो
0: हो।
1: तो।
0: ये एक चीज है। दूसरी चीज, एक लड़की होना, एक लड़की होना, एक लड़की जो बचपन से आप कहें अल्हड़ उम्र के अंदर भी मैंने कदम यहीं पे रखा। मैं 15 साल की थी तो मैं 20 साल की भी यहीं हुई, 20 की हुई तो 22 की भी यहीं हुई, 25 की भी हुई है। तो ये जो एक दौर होता है जब आपको लोग अलग नजरिए से देखते हैं,
1: कैशव और पूरा जवानी सब यही
0: यहीं
1: निकली।
0: पे गुजरा है, तो मैंने वो भी देखा। और एक वक्त था जब कुछ लोगों के साथ मैंने जुड़ना नहीं चाहा तो मैं घर बैठ गई। एक वक्त था जब मुझे घर बिठाया गया, ये नहीं करोगी तो ये होगा, मैं बैठ गई घर। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ लड़कियों से कि सब्र का दामन थामे रखो हमेशा, पेशेंस जिसे कहते हैं, सब्र रखो। ऊपर वाले ने जो आपको दो ताकतें मिली है, एक ये कि ऊपर वाले ने आपकी कुंडली लिख दी है, दूसरा ये कि आपकी अच्छी आदतें, आपकी अच्छी नीयत, सिर्फ वही चीज ऊपर वाले की लिखे को बदल सकती है।
1: जी
0: ये सारे चीजें यही कहती है
1: जी
0: कि आपका कर्म आपके आने वाले कदमों को अच्छा या बुरा बना सकता है। तो
1: जी
0: मैं यही कहना चाहती हूँ लड़कियों से कि हड़बड़ाहट में, पानी की लालसा में, चाहत में अगले ही कदम गलत कर दोगे तो भी आपको थपेड़े तो मिलेगी ही मिलेगी। तो क्यों ना हम सब्र कर लें, थोड़ा बैठ लें, थोड़ा इंतजार कर लें, थोड़ा दुआओं की ताकत को आजमाएं,
1: थोड़ी एहतियात
0: थोड़ी
1: बरतें।
0: एहतियात बरते, थोड़ा मंदिरों में जाके बैठ जाए, सुकून ले ले, और उसको बोले कि मैं तो मेहनत करने तैयार हूं बट
1: तू देख
0: रास्ते तू
1: लेते।
0: देख ले। लेकिन वो सब आप तब कर पाओगे जब आपके अंदर सब्र होगा, संयम होगा। संयम रखो, भाग भाग के तकदीरों को खराब मत करो, संयम से काम लो और मेहनत और चाहत ऊंचे की। यू नो आई ऑलवेज से चिन अप प्रिंसेस,
1: आय है
0: कीप योर चिन अप। तो आपकी डिग्निटी आपके सिवा कोई अपने ऊपर नहीं रख सकता। आपकी डिग्निटी आपको अपने हाथ में रखनी है, आपके माँ बाप की मर्यादा आपको अपने हाथ में रखनी है। और मर्यादा जब मैं कहती हूँ उसका मतलब ये है कि सबर तभी रख पाओगे जब आपके अंदर संयम हो, सबर हो। वो रखो और अपनी बनने की चाहत को, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कभी खत्म मत करो। आज आप कुछ नहीं हो, लोग आपकी बात को बोलेंगे अरे क्या बोल रही है, हट, कहीं सुन लिया होगा। लेकिन यही बातें आपको अपने अंदर का कॉन्फिडेंस ही आगे बढ़ के सहारा देगा। अपने पे भरोसा करना कभी मत छोड़ो,
1: आपने शॉर्टकट पकड़ा होता तो शायद आपको आप आज यहाँ बैठ के बात नहीं कर रही
0: बिल्कुल नहीं कर
1: होती,
0: रही
1: और
0: होती।
1: आपने धीरता रखी, गंभीरता रखी, तो आज आप यहाँ बैठी हैं, और इतनी यहाँ नहीं बैठी हैं, आप कई सारे दिलों पे राज कर रही हैं, कई सारे गीतों के माध्यम से राज कर रही हैं। बहुत बड़ी
0: बिल्कुल
1: बात है शबीना
0: बिल्कुल
1: जी। तो आपसे जब बात की तो बहुत सारी शिक्षाएं निकली, छोटी छोटी बातें शिक्षाओं के रूप में निकली, और सबसे बड़ी शिक्षा निकली मर्यादा। और आपने एक शब्द बोले, अपने माता पिता के जो संस्कार हैं उनको
0: बिल्कुल
1: ऊपर रखो और उनको बचा के रखो।
0: बहुत जरूरी है।
1: ये बहुत बड़ी बात आज के समय में, आज के काल में आपने बच्चों को बताई है, उसके लिए हम सभी बहुत धन्यवाद देते हैं। और विविध भारती परिवार, जिसमें हमारे श्रोता, हम सब और इसके पीछे काम करने वाले ढेर सारे लोग सब आते हैं, और सब आज आपको यहाँ वाकई बहुत खुश हैं यहाँ तक आप आई, आपने इतनी सारी बातें की। और ये बात हम जानते हैं कि बहुत सारी बातें हैं जो रह भी गई हैं, शायद आपको भी याद नहीं है, और यहाँ से निकलने के बाद लगेगा अरे ये बात और बता देनी
0: हाँ
1: थी, तो वो जो बातें रह जाएंगी वो हम चाहेंगे कि कभी और किसी और रोज हम
0: बिल्कुल
1: साथ में बैठें और हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं। लेकिन शबीना जी, यहाँ तक आने के लिए, हम हमारे साथ जुड़ने के लिए, विविध भारती परिवार का एक नया हिस्सा बनने के लिए बहुत धन्यवाद।
0: मैं लास्ट में सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का शुक्रिया कि विविध भारती को आपने अब तक उस शिखर पे रखा हुआ है।
1: जी
0: यहाँ पे आना, यहाँ के एहसास को जीना, यहाँ की सच्चाई जो मैंने आज फील की है, आई होप ये सच्चाई और ज्यादा से ज्यादा लोग जिए इसको। विविध भारती का शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए,
1: जी
0: और आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बी हियर।
1: थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू
1: थैंक यू
0: सो
1: सो
0: मच फॉर
1: मच,
0: हैविंग मी।
1: आपका बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।
2: जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग रीमा जोशी।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण FM 103.7 MHz पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल को। शाम के 5 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युवाणी।

गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप ही के पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी में, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और आज के इस कार्यक्रम का होस्ट सोम कविया, लेकर हाजिर आपका प्रोग्राम। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, नशा यह भारत की शान का है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। इन्हीं भावों के साथ आज के इस कार्यक्रम की हम करते हैं शुरुआत। आज का ये दिन एक तारीख मात्र नहीं है मित्रों, आज का ये दिन एक पर्व है हर भारतवासी के लिए, जो आज इस खुली सांस को ले रहा है उन सब के लिए, क्योंकि हमारे नाम अनाम उन स्वतंत्रता सेनानियों ने आज के दिन को हमें आज़ादी के रूप में देने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। जिन लोगों के हम नाम याद करते हैं वो तो हमें पता है, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके आसपास कोई भी ऐसे आपके परिजनों में से कोई हो सकता है, आपकी पूर्व पीढ़ी कोई हो सकती है, जिसमें कोई न कोई ऐसा व्यक्तित्व जिसने भारत की आज़ादी में अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया हो, हम उन्हें आज के दिन प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। मित्रों, ये दिन आसानी से नहीं मिला है, और आज के इस पवित्र दिन हमें संकल्प लेना होगा कि हम इस दिन को बनाए रखने के लिए हमारे देशवासियों को और अपने आप को किस तरीके से जो है आज़ाद नागरिक बनाए रखें, हमारे विचारों की आज़ादी, हमारी आसपास भाईचारे से जुड़ी हुई सहृदयता जो है, इन सब को लेकर के हम आगे बढ़ें और इस सुंदरता के साथ इस आज़ादी को हम बरकरार रखें, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि प्रकृति जो है उस पर भी हम अपना अधिकार करना चाहते हैं। मेरा विशेष आग्रह रहेगा आपसे कि आज हम ये संकल्प लें कि प्रकृति के ऊपर अपना अधिकार करने की कोशिश न करें, क्योंकि स्वतंत्र रह करके वो कार्य किए जा सकते हैं जो आप किसी को गुलाम बना करके या अपने अधिकार में रख करके करवाएं, उनकी तुलना में स्वतंत्रता अपने आप में भी बहुत बड़ा शब्द है। तो इसलिए आज के इस पावन दिन पर हम हर तरीके से और हर एक को स्वतंत्र होने का अधिकार है और बने रहें, और किसी को भी किसी भी तरीके से आप गुलाम बनाने की कोशिश न करें। विचारों की बात करें तो कोई भी आपके सामने बैठा व्यक्ति हो सकता है, या आपका कोई कलीग हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, बड़े ही धैर्य के साथ आप उसके विचारों को सुने, और सुनने के बाद अपने मति अनुसार उन विचारों को आप बड़े ही धैर्य के साथ तर्क के साथ जवाब रूप में उससे अपने विचार प्रस्तुत करें। तो ये बातें हम कर रहे हैं आज इस बड़े मंच और युवाणी कार्यक्रम के माध्यम से।

0: रुकते हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी है, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मणप्पुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
0: वंस अगेन वेलकम बैक दोस्तों। सीमा पर खड़ा हर जवान हमारा गुरूर है, उसकी वजह से ही हर देशवासी का चेहरा पुरनूर है। नमन करते हैं हम हमारे उन सभी वीर जवानों को, और आज के इस पवित्र दिन को समर्पित करते हैं हमारे उन सैनिकों को हम, जो हमारे देश के लिए कुर्बान हुए हैं और हमारी रक्षा के लिए जो सीमाओं पर खड़े हुए हैं, उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे, जय हिंद। तो प्यारे मित्रों, हमने बातें की आज़ादी के दिवस की, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे स्पेशल सेगमेंट की तरफ रुख करते हैं, जिसका नाम है फ़ोन करें गीत सुने। इस कार्यक्रम में आप हमें फ़ोन करते हैं और आपकी पसंद के गीत हम आपको सुनवाते हैं। तो सबसे पहले आज हमें फ़ोन किया है सरस्वती ने, बाईपास फाटक डीडवाना नागौर से। आप सुनना चाहती हैं फिल्म क्रांति का ये बेहतरीन नगमा।

श्रोताओं, फ़ोन करें गीत सुने में। अगली फरमाइश हमारे पास आई है कोमल बड़ली से, और इसके साथ साथ नाम मिला है हमें ओम प्रकाश प्रजापति। आपने हमें सुरपालिया से फ़ोन किया है और आप सुनना चाहते हैं फिल्म बॉर्डर का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।

0: जान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आप सुन रहे हैं युवाणी कार्यक्रम और फोन करें गीत सुनने में अगली फरमाइश रेखा की। डीडवाणा बाईपास नागौर से आपने फोन किया है, आप सुनना चाहते हैं ए मेरे वतन के लोगों गीत को।

0: शहीद हुए हैं।
1: कार्यक्रम में आगे हमें फरमाइश मिली है नियाज पेंटर की, लुहारपुरा से आपने हमें कॉल किया। आप सुनना चाहते हैं फिल्म देश प्रेमी का ये गीत, नफरत की लाठी तोड़ो।
2: नफरत की

अगली पसंद है मोहम्मद हुसैन की। आपने कॉल किया है गांधी चौक नागौर से। आप सुनना चाहते हैं फिल्म कर्मा का ए वतन तेरे लिए।

0: नमस्कार। संस्कार, संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का अनूठा संगम, सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़, छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए वैदिक पढ़ाई का एकमात्र संस्थान, राजस्थान का पहला बालिका वेद विद्यालय भी यही संचालित होता है। छात्र छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित पृथक पृथक छात्रावास की उत्तम सुविधा है। प्रवेश प्रारंभ है, संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।
1: आइए अब सुनते हैं फोन करें गीत सुने में अगली पसंद। कुंभाराम चावला ने हमें कॉल किया है शास्त्री नगर नागौर से। आप सुनना चाहते हैं सन ऑफ इंडिया का ये गीत नन्ना मुन्ना रही हूँ।

0: जन्म आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम दहने बाए थम नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही।
1: कार्यक्रम की अगली पसंद इकबाल खान सिंधल की। आपने कॉल किया है नागौर अजमेरी गेट से, ये सुनना चाहते हैं नया दौर फिल्म का ये गीत, ये देश है वीर जवानों का।

मित्रों, आपने सुने ये सुंदर सुंदर नगमे, और आप भी हमें फ़ोन करके अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हम अपने जिन श्रोताओं के गाने सुनवा पाए हैं और जिनके नहीं सुनवा पाए हैं, उनसे हम ये कहेंगे कि अगली बार आपके गाने ज़रूर बजवाए जाएंगे। लेकिन जिनके शेष रह गए उनके नाम इस प्रकार हैं। मोहम्मद हसन लोहारपुरा नागौर से आपने हमें फ़ोन किया, चांद मोहम्मद साहब अजमेरी गेट से आपने फ़ोन किया, पप्पू जी हलवाई, राजेश जी कुमावत और दुलीचंद जी ने तेलीवाड़ा नागौर से हमें फ़ोन किया अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए। आपने कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगली बार आप फिर से कॉल करें, आपकी पसंद का गीत हम प्राथमिकता से सुनाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का युववाणी कार्यक्रम, और अब जो है आप इस कार्यक्रम से अपने दोस्त सोम कविया को इन पंक्तियों के साथ इजाज़त दें। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की माटी तुझे कुछ और भी दूँ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी नागौर का जिरमी चैनल है। शाम के 5:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम पणिहारी।

0: आज़ादी री हवा में वीरारी कुर्बानी रो मान है। तिरंगो मारी शान, मारो देश मारी पहचान है। इन पावन दिन एक दिल में बात आ धर लेवा, जिंदगी जेड़ी भी हो मुस्कान सु जीणो सीख लेवा। कार्यक्रम सुनने वाली मारी गांव गवाड़ी प्यारी बहना ने और खेत खलिहान में मेहनत करन वाली मारी प्यारी बहना ने धीरज लाल नीचारो घणो और घणो हेत भरो राम राम और आज़ादी रे इर पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनावा। बहना आज देखो बहना, हवा के मायने जिया तिरंगा जो को रंग है वो घुलियोडो लागे है कि नहीं। गांव री चौपाल सुलेर शहर की गलियां तक देशभक्ति रो रंग छायोड़ो है। कोई रे हाथ में तिरंगो है तो कोई रे होटा माते देशभक्ति रा गीत गाई जे है। और हर भारतीय रे दिल में एक ही आवाज है, मारो देश मारी शान। आज आपनो राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस है और आज रे दिन बे वीर सपूता ने याद करण को दिन है, जका आप रे जीवन रो बलिदान देर आपा ने आज़ादी रो सूरज दिखायो। बे की कुर्बानियां री वजह सु ही आपा खुली हवा में सांस ले सका, अपने मन री बात कह सका। और आज़ादी तो अपने आप में ही अनमोल है कि नहीं बहना। बहना आज़ादी री लड़ाई के मायने ग्रामीण महिलाओं को भी खास योगदान हो तो ई खास योगदान ने आपा एक वार्ता के माध्यम से सुना ला बहना। और जका की वार्ताकार है वर्षा स्वामी, तो सुना बहना आ वार्ता।
1: इतिहास के पन्नों में अक्सर महलों के नाम ही आते हैं, पर देश की आज़ादी में खेतों के हिस्से भी आते हैं। जिन्होंने चूल्हा चौका छोड़ आज़ादी की मशाल थामी, आज उन ग्रामीण वीरांगनाओं को हम सब मिलकर शीश झुकाते हैं। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन में गाँव की भूमिका और गाँव में भी हमारी ग्रामीण वीरांगनाओं की। जी हाँ, जब जब इतिहास लिखा जाता है तो महलों की रानियों और बड़े बड़े नगरों के आंदोलनकारियों का जिक्र तो

खुलकर होता है, लेकिन आज हम हमारी गाँव में बसने वाली हमारी आज़ादी की असली रीढ़ यानी साधारण ग्रामीण महिलाएं, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ देश पर न्यौछावर कर दिया। वो दौर ऐसा था जब ग्रामीण अंचलों में शिक्षा का उजाला नहीं था, पर्दा प्रथा और रूढ़िवादिता का कड़ा पहरा था। जब गांधी जी ने देश को जगाया तो हमारी ये ग्रामीण बहनें घूंघट की ओट से निकलकर स्वाधीनता के समर में कूद पड़ी। उन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, चरखा चलाकर खादी को अपनाया और आत्मनिर्भर भारत के गांधी जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। गांधी जी की इन्हीं बातों को समझते हुए हमारी ग्रामीण मातृशक्ति ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया, भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान भी किया, प्रभात फेरियां भी निकाली और अपने घर परिवार में देशभक्ति की भावना भी जगाई। हमारी ये वीरांगनाएं घूंघट में रहकर भी देश के लिए कदम से कदम मिलाती हुई आगे बढ़ी, स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया और कई अनाम ग्रामीण महिलाओं को इन्होंने अपने साथ लिया। इन्हीं हमारी स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के एक साधारण परिवार में जन्मी मातंगिनी हाजरा की। ये 72 वर्ष की आयु में तिरंगा लेकर अंग्रेजों के सामने डटकर खड़ी रही। गोली लगने के बाद भी इनके हाथ से तिरंगा नहीं छूटा और ये वंदे मातरम कहते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। 100-100 बार नमन और वंदन करते हैं इनको। और अब बात करते हैं एक और वीरांगना की। ये वीरांगना है असम की कनकलता बरुआ, जिन्होंने मात्र 17 वर्ष की आयु में तिरंगा फहराने का प्रयास किया। अंग्रेजों की गोलियां भी इनके हौसले को नहीं रोक सकी और इन्होंने मरते दम तक तिरंगे को जमीन पर नहीं गिरने दिया। इन्हें असम की लक्ष्मीबाई और सबसे कम उम्र के शहीद के रूप में भी जाना जाता है। इन वीरांगनाओं के बारे में जितना कहा जाए कम है, कहने को शब्द भी नहीं मिल पा रहे हैं, यानी कि इनकी वीरता को हम शब्दों से बखान ही नहीं कर पा रहे हैं। ये गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रही, ये भले ही किसी पद या नाम से सामने ना आ सकी, पर हमारे आंदोलनों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई। इन्होंने तो आज़ादी के संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के लिए रोटियां भी बनाई, यानी कि भोजन और रसद की व्यवस्था भी इन्होंने की और गुप्त रूप से सूचनाएं देने का काम भी हमारी इस ग्रामीण मातृशक्ति ने किया, ताकि हमारे जो सेनानी हैं उनका ध्यान सिर्फ आज़ादी की तरफ रहे। इन्हीं वीर बालाओं की अगली कड़ी में अब हम आपको बता रहे हैं रानी गैदिनल्यू के बारे में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर पूर्व भारत की वीरांगना रानी गैदिनल्यू का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। एक साधारण ग्रामीण जनजातीय परिवार में जन्मी गैदिनल्यू ने न सिर्फ 13 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का मार्ग चुना, बल्कि उन्होंने अपने लोगों को संगठित भी किया। उन्होंने विदेशी शासन का डटकर विरोध किया। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी, लेकिन फिर भी वह डरी नहीं, ना ही उनका साहस टूटा। स्वतंत्रता के बाद उन्हें रिहा किया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू इनकी वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें रानी की उपाधि देकर सम्मानित भी किया। सखियों, जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तब हम महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, कस्तूरबा गांधी जैसे महान सेनानियों के नाम तो याद करते हैं, लेकिन हमने कई अन

असंख्य महिलाओं को नहीं जाना, इसीलिए स्वतंत्रता में ग्रामीण महिलाओं के योगदान की आज हम बात कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अब नाम आता है झलकारी बाई का, जो कि झांसी के भोजला नामक गांव में साधारण कोली परिवार से ताल्लुक रखती थी। इस वीरांगना ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना दुर्गा दल में रहकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। संकट की घड़ी में इन्होंने स्वयं को रानी लक्ष्मीबाई के रूप में प्रस्तुत कर अंग्रेजों को भ्रमित कर दिया। उनके इस त्याग और वीरता के कारण रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित निकल सकी और अपना संघर्ष जारी रख सकी। हूबहू रानी लक्ष्मीबाई जैसी दिखने वाली झलकारी बाई का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा देश प्रेम किसी पद या वैभव का नहीं, बल्कि साहस, निष्ठा और बलिदान का परिचायक होता है। बुंदेलखंड के लोक गीतों में झलकारी बाई के लिए आज भी गाया जाता है, खूब लड़ी झलकारी तो मत वाली मर्दानी थी, झांसी की रानी की जैसी तुम भी वीर सेनानी थी। यहाँ तक तो सखियो हमने भारत की ग्रामीण वीरांगनाओं का आजादी में जो योगदान था उसकी चर्चा की। अब हम आपको ले चलते हैं वीरों की भूमि यानी कि राजस्थान की तरफ। आज़ादी में राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं के योगदान की हम बात करेंगे। सखियों, आपको बता देते हैं कि राजस्थान के इतिहास में पन्ना धाइक का त्याग, रानी पद्मिनी का स्वाभिमान, हाड़ी रानी का बलिदान और अमृता देवी विश्नोई का प्रकृति एवं संस्कृति के प्रति समर्पण आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। राजस्थान की ऐसी ही प्रेरणादायी महिला है जानकी देवी बजाज। उन्होंने गांधी जी के विचारों को अपनाते हुए ग्रामीण महिलाओं को स्वदेशी, खादी और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। उन्होंने महिलाओं को सामाजिक कुरीतियों से मुक्त होकर राष्ट्र निर्माण में भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया। इन्हीं की तरह एक और वीरांगना है अंजना देवी चौधरी। इन्होंने बिचौलिया किसान आंदोलन में ग्रामीण महिलाओं का नेतृत्व किया। उन्होंने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई और यह सिद्ध किया कि ग्रामीण नारी केवल परिवार की संरक्षक ही नहीं बल्कि समाज परिवर्तन की अग्रदूत भी है। कण कण शु मरुधरारी वीर तारी गूंज उठे, घूंघटरी ओर सु निकली रणचंडी बंडट उठे, पन्ना हाड़ी अमृता काली त्यागरी अमर मिसाल, आजादी और स्वाभिमान खातर लिखगी इतिहास कमाल। जी हाँ सखियों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के डूंगरपुर की आदिवासी बालिका काली बाई भील की। उन्होंने वर्ष 1947 में जब अंग्रेजी शासन और रियासती प्रशासन शिक्षा के प्रसार का विरोध कर रहे थे, तब कालीबाई के गुरु सेंगा भाई को गिरफ्तार कर रस्सियों से बांधकर गाड़ी से घसीटा जा रहा था। यह दर्दनाक दृश्य कालीबाई नहीं देख सकी और उन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बिना दरांती से वह रस्सी काट दी। अंग्रेज सैनिकों ने कालीबाई के इस साहस से क्रोधित होकर उन पर गोली चला दी। गोली लगने से यह वीरांगना, यह वीर बालिका शहीद हो गई, लेकिन उनका साहस और बलिदान अमर होने के साथ साथ आज भी हमें प्रेरणा देता है। राजस्थान की ग्रामीण वीरांगनाओं की इस कड़ी में एक और महान नाम आता है, नारायणी देवी वर्मा का। साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने सुदूर ग्रामीण अंचलों में विद्रोह की आग भड़का दी। जब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया तब उनकी गोद में एक छोटा सा दूध मुहा बच्चा था।
वे अपने उस मासूम बच्चे को गोद में लेकर हंसते हंसते जेल चली गई।

0: तो सखियो, हमने जाना हमारा स्वाधीनता संग्राम केवल वीर पुरुषों के संघर्ष का ही परिणाम नहीं था, बल्कि इसमें असंख्य अनाम ग्रामीण महिलाओं का योगदान भी था। हम सभी ग्रामीण मातृशक्ति के बारे में यहाँ बात नहीं कर सके, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि गांव की इन वीरांगनाओं ने हमें संदेश दिया कि जब जब देश पुकारता है, तब तब गांव की साधारण महिला भी असाधारण इतिहास रच देती है। आइए हम उनके त्याग, साहस और देशभक्ति को नमन करें तथा उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ। जय हिंद।
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
6: तो बहना, अबार आपा सुनी कि भई आजादी री लड़ाई के मायने ग्रामीण महिलाओं को काई योगदान हो। तो बहना, जद आजादी रो पावन दिन है, तो आपा अपनी माटी ने याद करा और अपनी धरती धोरा धोरारी ने भी ने याद करा। तो सुना बहना उप्यारो सु गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
6: तो बहना, आपा बात कर रही हा आज़ादी के पर्व की। तो बहना देखो, देश तो आज़ाद हुई को है, पर आपानो जो को मन है ना, वो हाल भी देखो किया कदी कदी कैद के मायने आ जावे है। अब थे सोचता होला कि कैद कें की कैद? देखो बहना, कैद जकी है आ है एड़ो एक अपन मन के मायने डर समायड़ो है। कोई भी काम करण सु पहला आपा पहले ही डर जावा, सोचा हाँ कि वो काम सही ढंग से होवेला कि नहीं होवेला। जको डर आपने हर बार रोक लेवे कुछ भी नयो करण सु, है ना। और आपा कैद हाँ भी चिंता की, जिकी चिंता आपने रोके कि अगर आपा वो काम करा ला तो कटी बिगड़ गयो तो पछा कहीं होवेला, लोग कहीं केवेला। देखो बेना, कई बार आपने सामे असफलता भी आडी फिर जावे और आपने रोक देवे और आपने मन के मायने इतना नकारात्मक विचार भी भर देवे कि आपा सोचा हाँ कि भगवान मारे साथ ही यान को क्यों करियो है। तो देखो बेना, आज की नकारात्मकता है आ आपने हर काम सु रोक लेवे है। तो मन के मायने आपा एक एड़ी सोच भरा जो को आपने कुछ नया काम करण वास्ते आगे बढ़ावे, हौसलों प्रदान करे है। तो बहना, ये कैद सु आपने आज के दिन ही आज़ाद होना है और एक मन के मायने संकल्प लेवनो है कि मैं खुद ने कमजोर कोनी मानू और मुश्किलों सु भी मैं डरूला नहीं, दूसरा सु खुदरी तुलना नहीं करूँगा और जिंदगी ने एक सकारात्मक नजरियो जरूर देऊँगा। तो देखो बेना, अगर आपा एक सकारात्मक सोच रखा ला तो अपन मन ने भी आपा आज़ादी दे सकाला। डर सूँ, निराशा सूँ, हीन भावना सूँ और सगड़ों ज़्यादा नकारात्मकता जगी है आ आपने कुछ भी नयो करण सु अपने हर बार रोक लेवे। तो देखो बेना, अगर सकारात्मक सोच रेवेला तो जिंदगी भी बदल सी। और बहना, आज जकी 15 अगस्त री गोरु मई जो को दिन है, तो देशभक्ति री भावना रे बीच आपा वो प्रयास करा हाँ कि अपनी जिंदगी री आज़ादी री सोच ने एक ने भी एक बढ़िया तरीका सु नयो कुछ करण को प्रयास करा हाँ। आपने आज की सोच है आ गिरण के बाद उठन की हिम्मत देवे है, एक उम्मीद देवे जकी आपने अंधेरा के मायने उजास दिखावे है, एक विश्वास सु भरे है और कहवे कि मुश्किला घनी है लेकिन हिम्मत मत हार, तू कर सके है। तो जीवन के मायने आ सकारात्मक जकी सोच है आ आपने भरनी चाहिए बेना। और परेशानी तो देखो बेना, हर इंसान के सामने खुला हाथा सु खड़ी है, पर परीक्षा आपानी आ भी है कि आपा ई परीक्षा की घड़ी के मायने किया सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ा हम। बहना, आंधी आवे तो हमेशा हौसला रो जो को दियो है वो बुझावण नहीं देनो है। राह कठिन है तो भी पग रोकनो को नहीं है। जिंदगी चाहे कितनी भी परीक्षा ले लेवे, वो उम्मीद रो दामन छोड़नो को नहीं है। तो बहना, ये प्यारी सी बात के साथ ही अब थांकी बहन धीरज लाल ने जाने दिराओ सीख कराहा बहना। राम राम।

आज जिरमी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बज रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है।
1: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया है, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है।
1: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों, शहरों और स्कूलों में 15 वर्ष तक के मेधावी बच्चों की पहचान के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के राज्यपाल CH विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में सरकार स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक एट होम समारोह का आयोजन किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। लातविया ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और समृद्धि की कामना की। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप के तट के पास आज आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत 7वीं ब्रिक्स ICT कार्य समूह की

0: बैठक से होगी। 20 अगस्त को भारत डिजिटल ब्रिक्स फोरम और एक्सपो की मेजबानी करेगा। और खेलों में गोल में श्रीलंका के साथ दो मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक आज भारत ने दो विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। उधर नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन ने एफआईएच हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में भारत और वेल्स के बीच मुकाबला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल को। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म आंखें के इस गीत के साथ, जिसमें आवाज है मोहम्मद रफी की, शब्द रचना साहिर लुधियानवी की और संगीत रवि का है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: फिल्म संगीत का अगला गीत आपके लिए फिल्म प्रेम पुजारी से, आवाजें हैं मोहम्मद रफी, मन्ना डे और साथियों की।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही हैं, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का एसडी कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
2: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से। अगला गीत आपके लिए फिल्म फूल बने अंगारे से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है।

इसी गीत के साथ हमारा आज का ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुन पा रहे हैं सीमा मिश्रा और साथियों की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: संस्कार, संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का अनूठा संगम, सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़, छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए वैदिक पढ़ाई का एकमात्र संस्थान, राजस्थान का पहला बालिका वेद विद्यालय भी यहीं संचालित होता है। छात्र छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित पृथक पृथक छात्रावास की उत्तम सुविधा है। प्रवेश प्रारंभ है, संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: माटी के स्वर कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति आपके लिए सीमा मिश्रा और साथियों की आवाज में।

इसी गीत के साथ हमारा आज का ये माटी का स्वर कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं शाम के

6:30 हो रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद होगी जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। इन समाचारों को हम आकाशवाणी जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कई घोषणाएं की। प्रदेश भर में स्वाधीनता दिवस का उल्लास। बीकानेर में हुए राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, विकसित राजस्थान 2047 के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। राज्य को 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे। और हरियाली तेज, आज राजधानी जयपुर में निकाली जा रही है तेज माता की शाही सवारी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। श्रोताओं, आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। और अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है और कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में कामयाब रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने कोविड महामारी, यूक्रेन तथा पश्चिम एशिया संकट जैसी चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के नागरिक देवो भव सिद्धांत के कारण पिछले दशक में ऐसी व्यवस्थाएं की गई जो संकट काल में कारगर साबित हुई।
1: इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई। और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले एक साल में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया गया है। इससे देश को एआई के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में मदद मिलेगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गांवों, शहरों और स्कूलों में 15 साल तक के मेधावी बच्चों की पहचान के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा और चुने गए बच्चों को अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत खेल की दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है और 2030 में भारत राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा।
1: स्पोर्ट की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती।
0: प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस कदम से बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा मिलने के साथ ही मध्यम वर्गीय परिवारों में कोचिंग पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए की बचत होगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि ये महिलाओं के सम्मान का विषय है।
1: जल्द से जल्द

0: हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: इधर प्रदेश भर में भी राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस का उल्लास चरम पर रहा। स्वाधीनता दिवस का राज्यस्तरीय समारोह बीकानेर में आयोजित किया गया। करणी सिंह स्टेडियम में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झंडारोहण किया। प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की डिजिटल क्रांति और UPI पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही है। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
2: आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि 2047 में विकसित भारत का सपना साकार होगा। 2047 का राजस्थान भारत का अग्रणी राज्य होगा और जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरा करेगा तब तिरंगा दुनिया के शिखर पर भारत के गौरव और सामर्थ्य और आत्मविश्वास का प्रतीक बनकर के लहरा रहा होगा।
1: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जयपुर स्थित लोकभवन में झंडारोहण किया। इस मौके पर राज्यपाल ने युवाओं से संस्कार, अनुशासन और राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विकसित राजस्थान के निर्माण में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। राजधानी जयपुर में जिलास्तरीय समारोह चौगान स्टेडियम में हुआ। समारोह में सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने ध्वजारोहण किया। इससे पहले उन्होंने अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में ध्वज फहराया। साथ ही सभी जिला मुख्यालयों पर भी स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। विभिन्न जिला मुख्यालयों पर हुए समारोह में मंत्रियों और जिला कलेक्टरों ने ध्वजारोहण किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अजमेर और उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने भीलवाड़ा में राष्ट्र ध्वज फहराया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पार्टी प्रदेश कार्यालय में झंडारोहण किया। कांग्रेस कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा आज बीकानेर में युवा संवाद विकसित राजस्थान 2047 कार्यक्रम में युवाओं से भी रूबरू हुए। जिले के जल विज्ञान और जल प्रबंधन संस्थान में हुए इस कार्यक्रम में श्री शर्मा ने कहा कि युवा शक्ति के विचार, नवाचार, कौशल और उद्यमिता विकसित प्रदेश के आधार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है। इसके लिए राजस्थान युवा नीति सहित 36 नीतियां लाई गई हैं और स्टार्टअप तथा स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रदेश के लिए 12,112 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज उदयपुर पहुंचेंगे और महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर श्री शाह की अगुवाई करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: अपने प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चित्तौड़गढ़ और अलवर जिलों में 1,877 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। किसानों को सम्मान निधि की 667 करोड़ रुपए की राशि DBT करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 152 करोड़ रुपए की राशि किसानों के सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। श्री शाह 10,500 से ज्यादा अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके अलावा सरस डेयरी के 200 करोड़ रुपए के नए प्लांट का शिलान्यास और मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह कल निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में 442 कार्यों का शिलान्यास और 502 कामों का लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री निम्बाहेड़ा के अंबेडकर राजकीय कॉलेज में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। समाचार कक्ष से डॉक्टर ज्योति पारीक।
1: जयपुर में आज नारी शक्ति सम्मान उत्सव का आयोजन किया गया। सक्षम नारी, स्वस्थ बचपन और समृद्ध राजस्थान की थीम पर हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और पोषण पर जोर देना था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित

0: किया। इस मौके पर उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और साथिनों को रक्षाबंधन का उपहार दिया। श्री शर्मा ने कहा कि महिलाएं बेहतर समाज और मजबूत राष्ट्र की नींव है और सरकार महिलाओं की बेहतर शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रहीं। प्रदेश भर में आज हरियाली तीज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महिलाओं के इस विशेष पर्व पर पर्यटन विभाग की ओर से राजधानी जयपुर में तीज माता की शाही सवारी निकाली जा रही है। बैंड बाजों और शाही लवाजमे के साथ जनानी ड्यूटी से निकली इस सवारी के लिए प्रशासन ने यातायात के विशेष इंतजाम किए हैं। इसी कड़ी में कल बूढ़ी तीज की सवारी निकाली जाएगी। सावन के पवित्र महीने की तीज को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना की जाती है। तीज पर मेहंदी लगानी, झूला झूलने और लोक गीतों का भी विशेष महत्व है। प्रदेश में तेज बारिश का दौर कमजोर पड़ गया है, हालांकि कुछ स्थानों पर बरसात हुई है। सवाई माधोपुर में आज तेज बरसात हुई, जबकि राजधानी जयपुर में बादल छाए रहे। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार राज्य में 18 अगस्त तक पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। जयपुर और भरतपुर संभाग के लिए बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई गई है। इससे प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में फिलहाल कमी रहने के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कई घोषणाएं की। प्रदेश भर में स्वाधीनता दिवस का उल्लास। बीकानेर में हुए राज्यस्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, विकसित राजस्थान 2047 के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। राज्य को 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे। और हरियाली तीज आज राजधानी जयपुर में निकाली जा रही है तीज माता की शाही सवारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से झालावाड़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। आप सभी को स्वाधीनता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज झालावाड़ में जिला स्तरीय समारोह राजकीय खेल संकुल में आयोजित हुआ। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर परेड का निरीक्षण भी किया। इसके बाद पुलिस, होमगार्ड और विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के दलों ने मार्च पास्ट किया। उसके बाद समारोह में राज्यपाल के संदेश का पठन किया गया तथा शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। साथ ही उत्कृष्ट काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रतिभाओं को पुरस्कार और प्रशंसा पत्र दिए गए। इससे पहले जिला कलेक्टर ने शहीद निर्भय सिंह सिसोदिया और विजया राजे सिंधिया की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार पुलिस की ओर से विशेष पुलिस पराक्रम कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। इसमें जवानों ने राइफल प्रदर्शन, विभिन्न प्रकार के पिरामिड बनाने, आग के गोलों से निकलने सहित साहसिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया। समारोह में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के करीब 1100 बच्चों ने सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन किया। वहीं 300 बालिकाओं ने सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जिले के कालीसिंध बांध पर तिरंगे के रंगों से रोशनी की गई। रात के अंधेरे में केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी से सजा बांध और जलाशय का नजारा देखते ही बना। इस आकर्षक नजारे को देखने के लिए शहरवासी उमड़ पड़े। इसी कड़ी में शहर का पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। जिला प्रशासन और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से आयोजित देशभक्ति

0: सांस्कृतिक संध्या में जिले के विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों ने गीत, नृत्य और अभिनय के माध्यम से राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। प्रस्तुतियों के दौरान ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। जिले के झालरापाटन में पिछले दिनों फॉलो अप शहरी सेवा शिविर लगाया गया। इसमें सालों से लंबित 114 पट्टे वितरित किए गए। इनमें पुराने लंबित मामलों के साथ नए आवेदनों पर भी त्वरित कार्रवाई की गई। शिविर में जिला कलेक्टर ने लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन आमजन की समस्याओं के जल्द समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों से भी आवेदन करने की अपील की जिन्होंने अभी तक पट्टे के लिए आवेदन नहीं किया है। पारंपरिक हस्तकरघा बुनाई कला को प्रोत्साहन देने और उत्कृष्ट बुनकरों को सम्मानित करने के उद्देश्य से पिछले दिनों जिला स्तरीय बुनकर पुरस्कार चयन समिति की बैठक हुई। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार किया गया और विभिन्न श्रेणियों में श्रेष्ठ उत्पादों का चयन भी किया गया। जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक ने बताया कि बुनकर पुरस्कार योजना के तहत कुल 9 आवेदनों के साथ उत्पाद प्राप्त हुए थे। चयन समिति ने सभी उत्पादों का गुणवत्ता, डिजाइन, पारंपरिक शिल्पकला और नवाचार के आधार पर परीक्षण कर विजेताओं का चयन किया है। पिछले दिनों राज्य सरकार द्वारा संचालित हाई रिस्क प्रेगनेंसी सघन मॉनिटरिंग अभियान शुरू किया गया। इसके तहत जिला कलेक्टर ने ग्राम रलायता में हाई रिस्क प्रेगनेंसी से चिन्हित गर्भवती महिला के घर पहुंचकर गोद भराई रस्म का शुभारंभ किया। जिले में वन्य जीवों के संरक्षण और अवैध शिकार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए वन विभाग ने सघन अभियान चलाया। अभियान के तहत वन विभाग की टीम ने जीवित तीतर, तोते, शिकार में प्रयुक्त फंदे, पिंजरे और एक मोटरसाइकिल जब्त कर आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। ये कार्रवाई वन विभाग की ओर से की गई है। जिले में मॉनसून के दौरान संभावित बाढ़, अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए और राहत बचाव कार्यों की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। झालरापाटन स्थित गोमती सागर तालाब पर हुई इस मॉक ड्रिल में SDRF, NDRF और भारतीय सेना की ओर से जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने भाग लिया। इसी के साथ झालावाड़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर रूपे से सिंचा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किलारी प्राचीरू देश ने संबोधित करया। प्रदेश भर में स्वाधीनता दिवस रो उमाव चरम माथे रियो। बीकानेर में विया राज्य थर्रा जलसा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कयो विकसित राजस्थान 2047 सारू सरकार बरोबर कोशिश में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काले प्रदेश रा दौरा माथे रहवेला। राज्य ने 12,112 करोड़ रुपया रा विकास कमारी सौगात देवेला। और हरियाली तीज आज राजधानी जयपुर में निकाली जा रही है तीजरी शाही सवारी। समाचार रे साथ है मैं शंभू सिंह। सुनन वाला सगला ने 80वां स्वतंत्रता दिवस री घनी घनी शुभकामनावां। और अब समाचार विगतवार। देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रियो है। ई मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किलारी प्राचीरू देशवासियों ने संबोधित करया। ई मौके पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम रो गायन वियो। इस साल रो आयोजन माय 2047 रा विकसित भारत बनावण माय युवा शक्ति री भूमिका माथे जोर दिरिजियो। प्रधानमंत्री कयो के लाडला 12 साला माय करोड़ों देशवासियों रा संकल्प समर्पण हर हर होती कोशिश री बदौलत देश ने नई ऊंचाइयां ने छू लियो है। एर के करड़ा संकटों बारे निकलण माय कामयाबी रियो है। श्री मोदी कयो के तयशुदा नीतियां, तैयारियां और भगत सर उठाई जा कदमा रे कारण देश कोविड महामारी, यूक्रेन और पश्चिमी एशिया संकट जैसे चुनौतियां रो डट ने मुकाबलो करियो। प्रधानमंत्री कयो के सरकार नागरिक देवो भव सिद्धांत रे कारण लाडला दशक माय इन तरह रा बंदोबस्त करया है जो संकट काल माय कारगर साबित हुआ है।
2: इतने बड़े संकट के बावजूद

0: नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे।
1: प्रधानमंत्री कहो के आपता एक साल में 1 करोड़ नौजवानों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में सीखने रो फैसलो ले लीजो है। इनू देश ने AI हलका में अगाड़ी बनावण में मदद मिलेला। ई मौके वणा कहो के गांव शहर स्कूल में 15 साल तई रा हुनरवान टाबरा री पिछाण करण सारू प्रतिभा खोज अभियान चलाओ जायला और चुनिया टाबरा ने अच्छा खिलाड़ी बनावण सारू सिखावण दी जायला। श्री मोदी कहो के भारत खेल री दुनिया में आप री पिछाण बनारियो है और साल 2030 में भारत राष्ट्रमंडल खेलों री मेजबानी करेला।
0: स्पोर्ट की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती।
1: प्रधानमंत्री गरीब और मसला तबका रा पिरवाना रा टाबना सारू मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और आता एक साल में 1 करोड़ नौजवानों ने AI कौशल सिखाउन देवन रो ऐलान करियो। वणा कहो कि ई कदम टाबरा ने ऊंचा थरी शिक्षा मिलन रे साथ ही मसला तबका रा पिरवाना में कोचिंग माथे खर्च होने वाला करोड़ों रुपया की बचती वेला। ई मौके प्रधानमंत्री संसद राज्य विधानसभा में 33% महिला आरक्षण सारू सगला राजनीतिक दलों मदद री अर्ज करी। वणा कहो कि ओ महिलावां रा सम्मान रो मुद्दो है और देश रा नीति बनावण में योगदान रो मौको महिलावां ने दियो जावणो चाहिजे।
0: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: अठिने प्रदेश में राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस रो उमाव चरम माथे रियो। स्वाधीनता दिवस रो राज्य थर रो जलसो बीकानेर में भी हो। करणी सिंह स्टेडियम में भी एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ध्वजारोहण करियो। प्रदेशवासियों ने संबोधित करता मुख्यमंत्री कहो कि भारत री डिजिटल क्रांति और UPI पूरी दुनिया में आप रो परचम लहरा रही है। वणा कहो कि विकसित राजस्थान 2047 सारू राज्य सरकार बरोबर कोशिश कर रही है।
2: आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि 2047 में विकसित भारत का सपना साकार होगा। 2047 का राजस्थान भारत का अग्रणी राज्य होगा और जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरा करेगा तब तिरंगा दुनिया के शिखर पर भारत के गौरव और सामर्थ्य और आत्मविश्वास का प्रतीक बनकर के लहरा रहा होगा।
1: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जयपुरा लोक भवन में झंडारोहण करियो। ई मौके राज्यपाल नौजवानों संस्कार अनुशासन राष्ट्रहित ने ठावी प्राथमिकता देवता विकसित राजस्थान बनावण में भागीदारी निभावण री अर्ज करी। राजधानी जयपुर में जिला थर जलसो चौगान स्टेडियम में भी हो। जलसा में सैनिक कल्याण महकमा रा मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ध्वजारोहण करियो और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा ने सलामी दी। इनु पहला वणा अमर जवान ज्योति माते पुष्प चक्र अर्पण करने शहीदा ने नमन करियो। जलसा में न्यारा न्यारा हल्का में ठावा काम करण वाला 37 प्रतिभावां रो सम्मानी करीजियो। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी विधानसभा में झंडारोहण करियो। साथ ही सगला जिला मुख्यालय माथे ध्वज स्वतंत्रता दिवस जलसा पूर्ण मनाई जो। न्यारा न्यारा जिला मुख्यालय माथे व्या जलसा में न्यारा न्यारा मंत्री ध्वजारोहण करियो। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद वेरवा भीलवाड़ा में राष्ट्रीय ध्वज फहरायो। कई जिला में जिला कलेक्टर ध्वजारोहण करियो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पार्टी प्रदेश दफ्तर में झंडारोहण करियो। वठई प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तिरंगो फहरायो। स्वतंत्रता दिवस रे मौके न्यारा न्यारा शैक्षणिक संस्थान में सांस्कृतिक कार्यक्रमारोह आयोजन करीजियो। मुख्यमंत्री आज बीकानेर में युवा संवाद विकसित राजस्थान 2047 कार्यक्रम में नौजवान शामिल बतल करी। ओ कार्यक्रम जिला रा जल विज्ञान और जल प्रबंधन संस्थान में भी हो। ई कार्यक्रम में श्री शर्मा कहो कि युवा शक्ति रा विचार नवाचार कौशल उद्यमिता विकसित प्रदेश रा आधार है।

0: ਵਣਾ ਕਹਿਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੋ ਲਗਸ ਪਰਦੇਸਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣੋ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਯੁਵਾ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ 36 ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਈ ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਔਰ ਸਵਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਵਧਾਓ ਦਿਓ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੇ 5 ਈ ਬਸਾਰੀ ਸੌਗਾਤੀ ਦੀ। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल एट द रेट ऑफ AIR न्यूज अंडर स्कोर जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान माथे ही सुन सको हो। इनके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in माथे ही समाचार सुन सको हो और ई बारा में फोटो और वीडियो ही देख सको हो। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह काले प्रदेशरा दौरा माथे रेवेला। ई दौरान वे प्रदेश आरू 12,112 करोड़ रुपया रा विकास कामारी सौगाती देवेला। ई कड़ी माय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज उदयपुर पुगेला और महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक पूग ने श्री सारी अगवाई करेला। एक रिपोर्ट।
1: आपरा प्रवास रे दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चित्तौड़गढ़ और अलवर जिला माए 1,877 विकास कामारी नींव राखेला और लोकार्पण करेला। काश्तकारा ने सम्मान निधि री 667 करोड़ रुपयारी रकम डीबीटी करेला। साथ है ई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे तहत 152 करोड़ रुपयारी रकम सीधा बैंक खाता माए भेजी जाएला। श्री शाह 10,532 लोगा ने सरकारी नौकरी रा नियुक्ति पत्र सौंपेला। इनरे अलावा सरस डेरी रा 200 करोड़ रुपया रा नुवा प्लांटरी नींव राखेला और वाको मेडिकल कॉलेज रो लोकार्पण करण रो ई कार्यक्रम है। श्री शाह काले निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ माए 442 कामारी नींव राखेला और 502 कामारो लोकार्पण करेला। ई मौके केंद्रीय मंत्री निम्बाहेड़ा रा अंबेडकर राजकीय कॉलेज माए पहली रा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पुण्यतिथि माथे वारी मूर्त रो अनावरण करेला। समाचार कक्ष सु मैं डॉक्टर ज्योति पारीक।
0: स्वतंत्रता दिवस माथे जयपुर माए नारी शक्ति सम्मान उत्सव रो आयोजन करीजियो। सक्षम नारी स्वस्थ बचपन समृद्ध राजस्थान री थीम माथे विया ई कार्यक्रम रो मकसद महिला मरा स्वास्थ्य हिफाजत और पोषण माथे जोर देवण हो। कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा विविध हल्का माए उत्कृष्ट काम करण वाली महिलावां ने सम्मानित करिया। ई मौके वणा आंगनबाड़ी कार्यकर्तावां सहायिकावां और साथीनां ने रक्षाबंधन रा निजराणा दिया। कार्यक्रम माए महिला स्वास्थ्य जुड़ी पोथियां रो विमोचन करिजियो। ई मौके श्री शर्मा कहो कि महिलावां चोखा समाज और मजबूत देश री नींव है और सरकार महिलावां री आछी शिक्षा और सुविधावां ने मजबूत बनावण सारू प्रतिबद्ध है। जलसा माए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मौजूद री। प्रदेश माए आज हरियाली तीज रो त्यौहार हरक और उमावरे साथ मनायो जावे। महिलावां रो ई खास त्यौहार माथे सैलानी महकमा कानियो राजधानी जयपुर माए तीज री सवारी निकाली जावे। बैंड बाजा और शाही लवाजमा रे साथ जनानी डोडियो निकली इस सवारी माए प्रशासन यातायात रा खास प्रबंध करिया है। ई कड़ी माए काले बूढ़ी तीज री सवारी निकाली जाएला। सावण रा पवित्र मीनारी तीज ने हरियाली तीज रा रूप माए मनाई जावे है। ई दिन अखंड सौभाग्य सुखी ग्रस्त जीवन री कामना करी जावे। तीज माते मेहंदी लगावण झूला झूलण और लोकगीतों रो एक खास महत्व है। प्रदेश माए तेज बिरखा रो दौर कमजोर पड़ गयो है। फेरों कुछ हल्का माए बिरखा दर्ज करी जी है। सवाई माधोपुर माए बिरखा भी जबकि राजधानी जयपुर माए बादल छाई जा रिया। ई बीच मौसम महकमो आज प्रदेश रा 18 जिला माए बिरखारो येलो अलर्ट काढ़ियो है। महकमा मुजब राज्य माए 18 अगस्त ताई अगुणी राजस्थान रा कुछ हल्का माए हल्काऊ मजला दर्जारी बिरखा वह सके है। जयपुर और भरतपुर संभाग रा कुछ जगह येलो अलर्ट रेलो। वठे जोधपुर कोटा उदयपुर अजमेर और बीकानेर संभाग रा घनकरा हल्का माए मौसम साफ रेवण री आस है। न अबे आखिर माए खास समाचार आप एक कर फिर सुन ली रहो। राष्ट्र आज 80वो स्वतंत्रता दिवस मना रियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किलारी प्राचीरू देश ने संबोधित करिया। प्रदेश भर माए स्वाधीनता दिवस रो उमाव चरम माथे रियो। बीकानेर माए विया राज्य थर्रा जलसा माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो विकसित राजस्थान 2047 सरकार बरोबर कोशिश माए। केंद्रीय गृह

7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 7 बजे हैं। अब आप सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: मैली धोती खुली है काया, करे जो मेहनत कदे लालच में ना आया। बे टूटी छपरी में भी होवे कोनी परेशान, अन्नदाता कहलावे है ए अपना किसान। किसान वाणी सुनबाड़ा सगला काश्तकार भाई बहना ने, श्रोतावा ने, चंचलरो ने भरियो मीठो मीठो राम राम। और सगला बड़ा बूढ़ा, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मौसी, बहन भाईली, बुआ, सब ने ढोगरज है सा। आदिति आपने भी घने मानू ढोग है सा। राम राम सा।
7: राम राम सा चंचल बहन और सुनबाड़ा सगला श्रोतावा ने, आदिति भट्टरो ने भरियो नमस्कार और राम राम सा।
6: आज तो आपा दो लूठा जो है त्योहार मना रहा है।
7: जी सर।
6: भाई राजस्थान की धरती में तो तीज को महत्व है ही है, और भारत भूमि के ताई जो आपा 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है।
7: जी सर।
6: मन मन में एक बात आ रही है,
7: आप कह दो सर,
6: कि तीन रंग में देश समाया, देश मेरा अतरंगा है। तीन रंग में देश समाया, देश मेरा अतरंगा है। कोटि कोटि मैं करूं नमन उसे, जिसका नाम तिरंगा है, जिसका नाम तिरंगा है।
7: जी सा, ये तीन रंगा का मायने आपने पूरी दुनिया समायोड़ी छे। एक आगे पिछोकड़े आपा देखा, जद आपा समृद्ध जो आपनो भारत छे वह आपने दिखे छे, और इन और आगे बढ़ावा के लिए थोड़ो सो आपनो योगदान दो चाहे जी।
6: बिल्कुल अदिति, स्वतंत्रता दिवस आपा हर साल मनावा हाँ, 15 अगस्त आवे जद भी, और 26 जनवरी आवे जद भी, वे तीन रंग को पुलाव भी आपा बनावा ला, तीन रंग की मिठाइयां भी आ जावे ली, तिरंगा की शी आपा जो है तिरंगो भी फहरा दिया ला, बशा कपड़ा भी पहन लिया ला, खूब देशभक्ति गीत भी चला लिया ला, और फिर जब 16 अगस्त आवे है या 27 जनवरी आवे है फिर सब कुछ शांत हो जावे है। तो ये विचारणीय बात है कि आपा जब हर्षोल्लास से त्योहार मनावो चावा, और मन लागे है उससे बड़ो त्योहार है
7: जी सर,
6: भारत भूमि के लिए और कोई भी देश को जो स्वतंत्रता दिवस है या स्वाधीनता दिवस है वो बहुत बड़ो त्योहार होवे है। तो अशी स्थिति में संकल्प लेवा अब का स्वतंत्रता दिवस कि आपा अपना देश हित की बात कराला, जाति पाति, ऊंच नीच, धर्म, कोई भी चीज हो, बस सबसे ऊपर ने आपने देश रखनो है कि आप जो धर्म है, जो पंथ है, बेमानबा की चीज आप मानो, सबको निजी विषय है लेकिन देश सबको सामूहिक विषय है, और सामूहिक ही इको हमेशा जो है विकास होना चाहिए, फिर कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए
7: जी सर। और सर सागे ही एक त्योहार भी है जी, आप शुरुआत में बात करें
6: जी,
7: तो तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगोर, तो तीज आई छे नरा सर आपने सागे त्योहार ना ले रही है।
6: बिल्कुल, और चूंकि त्योहार आरी बात हो रही है और आपा स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, जद राजस्थान की बात हो वह है, वीरा की बात हो वह है, धरती का लाल की बात हो वह है, तो महाराज

0: महाराणा प्रताप की बात होवे है, वहाँ का वीर चेतक री बात होवे है और माटी की महक की बात होवे है। तो अब अहियाँ तो बात अचीत आप चाहे सारे समय ही करता रहवा, पूरी टाइम बात कर सका, लेकिन अगर यही बात संगीत में कहवा तो भी कोई एक अनोखो असर होवे है।
1: जी सर, यानी कि अपना कार्यक्रम में चार चांद लग जावेला।
0: तो ए चार चांद लगा दियो सर।
1: चलो सर,

0: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहा
0: है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं।

0: पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: तो देखो जो माटी है संवेद स्वर्म यो गीत आप सुनया, हिंदुस्तान री राजस्थान री माटी रो महत्व बताया। और देखो किसान वाणी कार्यक्रम में किसाना की बात होनी बहुत जरूरी
4: जी
3: है।
4: सा
3: और तो, प्रभु भाई आ गया है और पावना सु जानकारी आने कह दिया कि वह दिलवा दे आप सुना।
4: चलो
5: किसान भाई और बिना कार्यक्रम में जानकारी देवा के वास्ते पधार चुका है रामलाल जी मीणा। आप रिटायर्ड अतिरिक्त निदेशक है कृषि और बस्सी जयपुर से अपना कार्यक्रम के मायने पधारिया है और आज आपने जानकारी देवला संरक्षित खेती सुरक्षित खेती इस विषय पर। रामलाल जी मीणा साहब, आपको कार्यक्रम के मायने गुणों गुणों स्वागत है। सा राम राम सा।
6: राम राम सा।
5: और सांसों के लिए आपसे वही जानना चाहूंगा कि संरक्षित खेती के वकीन है और एक ही वर्तमान टीम की अगर आप बात करें तो ये कहीं आ सकता है। सर
6: किसान भाइयों, संरक्षित खेती इस प्रकार की खेती है कि जिसमें परंपरागत खेती से अटके खेती की जाती है, जनसंख्या बढ़ रही है
5: जी,
6: प्राकृतिक साधन खनन और दूसरे कार्यों में जमीन काम आ रही है, जमीन कम पड़ती जा रही है, इसके साथ पानी की भी कमी पड़ रही है और जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी बढ़ रही है, कब बरसात हो जाए, कब ओलावृष्टि हो जाए
5: जी,
6: कब आंधी और तूफान आ जाए, ऐसी स्थिति में किसान के लिए सुरक्षित और संरक्षित खेती की आवश्यकता होती है। इस संरक्षित खेती में इस प्रकार की खेती की जा सकती है कि किसान भाई प्राकृतिक खेती से अटके एक ढांचागत निर्माण करता है और उस ढांचागत निर्माण के अंदर जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है जिनकी बहुत ज्यादा लागत लगती है, बहुत ज्यादा वो होती है, बाजार में मांग होती है, उस खेती को पहले प्राथमिकता से इस खेती में करते हैं। विशेष रूप से सब्जियां और जो फ्लावर्स है इसमें करते हैं। इसके अलावा वो ऐसी फसलें जिनके बाजार में अच्छे मूल्य मिलते हैं और उसकी आवश्यकता मांग भी ज्यादा होती है तो ऐसी फसलों को भी लाते हैं, जिसमें विदेशी सब्जियां है, आपका शिमला मिर्च ले सकते हैं, जुकनी ले सकते हैं, इसके अलावा कलर कैप्सिकम को भी काम में लेते हैं। इस प्रकार की जो सब्जियां करते हैं उस संरक्षित खेती के रूप में काम में लेते हैं।
5: और आप एक संरक्षित खेती की संरचना की अगर बात करें तो कौन कौन सी संरचनावां है जिसकी खेती का मायने काम में ली जावे? साहब
6: किसान भाइयों, जब बात करते हैं संरक्षित खेती की तो जो संरचनाएं है वो आदमी के द्वारा बनाई जाती है, वो अब किसान अपनी लोकल आवश्यकता के अनुसार अपने खुद के संसाधनों के आधार पर उसका चयन कर जाता है
5: जी।
6: तो किसान ग्रीन हाउस, सेड नेट हाउस, लो टनल, मल्चिंग करते हैं। इसके अलावा भी किसान भाई अपने स्वयं के साधनों से स्वदेशी संरचना का भी काम ले सकता है। ग्रीन हाउस में भी दो तरह के ग्रीन हाउस है, एक तो ऐसे ग्रीन हाउस जो कि बिल्कुल ऑटोमेटिक है और एक है फैन फेड ग्रीन हाउस जिनमें जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है जैसे फ्लावर फ्लोरिकल्चर वो थोड़े से ज्यादा महंगे ग्रीन हाउस में काम लेते हैं और जो सादा है सब मिर्ची है टमाटर है उनमें कम लागत वाले ग्रीन हाउस काम में लेते हैं। इसके अलावा सेड नेट हाउस है
5: जी,
6: सेड नेट हाउस के अंदर एक छायादार सेड बनाया जाता है जिसमें लोहे के ढांचे के ऊपर और नेट हाउस अलग अलग कलर के नेट होते हैं और जैसी आवश्यकता है किसान को उस तरह के नेट से ढक के उसको खेती की जा सकती है। विशेष रूप से जैसे बरसात के समय उसमें नेट हाउस में बरसात का पानी रुकता नहीं है लेकिन सर्दी और गर्मी इसके लिए नेट हाउस की उपयोगिता होती है। इसके अलावा दूसरी संरचनाएं जो विशेष तौर से सर्दियों में लो टनल है और लो टनल के अलावा वॉकिंग टनल है
5: जी,
6: ये संरचनाओं को भी अपने काम में ले सकते हैं
5: जी। और संरक्षित खेती के मायने अगर आप बात करें तो कौन कौन सी खेती है जिसकी संरक्षित खेती के अंतर्गत करी जा सके है?
6: संरक्षित खेती के अंदर मैंने पहले भी अवगत कराया और संरक्षित खेती के अंदर वो फसलें काम में ली जाती है जिनकी बाजार में बहुत अच्छी डिमांड हो
5: जी,
6: बाजार में अच्छे पैसे मिले किसान को, जलवायु से बिल्कुल सेंसिटिव हो, जलवायु के प्रति जो ऐसी फसलें जो जलवायु से प्रभावित होने हो, तो ऐसी फसलों में तो जिसमें कलर कैप्सिकम भी काम ले सकते हैं, जुकनी है, विदेशी सब्जियां जैसे ब्रोकली

0: है, लेट्यूस है, पार्सले है, सेलरी है, पोकचुई है, इस प्रकार की सब्जियां जो कि खुले वातावरण में नहीं होती है, उनको हम ग्रीन हाउस और शेड नेट हाउस में लगा के अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। आजकल तो नेट हाउस और ग्रीन हाउस के अंदर जो जुकनी और आपका टमाटर, ऑफ सीजन के अंदर धनिया, इस तरह की फसलें लेके भी अपने उससे अच्छा पैसा कमाते हैं।
1: और कोई किसान भाई अगर एक खेती के अंतर्गत या फूलों की खेती अगर करना चाहे तो वह भी संभव है सर?
0: बिल्कुल, फूलों की खेती के अंदर गुलाब, डच रोज होता है, अच्छा वो लगा रहे हैं और अच्छा फायदा भी ले रहे हैं। जो शादियों का समय है उसमें फूलों की खेती से अच्छा कमाते हैं, कि खुले में बर्फ की जमा हो जाती है, सर्दी लगती है, इसके अंदर जो फूलों की गुणवत्ता है, क्वालिटी, वो भी अच्छी होती है,
1: जी
0: क्योंकि इसके अंदर सीधा फ्रॉस्ट से प्रभावित नहीं होते, सर्दी से प्रभावित नहीं होते हैं, तो उससे फूलों की क्वालिटी अच्छी होती है। और उनको आप किसी ग्रीन हाउस में रख के और डायरेक्ट कोल्ड चेन से जोड़कर उसको बाहर भी भेजा जा सकता है। तो इस तरह के ग्रीन हाउस और सुरक्षित खेती के अंदर फूलों की खेती भी अच्छी तरह से ली जाती है।
1: जी और अब आप बात करें अगर कोई किसान भाई जो संरक्षित खेती या सुरक्षित खेती की तरफ वो बढ़े या वो खेती कर रहे तो भाई ये खेती का जो घटक की बात करें तो कौन कौन सा मुख्य मुख्य जगह घटक है किसान भाई ने अपनाना चाहिए?
0: किसान भाइयों, हम हमेशा सुरक्षित खेती शब्द आता है तो ये सोचते हैं कि केवल जो एक ग्रीन हाउस और शेड नेट है यही संरचना है, इसी में खेती करते, लेकिन विशेष रूप से कोई भी सुरक्षित खेती हो या दूसरी खेती हो, उसमें जो विशेष घटक है जिनमें सफलता की संभावनाएं ज्यादातर थी, उनका विशेष योगदान है।
1: जी
0: विशेष रूप से तो एक रिज बेड, रिज बेड का मतलब उठी हुई क्यारी, और वो राजस्थान और पूरे देश के लिए सभी खेती, चाहे ओपन में हो, चाहे ग्रीन हाउस में हो, शेड नेट में, उसमें रिज बेड पे होती है। तो उससे क्या है कि एक तो बीज कम लगता है, पानी की मात्रा कम लगती है, और उसके अंदर क्वालिटी भी ज्यादा होती है, उत्पादन भी ज्यादा होता है। दूसरा होता है कि रिज बेड के अलावा अगला कंपोनेंट है जो है कि ड्रिप इरिगेशन।
1: जी
0: ड्रिप इरिगेशन, तो रिज बड़ी हुई होती है तो ड्रिप इरिगेशन उस पर लगाकर उसे फर्टिगेशन दे सकते हैं, जब पौधे को आवश्यकता है उसी टाइम पानी दिया जाता है, पानी की बचत होती है, खरपतवार भी कम होती है। तो ड्रिप इरिगेशन भी एक सुरक्षित खेती का मुख्य घटक है।
1: जी
0: इसके आगे यदि ये दोनों चीज अपनाते हैं, रिज बेड और ड्रिप इरिगेशन, तीसरा घटक इंपॉर्टेंट है, वो है मल्चिंग।
1: जी
0: आज पहले प्राकृतिक मल्चिंग काम में लेते थे, जिसकी वजह से बरसात के अंदर जो बेड्स बनाते थे या पेड़ पौधों वो होते थे, उससे मिट्टी कट जाती थी। इसके अलावा अब वर्तमान में ये मल्चिंग आ गई प्लास्टिक शीट, ऐसी प्लास्टिक जो कंज्यूम हो जाती है और 6 महीने के अंदर नष्ट हो जाती है,
1: जी
0: उस तरह की प्लास्टिक यूज लेते हैं। और उस प्लास्टिक शीट में भी अलग अलग कलर की प्लास्टिक मल्चिंग होती है। एक तो गर्मी में प्लास्टिक मल्चिंग काम में लेने वाली होती है, एक सर्दी में होती है, उसके कलर अलग होते हैं। जो व्हाइट और सिल्वर कलर है जो प्लास्टिक मल्चिंग का, वो ऊपर की साइड रखा जाता है, जो ब्लैक कलर है वो प्लास्टिक मल्चिंग का नीचे रखा जाता है, बेड के ऊपर लगाई जाती है। तो बेड बना लेते हैं, बेड के बाद में ड्रिप इरिगेशन की लेटर लगाते हैं, और लेटर लगाने के बाद में उसके ऊपर मल्चिंग, प्लास्टिक मल्चिंग लगाते हैं। और मल्चिंग में भी एक छेद होते हैं, जैसी अपनी फसल की दूरी है
1: जी
0: उसके हिसाब से उस छेद निकालते हैं, और उस छेद निकालते हैं तो केवल छेद होता है उसी जगह खुला ओपन में रहता है, बाकी चारों तरफ से उसको मिट्टी से ढक देते हैं। उसकी वजह से जो पानी का वाष्पीकरण होता है वो कम होता है, और जो खरपतवार होती है
1: जी
0: उस खरपतवार का भी नियंत्रण होता है। और खरपतवार के साथ साथ में जैसे सर्दियों के अंदर जो जमीन का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है मल्चिंग की वजह से, अन्यथा इसमें फ्रोस्ट किए जाते हैं तो फ्रोस्ट कम होता है, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। दूसरा, रूट जो डार्क जोन होता है, तो मल्चिंग के नीचे डार्क जोन होता है, उसकी रूट्स की ग्रोथ भी अच्छी होती है। और जो प्लास्टिक मल्चिंग लगाते हैं तो उसकी वजह से जो इंसेक्ट है और पेस्ट है वो भी कम लगते हैं। तो
1: जी
0: इस प्रकार से मल्चिंग का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा और भी दूसरे जो कंपोनेंट है जिनके अंदर मल्चिंग का उपयोग होता है और जो दूसरी चीज है उनका भी उपयोग होता है, एक लोटनल होती है। लोटनल विशेष रूप से राजस्थान में नवंबर से लेकर और आपका फरवरी तक काम में ली जाते हैं। लोटनल जो ओपन फील्ड है उसके अंदर जो आपका मिर्च है, टमाटर है, या जो फ्रोस्ट से बहुत ज्यादा सेंसिटिव फसलें हैं उनको काम में लिया जाता है। इसमें एक प्लास्टिक शीट होती है जो 25-30 माइक्रोन की होती है, और उसको बांस की या लोहे की छड़ियां लगाकर उसको कवर किया जाता है फसल को।
1: जी
0: इसमें विशेष तौर से जो कुकुरबिट्स होती है, जिसमें तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, ये फसलें अगली फसल लेने के लिए उसमें लगा देते हैं और उसको कवर कर देते हैं। उसके बाद में जब भी फरवरी का महीना आता है, मार्च का महीना है, तो वो लोटरनल उठा दी जाती है। तो उससे क्या है, उसकी ग्रोथ होती है, और जो अगेती फसल है उसका बाजार भी अच्छा मिलता है और उससे क्वालिटी भी अच्छी होती है। दूसरा उसमें

0: फसल भी ज्यादा अच्छी पैदावार भी अच्छी होती है तो लोटनल का यूज होता है एक कंपोनेंट है वॉकिंग टनल जो इसका नाम से ही वह वाक वाक यानी घूमना तो ऐसी टनल ऐसी सुरंग जिसके अंदर आदमी घूम सकता है तो उसमें 8 से 10 बेड बढ़ाई जा सकती है इसकी लंबाई खेत की उपलब्धता के हिसाब से रख सकते हैं लेकिन चौड़ाई करीबन 10 से 12 मीटर चौड़ाई रहती है और 4 मीटर ऊंचाई तक होती है इसको वॉकिंग टनल कहते हैं जिसमें वॉक किया जा सकता है। इस तरह की खेती भी जो आपका फ्लावरी कल्चर है या आपका बेल वाला टमाटर है या तरबूज है खरबूज है चुकनी है ब्रोकली है कलर कैप्सिकम है इन फसलों के लिए एक कंपोनेंट है सुरक्षित खेती में जिसका किसान आमतौर से यूज करता है नेट हाउस। नेट हाउस ज्यादातर गर्मियों के अंदर जो फसल होती है उसमें क्या होता है गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो देते हैं छाया हो जाती है और छाया के हिसाब से नेट होता है इसके अलग अलग वो माइक्रोन का होता है जिसमें किसी में 90% किसी में 60% किसी में 70% जैसे भी किसान की आवश्यकता है उस तरह का नेट काम में लिया जाता है। उसमें खीरा जैसी फसल है या आपका स्वीट कॉर्न है या तुरई है इस तरह की फसलें आप लगा सकते हैं चेरी टमाटर है ये भी काम में ले सकते हैं तो इस तरह के नेट हाउस होते हैं और एक होता है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस के अंदर साल भर के अंदर फसलें ली जाती है विशेष तौर से गर्मी में थोड़ी सी ग्रीन हाउस के अंदर गर्मी ज्यादा होती है तो उसमें क्या पंखा और फैन की आवश्यकता पड़ती है कूलिंग करने के लिए
1: जी।
0: बाकी की ग्रीन हाउस में सर्दी और बरसात में बरसात का पानी सीधा ग्रीन हाउस के अंदर नहीं जाता है और सर्दी के अंदर भी वातावरण टेम्परेचर का कंट्रोल होता है नियंत्रण होता है तो विशेष तौर से सर्दी और बरसात के लिए ग्रीन हाउस बहुत ही ऐसा संरचना है जिसके अंदर किसान भाई ज्यादा से ज्यादा फसल ले सकते हैं। गर्मियों के अंदर जो नेट हाउस है उसमें ज्यादा से ज्यादा फसलें ली जा सकती है।
1: बिल्कुल सर आप जहाँ ग्रीन हाउस की बात बता रहे हो कि भाई किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध उसके तो ग्रीन हाउस का मायने खेती करना या ग्रीन हाउस की जो संरक्षित खेती है बस सुरक्षित खेती की प्रकार से उसके ऊपर थोड़ा सो किसान
0: भाइयों आज की एक आम बोलचाल की भाषा में किसान कई लोग कहते हैं कि जो ग्रीन हाउस के अंदर खीरा होता है उसमें बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड या कीटनाशक का उपयोग होता है लेकिन मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप शुरू से ही अपनी फसल को इनसे बचा के रखोगे तो क्योंकि जब वातावरण बिल्कुल सुरक्षित वातावरण फसल के लिए है
1: जी।
0: तो कीड़ों के लिए भी सुरक्षित वातावरण है लेकिन आप यदि कीड़ों से शुरू से में बचाव करोगे तो उसमें फिर संभावना कम होगी कि इसमें कीड़े लगे क्योंकि उसमें फसल को चारों तरफ से बाहर का कीड़ा आक्रमण नहीं कर सकता तो विशेष तौर से शुरुआत में ही जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना जरूरी है उसके अंदर कीड़ा पनप नहीं पाए तो विशेष तौर से किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि जो भी किसान भाई ग्रीन हाउस शेड नेट हाउस या लोटनल मल्चिंग में करें तो वो शुरुआत से ही प्रोफाइलेमेटिक स्प्रे जिसको कहते हैं कि सुरक्षित उपाय करें कि वो उसमें कीड़ा या बीमारी ही नहीं पनपने दे तो फिर उसमें कम से कम पेस्टिसाइड और दवाओं की जरूरत पड़ेगी। एक बार इसमें यदि कीड़ा और बीमारी पनप जाता है तो फिर उसको नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सुरक्षित इसलिए है कि यदि आपने इसमें कीड़ा और वो नहीं पनपने नहीं दिया जाए तो वो सुरक्षित होगा और उसमें कम से कम पेस्टिसाइड का यूज होगा इसलिए इसको सुरक्षित खेती और सुरक्षित खेती बोला जाता है। लेकिन इसमें विशेष तौर से किसान को 24 घंटे और उसमें समय पर ध्यान देने की आवश्यकता है इसमें किसी तरह की शिथिलता की गुंजाइश नहीं रहती है।
1: रामलाल जी मीणा सेवानिवृत्त अतिरिक्त निदेशक बस्सी जयपुर से आप कार्यक्रम का मैंने पधारिया और आज माका किसान भाई और बहना ने संरक्षित खेती सुरक्षित खेती ये महत्व विषय पर बहुत ही चौकी जानकारी दी एक वास्ता आपको मोकड़ो मोकड़ो धन्यवाद सर।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए अपने गोल्स तक पहुँचिए मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड मेक लाइफ इजी टोल फ्री नंबर 1800420223।
4: बहुत ही लाभकारी जानकारी संरक्षित खेती सुरक्षित खेती और अदिति आज का जमाना की जरूरत भी है
5: जी सर और मांग है जरूरत है तो ये तो आपने अपनानी ही चाहिए।
4: बिल्कुल
5: और प्रभु भाई इतनी बढ़िया जानकारी आप दिलाया तो आपको भी घनो घनो धन्यवाद सर
4: और कोरो धन्यवाद आपा देवा को नहीं। तीज त्योहारा की भी बात हो रही है तो जद आपा राष्ट्रीय त्योहार को गीत सुनया हां तो आज जो लुगाया को बढ़िया लूटो सो त्योहार है तीज एक लहरियो भी सुना सा
5: चालो सा आपकी फरमाइश तुरंत पूरी करूं

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका कर
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। आइए अब सुनते हैं जिला स्टेडियम नागौर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह की रेडियो रिपोर्ट। प्रस्तुत करता है संजय दत्त।
1: प्रस्तुत है नागौर के जिला स्टेडियम में आयोजित 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की रेडियो रिपोर्ट।

0: आज नागौर का जिला स्टेडियम 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में पूरी तरह डूबा हुआ था। सुबह से ही यहाँ बच्चे, युवा, बुजुर्गों का हुजूम उमड़ा पड़ा था। नागौर के ऐतिहासिक जिला स्टेडियम में आज चारों तरफ तिरंगे का सैलाब, देशभक्ति के गीत और हवा में गूंजता हुआ जय हिंद का नारा, हर आंख में गर्व और दिल में देश प्रेम की भावना दिखाई दी। जिला स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ हुई। इस पावन धुन ने स्टेडियम में मौजूद लोगों के दिलों में राष्ट्र भक्ति का ज्वार उठा दिया
1: और शारदा बालिका निकेतन के छात्राओं के द्वारा राष्ट्र गीत वंदे मातरम की शानदार प्रस्तुति दी जा रही है। उसके बाद ध्वजारोहण होगा। शुरू करें।

0: इसके ठीक बाद समारोह की मुख्य अतिथि राज्य कैबिनेट मंत्री मंजू बागमार द्वारा गर्व से ध्वजारोहण किया गया। और जैसे ही केसरिया सफेद और हरा रंग आसमान में लहराया, पूरा परिसर भारत माता की जय के उद्घोष से गूंज उठा।
1: आज के समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर मंजू जी बागवार साहिबा,

0: ध्वजारोहण के पश्चात मुख्य अतिथि ने खुली जीप में सवार होकर परेड का बारीकी से निरीक्षण किया। जवानों के चेहरे पर अनुशासन की चमक और देश की सेवा का जज्बा साफ दिखाई दे रहा था।
1: स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है।
2: मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर मंजूजी पासवान साहब।
0: इसके बाद उन्होंने मार्च पास्ट की सलामी ली, जहां राजस्थान पुलिस और एनसीसी के कैडेट्स ने कदम से कदम मिलाकर अपनी ताकत का परिचय दिया।

0: इस गरिमा में अवसर पर महामहिम राज्यपाल महोदय का प्रदेशवासियों के नाम संदेश पढ़ा गया, जिसका अत्यंत ओजस्वी पठन अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार साकरिया जी ने किया।
1: मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, आपको 80वें स्वाधीनता दिवस की असीम शुभकामनाएं। आज पूरा देश सम्मान और गौरव के साथ यह राष्ट्रीय पर्व मना रहा है। मैं देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। सरहद पर सेना तान कर खड़े वीर सैनिकों का अभिनंदन करता हूँ। अंग्रेजों के दमनकारी शासन को पीछे छोड़ चुके हैं। आज हमारा प्रदेश नव निर्माण के ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ सुनहरा भविष्य हमारे सामने है। संघर्ष की आंच में तपकर निखरना हम राजस्थानियों का मूल स्वभाव रहा है। चिलचिलाती गर्मी, रेतीले दौरे और तपती धूप हमारे जीवन को कठिन बनाती रही है, लेकिन इन बाधाओं को हमने अपनी मजबूती में ढाल लिया है। खान एवं पेट्रोलियम विभाग, मुझे खुशी है कि पचपदरा में देश की पहली ग्रीन फील्ड राजस्थान रिफाइनरी का शुभारंभ हो चुका है। लगभग 79,459 करोड़ रुपए की यह परियोजना देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रदेश के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगी। इससे हमारा पश्चिमी राजस्थान पेट्रोकेमिकल उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। रोजगार के प्रचुर अवसर उत्पन्न होंगे। राजस्थान का भाग्य बदलेगा। इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने वाले इंजीनियर, श्रमिकों एवं कर्मवीरों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ऊर्जा विभाग, बीते समय में प्रदेश के पश्चिमी विभाग में सैकड़ों सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है। इनसे सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारा राजस्थान अग्रणी प्रदेश बन गया है। इस उपलब्धि पर हमें गर्व है। पीएम कुसुम योजना के माध्यम से हमारे अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी बन रहे हैं। योजना के प्रदेश की गांव ढाणियों में लगभग 5000 मेगावाट की 2300 से अधिक सौर परियोजनाएं स्थापित हो चुकी है। मुझे खुशी है कि राजस्थान इस योजना के फीडर लेवर सोलराइजेशन में देश में पहले स्थान पर है।
2: हमें इसी भावना के साथ आगे बढ़ना है। आइए इस पावन अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करेंगे और एक समृद्ध, सशक्त एवं सुदृढ़ राजस्थान के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी प्रदेशवासियों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भारत माता की जय।
0: इसके बाद मैदान पर नागौर के स्कूली बच्चों ने सामूहिक व्यायाम का बेहतरीन प्रदर्शन किया। सफेद पोशाक में सजे सैकड़ों बच्चों का एक साथ हाथ उठाना और झुकना अनुशासन की एक अनूठी मिसाल पेश कर रहा था।

0: बच्चों के इस तालमेल के तुरंत बाद एल के सिंघानिया गोटन के ब्रास बैंड ने कमान संभाली और उनके बैंड की देशभक्ति की धुनों ने पूरे स्टेडियम को मंत्रमुग्ध कर दिया। बैंड के हर सुर में भारत की गौरवशाली परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम महसूस हो रहा था।
1: अब आपके सामने ब्रास बैंड का प्रदर्शन होगा, बहुत ही शानदार प्रस्तुति। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो कि ऐसे निशान बन जाए, ये जिंदगी तो सब काट दे।

0: समारोह का सबसे सशक्त और ऊर्जावान पल तब आया जब महिला पुलिस बटालियन ने आत्मरक्षा का प्रदर्शन किया। महिला शक्ति ने जब विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए जूडो, कराटे और साहसी दांव पेच दिखाए तो दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं।
1: आत्मरक्षा पूर्व अभ्यास के इसी क्रम में हम विषम परिस्थितियों में कैसे महिलाओं को अचानक से अपना सामना करना होता है, तो उसकी कुछ टिप्स बताएंगे। परिस्थिति नंबर एक, अगर किसी महिला के अचानक से पीछे से कोई मंजिला कंधे पकड़ लेता है तो उसे कैसे बचाव करोगे, इसके लिए नमूना पेश। अब
0: तत्पश्चात स्कूल की छात्राओं ने बेहतरीन योगासन तथा लेजियम का प्रदर्शन किया। कठिन योग मुद्राओं में उनका संतुलन और लेजियम की खनकती आवाज ने दर्शकों को ताली बजाने के लिए मजबूर कर दिया।
2: सभी छात्राएं सामूहिक ध्वनि द्वारा सभी दिशाओं में एकता का संदेश गूंजा रही है। अष्टताल के बाद चतुर्थताल, उसके बाद लेट कर अष्टताल आदि प्रकार की रचनाएं कर चिंतन मंथन पर जब भूल जाए स्व अस्तित्व तो ये आठवां समाधि पाए। सत्य है अष्टांग योग जो ध्यावे संपत्ति सुदृढ़ तन पाए।
0: प्रदर्शनों के बाद राज्य कैबिनेट मंत्री मंजू वाघमार ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। अपने प्रेरक उद्बोधन में उन्होंने नागौर के विकास और युवाओं की शक्ति और आजादी के वीर शहीदों के सपनों को साकार करने पर जोर दिया।
3: एक साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण, जिला कलेक्टर साहब आदरणीय देवेंद्र जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब श्री आशाराम जी चौधरी, एडीएम साहब रामरतन जी सोखरिया जी, सीओ जिला परिषद के रणजीत जी गोदारा, एसडीएम साहब गोविंद जी बीचर, तहसीलदार साहब श्री नरसिंह जी टाक और पद्मश्री जिन्हें नागौर जिले का जिन्होंने गौरव बढ़ाया है, श्री हिमताराम जी भांबू, लघु उद्योग भारती के प्रांत प्रचारक श्री भोजराज जी सारस्वत साहब, समाज सेवी श्री बालकिशन जी काकड़ा, पूर्व प्रधान जायल के और वकील साहब श्री भंवरलाल जी पोटलिया, पूर्व प्रधान मुंडवा के श्री बीजाराम जी मेघवाल, मंडल अध्यक्ष हमारे रोल के श्री जेपी जी भाटी, सरपंच प्रतिनिधि जोधियासी से बियाराम जी मुंड, पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता संघ नागौर के श्री अर्जुन जी काला, व्यवसायी और भामाशाह के रूप में जिन्होंने नागौर जिले में अपनी पहचान बनाई है श्री हरिराम जी धारणिया, समाज सेवी श्री भोमाराम जी लोमरोड जायल से, महामंत्री भाजपा महिला मोर्चा की श्री कमलेश जी चौधरी, भाजपा मीडिया प्रभारी श्री महेंद्र जी, श्री महावीर जी सांधु, समाज सेवी श्री महेंद्र जी सुराना, युवा नेता भाजपा के रणजीत सिंह जी जटेरा, युवा नेता भाजपा के रमेश जी दाजीज, श्री बजरंग जी शर्मा, साथ में स्वतंत्रता सेनानियां एवं शहीदों के परिजन, हमारे वीर सैनिक और पूर्व सैनिक, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकगण, मातृशक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चियों, साथ में हमारे जो उद्घोषक हैं, जो बहुत ही अच्छी तरीके से हमेशा यहाँ का संचालन करते आए हैं, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय पर्व हो चाहे और कोई भी पर्व हो, ऐसे श्री मोहम्मद शरीफ छीपा जी, मीडिया के प्रतिनिधियों तथा नागौर जिले के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। मैं कहना चाहूंगी, शहीदों का बलिदान हमारी प्रेरणा है, राष्ट्र का उत्थान हमारी साधना है। आज का ये पावन दिन केवल उत्सव मनाने का नहीं है, बल्कि उन असंख्य ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान को नमन करने का अवसर है, जिन्होंने अपना सर्वस्व मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर हमें स्वतंत्र भारत में सांस लेने का अधिकार दिया। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, और असंख्य क्रांतिकारियों के संघर्ष से प्राप्त ये स्वतंत्रता हमारी देश ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। जब हमारी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होंगे तब भारत को विश्व के अग्रणी आत्मनिर्भर समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्रों की पंक्ति में स्थापित करना हमारा सामूहिक लक्ष्य है। विकसित भारत का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति नहीं है, इसका अर्थ है हर गरीब को सम्मान हो, हर महिला को सुरक्षा और अवसर हो, हर किसान को समृद्धि हो, हर युवा को रोजगार हो और हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना। पिछले वर्षों में देश ने विज्ञान, तकनीक, डिजिटल सेवाओं और आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था सहित अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। आज आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और कौशल विकास जैसे प्रयास हमारी युवा पीढ़ी को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। आधुनिक सड़कें, रेल नेटवर्क, डिजिटल कनेक्टिविटी और जन कल्याणकारी योजनाएं गांव और शहर के बीच की दूरी को निरंतर कम कर रही है। इसी विकास यात्रा में हमारा राजस्थान भी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार विकसित राजस्थान के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति में खड़े और अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। गरीब, किसान, महिला, युवा, वंचित और जरूरतमंद व्यक्ति को शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ मिले, यही सुशासन की सार्थकता है। हमारी सरकार ने किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। किसान केवल अन्नदाता नहीं है बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन की रीढ़ है। किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए, कृषि को आधुनिक बनाने के लिए, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए और खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर निरंतर रूप से प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के साथ राज्य स्तर पर भी किसानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान कर उनके आर्थिक सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए जल केवल संसाधन नहीं है बल्कि जीवन का आधार है। हर घर तक नल से जल पहुंचे, पेयजल समस्याओं का स्थायी समाधान करने और जल संरक्षण को जन आंदोलन की दिशा में निरंतर

0: प्रयास किए जा रहे हैं। नागौर की धरती ने सदैव जल की महत्ता को समझा है, इसलिए मैं आज जिले के प्रत्येक नागरिक से यह आग्रह करती हूँ कि वर्षा के जल का संग्रहण हो, परंपरागत जो हमारे जल स्रोत हैं और जल के विवेकपूर्ण उपयोग को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मनाएं। महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार की प्राथमिकताओं के केंद्र में है। हमारा मानना है कि जब महिलाएं सशक्त होगी तभी परिवार सशक्त होगा, और जब परिवार सशक्त होगा तभी राजस्थान और भारत सशक्त होगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने तथा बालिकाओं की शिक्षा को बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। राज्य में लाखों महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाने का लक्ष्य इसी सोच का परिणाम है। हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, सहायिकाएं और सार्थिन भी मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा महिला जागरूकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारी बेटियां आज शिक्षा, खेल, विज्ञान, प्रशासन, सेना और उद्यमिता में हर क्षेत्र में अपने देश का गौरव बढ़ा रही है। हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जहाँ हर बेटी निर्भय होकर पढ़ सके, आगे बढ़ सके और अपने सपनों को साकार कर सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार का प्रयास है कि गरीब परिवार को बीमारी के समय आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, स्वास्थ्य बीमा, अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य की सेवाओं के विकास के माध्यम से आमजन को राहत देने का कार्य किया जा रहा है। डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट कक्षाओं और कौशल विकास के माध्यम से हमें एक ऐसी युवा पीढ़ी तैयार करनी है जो नौकरी मांगने वाली नहीं हो, बल्कि नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से नौकरी देने वाली हो। साथियों, नागौर की धरती वीरता, त्याग, तपस्या और लोक संस्कृति की धरती है। यहाँ के किसान की मेहनत, जवान का शौर्य, मातृभूमि का सामर्थ्य और युवाओं की ऊर्जा हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस जिले के सर्वांगीण विकास के लिए सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, महिला एवं बाल विकास और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण को निरंतर गति देना हमारी प्राथमिकता है। पर्यावरण संरक्षण भी हमारे भविष्य के साथ के विषय जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान की भावना को आगे बढ़ाते हुए हमें अधिकाधिक पौधारोपण का कार्य करना है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है लगाए गए पौधे की रक्षा करना। हरा भरा राजस्थान हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे सुंदर उपहार होगा। अपलोड की गई सामग्री में भी वृक्षारोपण, जल संरक्षण और भावी पीढ़ियों के लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण के संकल्प को विशेष महत्व दिया जा रहा है। मेरे युवा साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। विकसित भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य हमारी युवा शक्ति ही है। अपनी ऊर्जा, अपनी प्रतिभा और तकनीकी क्षमता को सकारात्मक दिशा दें। नशे, सामाजिक कुरीतियां और निराशा से दूर रहकर शिक्षा, कौशल, खेल, नवाचार और उद्यमिता को अपनाएं। याद रखिए, आप केवल अपने भविष्य के निर्माता नहीं है, आप भारत के भविष्य के भी निर्माता हैं। आज इस राष्ट्रीय पर्व पर हमें अपने अधिकारों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों का भी स्मरण करना चाहिए। स्वच्छता रखना, जल बचाना, पर्यावरण की रक्षा करना, बेटियों को शिक्षित करना, कानून का सम्मान करना, सामाजिक सद्भाव रखना, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना, यही हमारी सच्ची राष्ट्रभक्ति है। आइए आज नागौर के इस पावन धरा से हम सामूहिक संकल्प लें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी के विकसित भारत 2047 और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के विकसित एवं समृद्ध राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए हम अपनी पूरी शक्ति लगाएंगे। सरकार और समाज जब साथ चलेंगे, जन भागीदारी, तो विकास की शक्ति बनेगी। साथ ही अंत में मैं पुनः हमारे अमर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों, मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले वीर जवानों को भी श्रद्धा पूर्वक नमन करती हूँ। नागौर जिले के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आइए हम पूरे जोश के साथ में कहना चाहेंगे, हर तारे में तिरंगे का नूर होगा, हर दिल में भारत माता का गुरूर होगा, ऐसी चिंगारी फिर भड़केगी कि हर तरफ बस देश प्रेम का शोर होगा। भारत माता की जय, जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत। धन्यवाद।
1: कार्यक्रम की अगली कड़ी में स्टेडियम में घोष वादन का एक और शानदार प्रदर्शन हुआ, जिसने माहौल में एक नई ऊर्जा भर दी।

प्रशासन की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सामाजिक और साहसिक कार्य करने वाले नागौर की प्रतिभाओं को मुख्य अतिथि द्वारा प्रशंसा पत्र वितरित कर सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक उत्सव को अपने चरम पर पहुंचाते हुए नागौर के कलाकारों ने लोकगीतों और सामूहिक नृत्य झुमका की मनमोहक प्रस्तुति दी। राजस्थानी संस्कृति के रंगों से सजे इस लोक नृत्य ने स्टेडियम में समा बांध दिया, जिसे देखकर दर्शक भी झूमने लगे। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में एक बार फिर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन हुआ।

इसके बाद श्रीमती माडीबाई राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं द्वारा अत्यंत सुरीली और गर्मामय आवाज में राष्ट्रगान जन गण मन का गायन किया गया। राष्ट्रगान के सम्मान में सावधान मुद्रा में खड़े हजारों लोगों की आंखों में देश के प्रति अगाध श्रद्धा साफ झलक रही थी और इस प्रकार देशभक्ति के अभूतपूर्व उत्साह, हर्षोल्लास और भव्यता के साथ 80वें स्वतंत्रता दिवस का यह जिला स्तरीय समारोह नागौर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस रेडियो रिपोर्ट में तकनीकी सहयोग दिया दुर्गाराम बांबू और नरेश चंद्र ने। वाचन स्वर और इसके प्रस्तुतकर्ता संजय दत्त।

अभी आप सुन रहे थे जिला स्टेडियम नागौर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह की रेडियो रिपोर्ट, जिसके प्रस्तुतकर्ता थे संजय दत्त और इस कार्यक्रम का संयोजन किया अशोक कुमार गोयल ने। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे इस सप्ताह संसद में।

कारण बैठक एक मिनट के अंदर ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही फिर आरंभ होने पर भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच ही विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 और कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और गृहमंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने को भी तैयार है। इस बीच विधि एवं न्याय मंत्री मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र बदलने का विधेयक नहीं है। विधेयक का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। सदन ने विपक्ष के हंगामे के बीच ही विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने और सरकारी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने करीब 11:20 पर बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के उद्देश्य से पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग दोहराते हुए हंगामा जारी रखा। सदन में व्यवस्था न बनते देख हरिवंश ने बैठक को 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दिया। 15 मिनट बाद बैठक फिर शुरू होने पर सदन में बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक और कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को लिया गया। बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 का उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा स्पष्ट बनाना है। राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के सदस्यों ने कुछ देर नारेबाजी करने के बाद विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक के माध्यम से बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही अदालती मामलों में बैंक के पक्ष को मजबूती से रखा जा सकेगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने बैंक ग्राहकों के साथ बढ़ते साइबर अपराध को लेकर चिंता व्यक्त की। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लागू करने से रोकता है। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विधेयक में भारत को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करने और वैश्विक कंपनियों को उपकरण, पुर्जे तथा सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य निहित है। मंत्री के जवाब के बाद कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। तत्पश्चात विशेष उल्लेख के जरिए सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामा देखते ही अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कुछ देर बाद ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद 2 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि केरल की 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाया जाए। इस दौरान शोरगुल जारी रहा और हंगामे के बीच ही सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया।
इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को

चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने इस विधेयक को भी चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा शुरू हो गया और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। जब 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सदन में वही नजारा दिखा और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। वहीं कुछ देर बाद विपक्ष के कई दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। सदन ने चर्चा के बाद इस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी और विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक में विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जवाब दिए जाने के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। इसके बाद उच्च सदन में विशेष उल्लेख लिया गया जिसमें कई सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। शाम 4:30 पर उच्च सदन की बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कुछ मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही और प्रश्नकाल चलाने में सहयोग का आग्रह करते हुए कहा, नीतियों और विचारों में मतभेद हो सकते हैं लेकिन देश सदन चलते हुए देखना चाहता है। 2 बजे बैठक पुनः शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन FCRA विधेयक 2026 को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और द्रमुक ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में एक भी प्रावधान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है तथा ये सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने खुद मांग की थी कि विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाए और अब जब इसे भेजा जा रहा है तो इस पर आपत्ति क्यों है। इसके बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दी। नियम के अनुसार इस संयुक्त समिति में 31 सदस्य होंगे जिनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति वर्ष 2026 के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक लोकसभा को रिपोर्ट सौंपेगी। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने अपराह्न 2:27 पर सदन की बैठक 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे बैठक पुनः शुरू हुई तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को सदन में चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। हंगामे के बीच सदन ने बिना चर्चा के विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही 3:15 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई। न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के मामले में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की 2 खंडों वाली रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी। उधर राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही माकपा सदस्य जॉन ब्रिटास ने कहा कि भाजपा की एक सदस्य ने उन्हें कथित तौर पर लुंगी वाला कहकर निशाना बनाया। विपक्षी सदस्यों ने ब्रिटास का समर्थन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति से अनुरोध किया कि वे संबद्ध सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाएं और उनकी बात सुनकर समाधान निकालें। सभापति राधाकृष्णन ने सदस्यों को टिप्पणियां करते समय ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। सभापति ने कहा कि वे संबंधित सांसदों को अपने कक्ष में बुलाकर इस मामले पर चर्चा करेंगे। सदन में हंगामा देखते हुए सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक

0: के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होने पर भाजपा सदस्य सुष्मिता देव ने अपना पक्ष रखा। सुष्मिता देव ने कहा कि उन्होंने किसी राज्य की वेशभूषा पर कोई टिप्पणी नहीं की और राज्यसभा से ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे भारत को सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर बांटने की भावना पैदा हो। इसके बाद कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए। उसके बाद सदन ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद मंजूरी दे दी, जिसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने विधेयक पर हुई चर्चा का सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन ने विधेयक पर विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को खारिज कर दिया। इस विधेयक के पारित होने के बाद उच्च सदन ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। बृहस्पतिवार को दोनों सदनों की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे आरंभ होने पर अध्यक्ष ने आसन पर बैठते ही सदस्यों से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने के लिए कहा। हालांकि सामान्यतः सत्र समाप्ति के मौके पर वंदे मातरम से पहले वे अपने पारंपरिक संबोधन में उस सत्र की कार्य उत्पादकता, उसमें पारित विधेयकों, पूछे गए प्रश्नों आदि का उल्लेख करते हैं। वंदे मातरम की सभी 6 अंतरों के गायन की रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य दलों के प्रमुख नेता तथा सदस्य सदन में मौजूद थे। उधर राज्यसभा भी बृहस्पतिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। ये राज्यसभा का 271वां सत्र था। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोगों ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान के उस मंच का शुद्धिकरण किया जहां उन्होंने भाषण दिया था। श्री खड़गे ने मांग की कि मंच का शुद्धिकरण करने वाले के खिलाफ अस्पृश्यता अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए। सभापति राधाकृष्णन तथा सदन के नेता जेपी नड्डा ने इस घटना की निंदा की। सदन के नेता ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। इसके बाद सदन में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तत्पश्चात बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को सदन में चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए खान मंत्री रेड्डी ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता या उनके राजस्व अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि पूरे देश में खनिजों की दरों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला, चूना पत्थर, लोह अयस्क, तांबा और मैंगनीज जैसे प्रमुख खनिजों को विनियमित करना चाहती है, जबकि 49 गौण खनिजों के मामलों में राज्यों के अधिकार बरकरार रखेंगे। चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। सदन ने विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजने के लिए द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश संशोधन को विध्वनिमत से खारिज कर दिया। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले सभापति ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता महज 39.17% रही। हालांकि विधानों के बीच सदन ने 12 विधेयकों पर विचार किया और उन्हें पारित या वापस किया। अभी आप संसद में हुई सप्ताह की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी आप सुन रहे थे इस सप्ताह संसद में। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे स्वाधीनता दिवस पर समाचार सेवा एकांश जयपुर द्वारा प्रस्तुत विशेष समाचार तरंग।
2: भागीदारी की कहानी है, सभी का योगदान भारत की ताकत है। चूरू में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने झंडारोहण किया। कार्यक्रम में कई रंगारंग और आकर्षक प्रस्तुतियां हुई।
3: चूरू जिले में आज 80वां स्वाधीनता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चूरू जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह पुलिस लाइन मैदान में आयोजित किया गया। समारोह में राष्ट्रगीत

0: वंदे मातरम के पश्चात मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर चूरू अभिषेक सुराणा ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। मुख्य अतिथि के परेड निरीक्षण के पश्चात परेड दल में शामिल राजस्थान पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी और स्काउट गाइड की टुकड़ियों ने सलामी मंच के आगे से मार्च पास्ट किया। तत्पश्चात स्कूली बच्चों की ओर से बैंड वादन की प्रस्तुति दी गई। वहीं शहर के अनेक शिक्षण संस्थानों के सैकड़ों बच्चों ने सामूहिक व्यायाम का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर चूरू अर्पिता सोनी ने महामहिम राज्यपाल के संदेश का पठन किया। मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने अपने उद्बोधन में वीर सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए आजादी के इस पावन पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी।
1: हमारे सेनानियों के अदम्य साहस, देश प्रेम की उत्कट ज्वाला और जोश का ही परिणाम था कि 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि को भारत में स्वराज का उदय हुआ। इस अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, नेताजी बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, अशफाक उल्ला का समस्त देश के उन सभी महान नेताओं, वीरों, सेनानियों और आजादी के योद्धाओं को नमन करता हूं। मैं आप सभी को इस राष्ट्रीय पर्व की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको बताते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि चुरू का स्वतंत्रता संघर्ष और देशभक्ति की गौरवशाली परंपरा से गहरा संबंध रहा है। मुझे अत्यंत हर्ष और गौरव की अनुभूति होती है कि हमारे देश प्रेमियों ने आजादी से करीब 17 वर्ष पहले 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रगान करते हुए चुरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया था और अंग्रेजी शासन को खुली चुनौती दी थी।
0: समारोह में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर चुरू अभिषेक सुराणा, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़, विधायक चुरू हरलाल सहारण तथा जिला पुलिस अधीक्षक चुरू निश्चय प्रसाद एम ने वीरांगनाओं, लोकतंत्र और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया। इस अवसर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले विभिन्न व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के बच्चों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। अभी आप सुन रहे थे चूरू जिला मुख्यालय पर पुलिस लाइन मैदान में आयोजित जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह की रेडियो रिपोर्ट। आकाशवाणी चूरू से रिपोर्ट के साथ मैं कुंज बिहारी बिरमीवाला, प्रस्तुति विनोद कुमार हलकिया।
2: झालावाड़ में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने राष्ट्र ध्वज फहराया।
3: सावन की हरियाली में लहराते तिरंगे के साथ हर कोई स्थानीय श्रीमती विजया राजे सिंधिया राजकीय खेल संकुल झालावाड़ में 80वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक शामिल होने के लिए बेताब था।
4: जश्न आजादी के उल्लास भरे माहौल में प्रातः ठीक 8:58 पर मुख्य अतिथि महोदय जिला कलेक्टर श्री अजय सिंह राठौड़ का आगमन हुआ।
3: ठीक 9 बजे मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्री अजय सिंह राठौड़ के ध्वज फहराने और राष्ट्र ध्वज की सलामी के साथ मुख्य कार्यक्रम आरंभ हुआ।
4: परेड कमांडर आरआई झालावाड़ श्री विष्णु सिंह की कमान में राजस्थान पुलिस महिला एवं पुरुष होमगार्ड राइफल और एनसीसी स्काउट गाइड सदस्यों सहित परेड में शामिल सभी पलटूनों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी।
3: मार्च पास्ट के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय श्री कमल सिंह यादव ने मंच से महामहिम राज्यपाल महोदय श्री हरिभाव बागड़े के संदेश का पठन किया।
5: आप लोग प्रसिद्ध होने का दिवस आज पूरा देश सम्मान और गौरव के साथ राष्ट्रपाल मना रहा है। मैं देश के लिए अपना सर्वोच्च मतदान करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को समर्थन देने के लिए प्रणाम करता हूं।
6: बीते समय में प्रदेश के पश्चिमी भूभाग में सैकड़ों सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई। इनमें सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारा राजस्थान प्रदेश

0: अग्नि बन गया है। हमें इस उपलब्धि पर गर्व है।
1: स्वाधीनता दिवस के इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में पीटीएस के जवानों ने बेहद आकर्षक फायरिंग डेमो प्रस्तुत किया। इस फायरिंग डेमो में जवानों ने दर्शा दिया कि किस प्रकार से वह जल थल नभ और चारों दिशाओं में देश के दुश्मनों का चुन चुन कर सफाया कर सकते हैं।
2: तत्पश्चात स्काउट और गाइड ने सामूहिक भारतीय व्यायाम प्रदर्शन कर लोगों का मन मोह लिया और पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान हो गया।
1: और अंत में राष्ट्रगान के साथ झालावाड़ के श्रीमती विजय राजे सिंधिया राजकीय खेल संकुल झालावाड़ में स्वाधीनता दिवस का यह मुख्य समारोह संपन्न हुआ।
2: स्थानीय खेल संकुल झालावाड़ में आयोजित 80वें स्वाधीनता दिवस समारोह की रेडियो रिपोर्ट अब संपन्न होती है।
1: तकनीकी सहयोग ब्रजेश कुमार मीणा और नवीन कुमार लोधा का,
2: संयोजन और प्रस्तुति विमल शास्त्री की,
1: संकलन और वाचन मोहम्मद साजिद और लोकेश व्यास का।
3: सवाईमाधोपुर में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ध्वजारोहण किया। पुलिस परेड मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट और उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने राष्ट्रभक्ति गीतों पर सामूहिक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां दी। चित्तौड़गढ़ में जिला स्तरीय समारोह इंदिरा गांधी स्टेडियम में मनाया गया, जहां सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। चित्तौड़गढ़ केंद्र की ये रिपोर्ट।
4: हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 80वां स्वाधीनता दिवस समारोह चित्तौड़गढ़ में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले का मुख्य समारोह चित्तौड़गढ़ के स्थानीय इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि रहे सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन विभाग राज्य मंत्री राजस्थान सरकार श्री गौतम कुमार दत्त। कार्यक्रम का प्रारंभ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के साथ हुआ। तत्पश्चात माननीय मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण कर स्वाधीनता दिवस समारोह 2026 की विधिवत शुरुआत की। स्टेडियम में उपस्थित समस्त जन समूह ने राष्ट्रगान के साथ तिरंगे को सलामी दी। परेड कमांडर RI अनिल कुमार पांडे के आमंत्रण पर माननीय मुख्य अतिथि श्री गौतम कुमार दत्त ने परेड का निरीक्षण किया। परेड कमांडर अनिल पांडे के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस, होम गार्ड एवं अन्य स्कूलों की टोलियां मार्च पास्ट करते हुए मंच से गुजरी। तालियों से मार्च पास्ट का स्वागत किया गया। इसके बाद माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़ी का राज्य की जनता के नाम संदेश का वाचन अतिरिक्त जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ दिनेश धाकड़ द्वारा किया गया।
5: मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, आपको 80वें स्वाधीनता दिवस की असीम शुभकामनाएं। हमारी सरकार द्वारा राजस्थान में रिफाइनरी का शुभारम्भ हो चुका है। इससे पश्चिमी राजस्थान में उद्योगों को प्रमुख बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर इससे प्रदान होंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी सरकार बहुत प्रयास कर रही है। प्रदेश के पश्चिमी भूभाग में सैकड़ों सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारा राजस्थान देश में अग्रणी राज्य है। पीएम कुसुम योजना के माध्यम से भी हमारे अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी बन रहे हैं।
4: इसके पश्चात माननीय मुख्य अतिथि सहकारिता विभाग राज्य मंत्री राजस्थान सरकार श्री गौतम कुमार दत्त ने स्वाधीनता समारोह में अपना उद्बोधन दिया।
6: भारत माता की। मैं इस अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस 2.5 साल के छोटे से टेन्योर में जिस प्रकार से राजस्थान के विकास को नए आयाम दिए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अनेक जो योजनाएं राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण थी, चाहे से वो ERCP योजना हो, चाहे से यमुना जल समझौता हो, उनको धरातल पे लाने का काम किया है। हमारे इस क्षेत्र के लिए जो माही से और जाखम से हमारे इस क्षेत्र में जो पेयजल की कमी है, चंबल से हमारे इस क्षेत्र को पानी मिले पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, उसके लिए भी वो लगातार प्रयास कर रहे हैं।
4: सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत श्री भुवन भानु सुरेश्वर जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़ की छात्राओं द्वारा देशभक्ति सामूहिक नृत्य एवं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शहर चित्तौड़गढ़ की छात्राओं द्वारा सामूहिक रूप से देशभक्ति से ओत प्रोत नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरी गई। राष्ट्रगीत वंदे मातरम एवं राष्ट्र

0: राष्ट्रगान के साथ इंदिरा गांधी स्टेडियम चित्तौड़गढ़ में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह 2026 का समापन हुआ। आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ की ओबी टीम के साथ मैं वर्षा अग्रवाल।
1: इसके अलावा 80वें स्वतंत्रता दिवस को अन्य जिलों में भी समारोह पूर्वक मनाया गया। कई जिलों में मंत्रियों ने तो कहीं जिला कलेक्टर ने ध्वजारोहण किया। आइए हम सभी स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प लें कि देश की एकता और अखंडता को सदैव सर्वोपरि रखेंगे। इसी गर्व के साथ आप सभी को एक बार फिर स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आलेख डॉक्टर सालेहा गाजी, वाचन स्वर रितिका गुप्ता, संपादक हेमलता बालवानी और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना। जय हिंद, वंदे मातरम।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों पर आधारित विशेष समाचार तरंग। इसमें आलेख था डॉक्टर सालेहा गाजी का, वाचन स्वर रितिका गुप्ता, संपादन हेमलता बालवाणी का और प्रस्तुतकर्ता थे रामनाथ मीणा। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
3: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉयड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।
4: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आए आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और, आपका DD फ्री डिश।
0: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं।
5: अभी आप सुन रहे थे स्वाधीनता दिवस पर समाचार सेवा एकांश जयपुर द्वारा प्रस्तुत विशेष समाचार तरंग। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं।

यह आकाशवाणी नागौर का चिरमे चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनिए फिल्म शहीद का ये गीत, मुकेश महेंद्र कपूर और राजेंद्र मेहता की आवाज में।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में फिल्म लीडर के इस गीत के साथ आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: रहे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया।

0: प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया में फ्लोरेस तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 47 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने ग्रुप डी के मैच में वेल्स को 3-1 से हराया और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज असीमा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया।
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है।
1: एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तक जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया।
1: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्षों से चली आ रही गौरवशाली विरासत का स्मरण किया।

0: किया गया। इस वर्ष पहली बार लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की। सेना के बैंड ने वंदे मातरम की मधुर धुन प्रस्तुत की और लाल किले पर मौजूद सभी लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय गीत का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान का भी गायन किया गया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को लाल किले पर आमंत्रित किया गया था। सुपर्णा और सौम्य के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के राज्यपाल सीएच विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक एट होम समारोह का आयोजन किया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लद्दाख में स्वतंत्रता दिवस समारोह करगिल के ख्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम में देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। आकाशवाणी करगिल ने बारू परिसर में उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। मणिपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह इम्फाल पश्चिम स्थित प्रथम मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज स्वतंत्रता दिवस पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम ने कौशल विकास, डिजिटल तकनीक, सतत विकास और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। लातविया के विदेश मंत्रालय ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और की कामना की। इसराइल के राजदूत रुवे नजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिनो, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कोलोन ने, ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायोग ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप तट के पास आज आई 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। भूकंप के बाद देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। मुख्य शहर माओमेर में बचाव दल ने 20 शव बरामद किए और 6 घायलों को बाहर निकाला। दक्षिणी लेबनान में आज इसराइल के हवाई हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि अंसार गांव में एक मकान पर हुए इस हवाई हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। इसराइल की सेना ने कहा है कि इसराइली सैनिकों के खिलाफ की गई एक कार्रवाई के जवाब में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट news.www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी

0: उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। यह रखरखाव के कारण प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा।
1: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह कल राजस्थान के अलवर में अलवर सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी प्लांट की आधारशिला रखेंगे। वे वर्चुअल माध्यम से विभिन्न डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों और पशु आहार संयंत्रों का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उत्सव के तहत नवनियुक्त 10,500 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत 7वें ब्रिक्स आईसीटी कार्य समूह की बैठक से होगी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 21 अगस्त तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। और खेलों में नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। वहीं श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास आए भूकंप में 47 लोगों की मौत और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल को। रात्रि के 9 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

मैं स्वागत करता हूं आज आपका दोस्त विकास। कहिए साथियों, क्या हाल चाल है भाई? हम जानते हैं आज पूरा दिन स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में आप जरूर व्यस्त रहे होंगे और पूरे जोश और धूमधाम से इस महान पर्व के भागीदार बने होंगे।

0: और अब तैयार होंगे हेलो फरमाइश की इस रंगारंग शाम में धूम मचाने के लिए। तो रिसीव करते हैं आज का ये पहला फोन कॉल। हेलो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हाँ साहब, कौन फरमा रहे हैं?
1: रणवीर सिंह बोल रहा हूँ सर। रणवीर सिंह
0: रणवीर सिंह जी फरमा रहे हैं, कहाँ से?
1: जिला उदयपुर के सामने से बासनी चौराहे से
0: बासनी चौराहे से बोल रहे हैं। बताइए क्या करते हैं,
1: काम करते हैं सर। काम
0: कौन सा काम?
1: ये कर रही है इसका ठीक
0: अच्छा, कैसा काम धंधा चल रहा है आपके?
1: सर। ठीक चल रहा है,
0: और बताइए क्या हाल चाल है, सब ठीक है घर में?
1: मालिक की मेहरबानी है, सब बढ़िया है।
0: अच्छा, कार्यक्रम सुनते हैं आप आकाशवाणी चिरमी चैनल के? हाँ,
1: हाँ सुनते हैं ना सर,
0: कौन से
1: बढ़िया
0: प्रोग्राम
1: लगते हैं। हेलो
0: कौन से पसंद आते हैं आपको?
1: फरमाई सुनते हैं सर,
0: अच्छा,
1: और भी खेती बाड़ी आती है वो सुनते हैं।
0: खेती बाड़ी भी पसंद है। चलिए बता दीजिए आज क्या सुनेंगे।
1: आज सर पार्टी का फिल्म का गाना सुनना है।

0: नमस्कार, कौन फरमा रहे हैं?
1: साहब साहब पवार बोलो, सोनेली में गाँव। हाँ
0: सोनेली से बताइए,
1: साहब,
0: क्या हाल है आपके और आपके गांव के?
1: ठीक है सर जी। अब बहुत अच्छी बरसात हुई कल,
0: कल बरसात हो गई जोरदार?
1: जोरदार अच्छी हुई। हाँ
0: अच्छा, तो बढ़िया जमाना है चारों तरफ?
1: हाँ चारों तरफ जमाना बहुत अच्छा है,
0: बहुत अच्छा है। और बताइए, आपके क्या हाल हैं?
1: बहुत अच्छा है सर। आपको कैसे है?
0: बस बढ़िया है। और कौन सा गाना सुनेंगे आज?
1: और वो देशभक्ति सुना जो नरेंद्र कपूर की आवाज़ के माने, है नहीं?

0: हेलो
1: हेलो। हाँ
0: हेलो कार्यक्रम, हेलो फरमाइश।
1: सर,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं योगेश गहलोत बोल रहा हूँ, नागौर माहिंद्रा से। बढ़िया
0: हाँ योगेश जी, बताइए क्या हाल है
1: सर।
0: और क्या कर रहे हैं अभी?
1: सर और तो अभी देख लो, अभी रेडियो सुन रहे हैं और दुकान पर काम करते हैं,
0: कौन सी दुकान है आपकी?
1: इलेक्ट्रॉनिक दुकान है सर।
0: अच्छा, तो क्या काम करते हैं? रिपेयरिंग का काम है या बेचते हैं माल?
1: सेल एंड सर्विस दोनों ही हैं, और साथ में ये टेप रिकॉर्डिंग, ये रेडियो वगैरह भी तैयार करते हैं, नए बेचते हैं।
0: अच्छा, और प्रोग्राम कैसे लगते हैं चिरमी चैनल के?
1: प्रोग्राम सर सारे ही बढ़िया लगते हैं। सुबह जो 9 बजे से 5 मिनट पहले चालू हो जाता है, तो हम रात को 10 बजे तक सुनते हैं।
0: अच्छा
1: दिन भर
0: अच्छा
1: रेडियो चालू रहता है, पिताजी भी रेडियो सुनते थे,
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: रेडियो की दुकान भी हमारे पास, हम यहाँ
0: अच्छा
1: रेडियो वगैरह तैयार भी करते हैं।
0: अच्छा तो फेवरेट
1: हाँ
0: प्रोग्राम
1: सर,
0: कौन सा है आपका?
1: विविध भारती और वो मनपसंद गाने वाले, और एक वो जो काका वाला आता है ना, सितार
0: अच्छा, गोरबंध खुराना।
1: वो होते हैं, वो
0: अच्छा
1: और भी बढ़िया लगते हैं।
0: अच्छा वो भी अच्छा लगता है। चलिए
1: हाँ
0: सर,
1: सर,
0: बताइए आज क्या सुनाएं आपको?
1: आज मुझे सर देशभक्ति का गाना सुना दो, रंग
0: देशभक्ति
1: दे बसंती चोला।
0: मेरा
1: मेरा
0: रंग दे
1: रंग दे
0: बसंती
1: बसंती
0: चो

0: हाँ जी, कार्यक्रम हेल्प फरमाइश,
1: हेलो,
0: कौन बोल रहे हैं जी?
1: मुकेश शर्मा बोल
0: हाँ जी,
1: रहे, अमर सिंह कॉलोनी से।
0: अच्छा, अमर सिंह कॉलोनी से फरमा रहे हैं। बताइए साहब, क्या
1: जी
0: कर रहे हैं आप?
1: बैठे हैं, दो से है, खाना खाने आए, बैठ बात कर ली, फोन कर ले तोड़ के। बच्चे
0: अच्छा, और बताइए क्या हाल है?
1: हैं
0: बढ़िया है।
1: डॉक्टर,
0: अच्छा, वैसे करते क्या हैं आप?
1: मेडिकल स्टोर है,
0: मेडिकल स्टोर है आप, तो पूरे दिन उसी में ही रहते हैं बिजी।
1: खाना आते हो दोपहर, फ्रेश कर लेते हो, वापस चले जाओ शाम को।
0: अच्छा, तो बताइए आज गाना कौन सा सुनवाएं आपको?
1: पूर्ण फिल्म शिकार, क्या फिल्म है शिकार, धर्मेंद्र
0: शिकार का?
1: के बादशाह पर की,
0: हाँ,
1: पर्दे मेरे तो पर्दे ना उठो, पर्दे
0: पर
1: के उठे।
0: चलिए साहब, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हाँ जी, कार्यक्रम हेलो फरमाइश, कौन?
1: मुन्ने खां मुहूर्तपुरा
0: मुन्ने खान जी कहाँ से फरमा रहे हैं?
1: मुन्ने खां।
0: अच्छा, जी मोहम्मदपुरा मुन्ने खान साहब, बताइए क्या हाल चाल है आपके और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ठीक है, मुहूर्तपुरा से बोल रहा हूँ। मुहूर्तपुरा
0: कहाँ पर है आपका ये गांव?
1: नागौर में है सर।
0: नागौर में ही है?
1: हाँ नागौर में, लोअर फरक्का पास में
0: अच्छा, ये गांव है कि कोई मोहल्ला है?
1: मोहल्ला है
0: मोहल्ला
1: नागौर।
0: है।
1: मैं कुछ नहीं करता हूँ, बुढ़ा हो गया, मैं कुछ नहीं करता,
0: अच्छा, घर पे ही रहते हैं?
1: घर पे रहता हूँ सर।
0: अच्छा, रेडियो टीवी यही देखते हैं सुनते हैं?
1: हाँ
0: अच्छा,
1: बस यही काम है।
0: चलिए बताइए क्या सुनेंगे आज?
1: फिल्म अंजना का गाना है, ये
0: हाँ
1: जान चली जाए।

तो श्रोताओं, ये तो था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। और इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया सीमा गोस्वामी ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अशोक कुमार गोयल। और अब मैं विकास आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हेलो फरमाइश कार्यक्रम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।
1: सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की अनगिनत बधाइयां। आज के फनकार कार्यक्रम में आज उन फिल्मों की बातें जिनमें युद्ध दिखाया गया है या जिनमें हीरो का ताल्लुक फौज से है।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम। हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं था। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार

हमलावर इस दीवार से टकराकर वापस जाते थे, जो 1962 में थी, वही सन 65 और वही 71। हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया कि यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते, तो मोहब्बत करने वाले मोहब्बत का दामन क्यों छोड़ते।

आजादी के बाद बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी जिन्होंने अपने समाज और समय से प्रेरणा ली। जब भारत आजाद हुआ उसके बाद भारत को पड़ोसियों की चालों का और उनके हमलों का सामना करना पड़ा, कुछ युद्धों का सामना करना पड़ा और इसीलिए सिनेमा ने भी इसे अपनी कहानियों का विषय बनाया। सन 1961 फिल्म हम दोनों, देव आनंद इस फिल्म में एक फौजी होते हैं और जिंदगी का साथ निभाते चले जाने की बात करते हैं।

फिल्म हकीकत जो सन 1964 में आई, ये सन 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के अंतर्गत हुई रिजांद ला की लड़ाई पर आधारित थी। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र, बलराज साहनी, संजय खान और विजय आनंद वगैरह। एक बाकायदा युद्ध फिल्म हकीकत आज भी सिनेमा के इतिहास की एक महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है।

सन 1973 में चेतन आनंद लेकर आए हिंदुस्तान की कसम। ये फिल्म भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुए ऑपरेशन कैक्टस लिली पर आधारित थी और इस फिल्म के हीरो थे राजकुमार।

0: जाहिर है कि
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।

0: तुम्हारा सबकी छुट्टी हो गई, फिर मैंने बूट से बूट जो मारा, फौजी गया जब गाँव में, फौजी गया जब गाँव में।
1: गणतंत्र दिवस एक ऐसा मौका है जब हम शान से अपने देश के शौर्य और उसकी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। लाल किले की प्राचीर से जब निकलती हैं फौजी टुकड़ियां तो देश गर्व से भर उठता है। यही परिदृश्य दिखाया गया है हमारी फिल्मों में। सन 1970 में देव आनंद लेकर आए अपनी फिल्म प्रेम।

1972 निर्देशक रामानंद सागर ने अपनी फिल्म बनाई ललकार। मुख्य सितारे थे राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र और माला सिन्हा। ये फिल्म भारत और जापान के बीच युद्ध की एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है, जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया तो सन 1967 में मनोज कुमार लेकर आए अपनी फिल्म उपकार।

सन 1982 में निर्माता शशि कपूर और निर्देशक गोविंद निहलानी फौज पर आधारित अपनी फिल्म लेकर आए विजेता। मुख्य कलाकार थे शशि कपूर, रेखा, अमरीश पुरी, कुणाल और सुप्रिया पाठक। इस फिल्म में संगीत अजीत वर्मन का था और आशा भोसले का गाया ये गाना आज भी हमारे मन को आनंद से भर देता है।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज ऐसी फिल्मों की बातें जिनमें आपको नजर आए हैं फौजी या युद्ध। गणतंत्र दिवस के मौके पर यह हमारी विशेष पेशकश है। सन 1991 नाना पाटेकर ने बनाई फिल्म प्रहार। इस फिल्म का हीरो एक फौजी है जो अपनी निजी जिंदगी में भी जंग लड़ता है।

सन 1995 अशोक कौल लेकर आए अपनी देशभक्ति फिल्म परमवीर चक्र। ये फिल्म भी फौज और उसके संघर्ष पर आधारित थी। साल 1997 में निर्माता निर्देशक जेपी दत्ता लेकर आए अपनी फिल्म बॉर्डर। इसके सितारे थे सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, सुदेश बेरी, पुनीत इस्सर, कुलभूषण खरबंदा, तब्बू, पूजा बत्रा और श्रावणी वगैरह। ये फिल्म सन 1971 में हुई लोंगेवाला की लड़ाई पर आधारित थी। चूंकि बात जेपी दत्ता की चली है तो आइए उनकी एक और फिल्म की बात करते हैं। साल 2003 में कारगिल युद्ध पर वो लेकर आए अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म एलओसी कारगिल।

जेपी दत्ता ने एक के बाद एक कई ऐसी फिल्में बनाई जिनकी पृष्ठभूमि युद्ध है। साल 2018 में उन्होंने बनाई फिल्म पलटन। ये 1962 के हमले के बाद सन 1967 में हुई नाथूला और चोला की लड़ाइयों पर आधारित फिल्म थी। साल 2004 निर्देशक फरहान अख्तर ने बनाई फिल्म लक्ष्य। ये फिल्म कारगिल की लड़ाई के परिदृश्य पर आधारित थी और इस फिल्म में संगीत था शंकर एहसान और लॉय का। जावेद अख्तर का लिखा ये गीत हमारी शिराओं में जोश भर देता है।

साल 2007 में अमृत सागर ने युद्ध बंदी फौजियों की कहानी पर बनाई अपनी फिल्म 1971। इस फिल्म के हीरो थे मनोज बाजपेयी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है।

साल 2004 में युद्धबंदियों के परिदृश्य पर ही मिलन लुथरिया लेकर आए अपनी फिल्म दीवार। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे अमिताभ बच्चन।

साल 2004 में निर्देशक अनिल शर्मा ने बनाई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मुख्य कलाकार थे अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और बॉबी देओल।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

साल 2019 में आदित्य धर ने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक पर अपनी फिल्म बनाई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। मुख्य सितारे थे विकी कौशल और यामी गौतम।

साल 2021 में निर्देशक विष्णु वर्धन लेकर आए कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन और उनके संघर्ष की कहानी शेरशाह। इस फिल्म के मुख्य सितारे थे सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी। साल 2020 में भारत की पहली महिला फौजी पायलट के जीवन पर शरण शर्मा ने एक फिल्म बनाई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। इस फिल्म में गुंजन सक्सेना की भूमिका निभाई थी जानवी कपूर ने। साल 2021 में एक फिल्म आई भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। सन 1971 के युद्ध में भुज में इंडियन एयरफोर्स की एयरस्ट्रिप को 72 घंटों में 300 स्थानीय महिलाओं के

आज के फनकार कार्यक्रम में आज उन फिल्मों की बातें हमने की जिनमें हीरो को फौजी दिखाया गया है या ऐसा कथानक है जिसका ताल्लुक भारत की सीमाओं और उसकी रक्षा से है, युद्ध से है। ऐसी फिल्मों का सिलसिला बहुत लंबा है और आज के इस कार्यक्रम में हमने मुख्य फिल्मों का जिक्र किया और उनके गाने आपको सुनवाए।

0: इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण, हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। हमारी आज की ये सांध्यकालीन प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। अब आपसे हमारी मुलाकात कल सुबह 8:51 पर हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा में होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।